मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज एवं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की चौथी तिथि। तदनुसार दिनांक 25 मई 2026। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 हो चुके हैं। आरंभ होती है आज की ये सभा।

0: आप जुड़े हैं आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। श्रोताओं, आज खेत खलियान में वार्ता का विषय है बरसाती भिंडी की खेती। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
1: किसान भाइयों नमस्कार। खरीफ मौसम के लिए भिंडी लगाने का समय अभी चल रहा है, इसे बरसाती भिंडी के नाम से भी आप जानते हैं। इसके लिए उन्नत किस्में हैं वैशाली बधू, पूसा सावनी, हरी चिकनी, पॉर्किंस, लॉन्ग ग्रीन, लॉन्ग ग्रीन लोकल, सेल वन, पूसा मखमली। बरसाती भिंडी की बुआई किसान भाई जून जुलाई में कर सकते हैं। इस समय बुआई करने से लाभ जो है अच्छा मिलता है। खेत की तैयारी करते समय आप ये ध्यान रखें कि मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की जुताई एक बार कर लें, उसके बाद से 2-3 जुताइयां देसी हल से करें ताकि मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो जाए। अंतिम जुताई के समय सड़ी हुई गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद डालें। और उस समय एक और बात का ध्यान रखें कि नीम की खल्ली का प्रयोग खेत में जरूर करें या करंज की खल्ली का प्रयोग करें ताकि आपके खेत में भूमिगत कीड़े जो हैं वो नुकसान नहीं कर सके। बरसात के मौसम में जब आप भिंडी की खेती करते हैं तो उसमें 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। जहां तक खाद तथा उर्वरक का सवाल है तो सड़ी हुई गोबर की खाद 30 टन, नेत्रजन 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तत्व के रूप में दें। बोने के समय नेत्रजन 60 किलोग्राम और 40 से 45 दिनों बाद 60 किलोग्राम नेत्रजन का व्यवहार करें। स्फुर 70 किलोग्राम और पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तत्व के रूप में बोने के समय आप खेत में दे दें। इस मौसम में सिंचाई करने की आवश्यकता विशेष नहीं होती है भिंडी की फसल को, लेकिन प्रारंभिक दिनों में आप जब मौसम गर्म रहे और वर्षा नहीं हो उस समय एक या दो सिंचाई जो है आप करें। भिंडी की खेती में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पौधे को रोग और कीड़ों से कैसे आप बचाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीला मोजाइक रोग के बारे में, जो कि भिंडी में बहुत होता है। इस रोग में पौधे की पत्तियों के ऊपर, तनों के ऊपर और कभी कभी संपूर्ण पौधे पर चित्तियां पड़ जाती हैं, जो कि पीले रंग की होती है, अनियमित आकार की होती है, ठीक उसी तरह से होती है जिस तरह से घरों में मोजैक किया जाता है, इसीलिए इसका नाम मोजैक रोग है। यह रोग वायरस के द्वारा फैलता है, इसलिए इस रोग को रोकने के लिए अभी तक कोई विशेष दवा नहीं बनी है। केवल इस रोग को फैलाने वाले जो कीड़े होते हैं उनको यदि आप नियंत्रित कर लें तो ये रोग जो है नहीं होता है। इस रोग को एक पौधे से दूसरे पौधे पर कीड़े प्रसारित करते हैं, यानी कि जो रोगजनक वायरस होते हैं उन्हें कीड़े अपने साथ लाते हैं रोगी पौधे से निरोग पौधे पर। तो उन कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए स्वस्थ पौधों के ऊपर इंडोसल्फान 35 ईसी दवा का छिड़काव जो है आपको करना होता है। खेत में यदि इस रोग के लक्षण दिखाई दें तो पहले ही पौधे को उखाड़ कर फेंक दें और बाकी स्वस्थ पौधों पर इंडोसल्फान 35 ईसी दवा का छिड़काव करें ताकि कीड़े नहीं आएं और आपकी फसल जो है वो बची रहे। बरसात के मौसम में कीड़े के द्वारा ये फल छेदक कीड़ा और तना छेदक कीड़े के द्वारा नुकसान भिंडी की फसल को किया जाता है। इसमें फलों के अंदर छेद पाए जाते हैं, तनों के अंदर भी छेद पाए जाते हैं, फलों के ऊपर काला पदार्थ भी जमा रहता है जो कि कीड़े का बिष्ठा होता है। तो इस तरह से फल की गुणवत्ता खराब होती है और बाजार में इसका मूल्य नहीं मिलता है। इस कीड़े को नियंत्रित करने के लिए आप इंडोसल्फान 35 ईसी दवा का छिड़काव ऊपर से कर सकते हैं या दानेदार दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दानेदार दवा का जब आप प्रयोग करें तो काफ़ी सावधानी के साथ दवा प्रयोग करने के एक महीने के बाद ही फलों की तुड़ाई करें। और दवा प्रयोग करने के पहले आप फलों की तुड़ाई कर लें क्योंकि ये दवा काफ़ी जहरीली है, जैसे दानेदार दवा फ्यूराडान है या 4-8-10 G है, तो इसके प्रयोग के पहले काफ़ी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। खेत में खरपतवार नहीं हो इसकी भी व्यवस्था आप करें और समय समय पर देखभाल करते रहें तो भिंडी की फसल से उत्पादन अच्छा होगा।
0: खेत खलियान कार्यक्रम में आपने जाना बरसाती भिंडी की खेती के बारे में। वार्ताकार थे श्रीनिवास सहाय। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। श्रोताओं, प्रातः के 6 बजने वाले हैं, आइए सुने दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देवांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि

0: में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज एवं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन मनन।
2: बोस, भारत माँ के सपूत रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 ईस्वी में बंगाल के सुबल्द नामक स्थान में हुआ था। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी एवं शिक्षाविद थे। सरकारी नौकरी में रहते हुए भी वे भारत की आजादी की लड़ाई में सदैव सक्रिय रहे। छात्र जीवन से ही वे राष्ट्रभक्त एवं क्रांतिकारी विचारधारा के पोषक थे। यही कारण था कि सरकारी सेवा में रहते हुए भी इन्होंने अंग्रेजों के दमन एवं अत्याचार के विरुद्ध सार्थक पहल की। अलीपुर बम कांड के दौरान इन्हें काफी ख्याति मिली और इन्होंने सन 1912 में वायसराय चार्ल्स हार्डिंग को निशाना बनाने वाली बम की साजिश में हिस्सा लिया। इसी घटना के बाद रास बिहारी अंग्रेजों की आंखों में किरकिरी बन गए। सन 1913 में रास बिहारी बोस ने जतिन मुखर्जी यानी बाघा जतिन से मुलाकात की, जिनके मार्गदर्शन में बोस भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने हेतु और अधिक दृढ़ हो गए। वे गदर आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति बन गए, जो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय प्रवासियों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। सन 1915 ईस्वी में भारत की स्थिति बिगड़ने लगी। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों की नज़रों से बचते हुए उन्होंने भारत छोड़ दिया और अंततः जापान में शरण ली। वहां रहकर भी वे भारत की आज़ादी के लिए सक्रिय रहे। जापान में रहकर उन्होंने भारतीयों को संगठित कर भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। सर्वप्रथम आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने ही की थी। जापान जाने के पहले रास बिहारी बोस देहरादून के वन विभाग में क्लर्क की नौकरी करते हुए अंग्रेजों के दमन के विरुद्ध छोटी छोटी उन्होंने समितियों का गठन किया था। कॉलेज में पढ़ते हुए इनके जीवन पर फ्रांसीसी क्रांति का बहुत बड़ा और गहरा प्रभाव था। वे क्रांतिकारी समूहों में सदा सक्रिय रहे। उन्होंने बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों को आपस में जोड़ा। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ फ्रीडम फाइटर काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है। जापान प्रवास के समय इन्होंने एक जापानी महिला से विवाह कर लिया। यही कारण था कि इन्हें जापान का भारतीय दामाद के रूप में भी जाना जाता था। ब्रिटिश सत्ता से संघर्ष करते समय इन्हें जापान के एक अमीर उद्योगपति ने 6 माह तक छिपा कर रखा था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए काम करने तथा जापानी अधिकारियों से तालमेल बिठाए रखने के लिए इन्हें जापानी सरकार ने राइजिंग सन ऑफ जापान की उपाधि से भी सम्मानित किया था। वर्ष 1924 में जापान में वीर सावरकर के सहयोग से रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात हुई। सन 1943 में जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से जापान गए तो उनका भव्य स्वागत किया गया और आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष बाबू को सौंपकर खुद वे उनके मुख्य सलाहकार बन गए। रास बिहारी बोस का जीवन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी बलिदान और रणनीतिक धैर्य की भावना का प्रतीक है, जो प्रारंभिक सशस्त्र प्रतिरोध को लगातार संगठनात्मक प्रयासों से जोड़ता है। इनकी मृत्यु टोक्यो में 21 जनवरी 1945 ईस्वी को हुई। रास बिहारी बोस का दृढ़ विश्वास था कि स्वतंत्रता भीख में नहीं मिलती और इसके लिए प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। इन्होंने भारत में सशस्त्र क्रांतियों का ताना बाना बुना। बोस का चिंतन केवल भारत तक ही

0: भारत तक ही सीमित नहीं था, वे एशिया एशियावासियों के लिए एशिया एशियावासियों के लिए है इस सिद्धांत के समर्थक थे। जापान में रहकर इन्होंने अन्य एशियाई देशों की स्वतंत्रता का भी समर्थन किया। उनका सबसे बड़ा वैचारिक और व्यवहारिक योगदान आज़ाद हिंद फौज का गठन था। 1943 में उन्होंने इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया, जो उनके निस्वार्थ राष्ट्रप्रेम और दूरदर्शिता को दर्शाता है। उनका चिंतन था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जापान जैसे मित्र राष्ट्रों की तकनीक और सैन्य सहायता आवश्यक है। उन्होंने जापान के बुद्धिजीवियों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। कृतज्ञ राष्ट्र भारत उनके बलिदान एवं योगदान के लिए उनके जन्मदिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि प्रदान करता है।
1: चिंतन मनन आपने सुना आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। आइए अब आनंद ले भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का आरंभ करेंगे देश वंदना के साथ।

कहते हैं जो ईश्वर का नाम नहीं जपते, जो उन्हें याद नहीं करते, उनका जीवन ठीक वैसे ही होता है जैसे पंख के बिना पंछी। और इस बात में सच्चाई भी है, क्योंकि उस व्यक्ति का जीवन तो वैसा ही होगा ना जो विश्वास करना नहीं जानता, जिसे विश्वास ही नहीं है। और कहते हैं कि जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर का नाम जपते हैं, उन्हें ये विश्वास होता है कि अंत भला ही होगा। वो जो ईश्वर के बताए रास्ते पर चलते हैं, केवल नाम जपना ही पूरा बात नहीं होता, केवल नाम जपना ही पर्याप्त नहीं होता। नाम जपने का मतलब है ईश्वर को याद करने का मतलब है उनके बताए रास्तों को समझना, उनके बताए रास्तों पर चलने की खुद को इसके लिए तैयार करना। और अगर हम ये काम करते हैं तो हमें पता होता है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, ईश्वर हमारे साथ ज़रूर होंगे, हमें विश्वास होता है। और जब किसी मन के और जब किसी व्यक्ति के मन में विश्वास होता है, तब उस पंछी को जैसे पंख ही लग जाते हैं, उसे पता होता है कि अब मैं उड़ सकता हूँ, अब मैं आसमान में छा सकता हूँ, क्योंकि मैं सही रास्ते पर हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने ईश्वर का नाम नहीं जपा, वो ठीक वैसे ही है जैसे पंछी पंख के बिना।

मन को कहा जाता है कि मन ईश्वर का नाम सुमरण कर लो, ईश्वर का नाम याद कर लो, परंतु हम जैसे जैसे इस दुनिया में खोते जाते हैं, इस दुनिया के मोह माया में उलझते जाते हैं, हम सबसे पहले उन चीज़ों को भूलते हैं जो हमें शांति की ओर लेकर जाते हैं, उन चीज़ों को भूलते हैं जो शायद थोड़ा कठिन होता है, जैसे ईश्वर का नाम जपना। ईश्वर का नाम जपना कठिन है, क्योंकि जब हम ईश्वर का नाम जपते हैं तो हमारा मन शांत होना चाहिए, किसी और बात की मन में चिंता नहीं होनी चाहिए, हमारा ध्यान केवल और केवल ईश्वर के प्रति ही होना चाहिए। अक्सर कहा जाता है कि हमें ध्यान करना चाहिए, अपने दिन की शुरुआत ही ध्यान के साथ, भजन के साथ करनी चाहिए, परंतु बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो अपने दिन की शुरुआत इस प्रकार से करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जितनी जल्दी हो सके, जितनी तीव्रता के साथ हो सके, हम मोह माया में उलझ जाएं, वो हमें आकर्षित करता है, वो चकाचौंध हमें आकर्षित करता है, जबकि भजन ध्यान ये हमारे मन को शांति की ओर लेके जाता है। और जब मानव या कोई भी व्यक्ति मोह माया में इस कदर उलझ जाता है तो उसे फिर शांति नहीं भाती और वो नाम जपना सबसे पहले छोड़ता है। क्रोध नहीं छोड़ता, ईर्ष्या नहीं छोड़ता, मोह माया नहीं छोड़ता, जिसे उसे त्याग देना चाहिए, परंतु वो छोड़ता है तो केवल ईश्वर का नाम जपना।

नाम जपन क्यों छोड़ दिया? नाम जपना हम इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो आसान होता है, मुश्किल होता है तो ईश्वर के नाम के साथ रम जाना। और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे मन की पीर, हमारे जीवन की पीर अगर कोई हरने वाला है तो वो केवल ईश्वर ही हैं। और जब हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं तब हम उन्हीं को याद करते हैं और उन्हीं से कहते हैं कि हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हमें सही रास्ते पर ले चलो, हरि तुम हमें राह दिखाओ।

0: भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। आज स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में वार्ता का विषय है एक्जिमा के होम्योपैथिक उपचार। वार्ताकार हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार।
1: एक्जिमा वाला स्थान पहले लाल हो जाता है, फिर वहाँ छोटे छोटे फटे फटे एक तरह के उद्भेद निकलते हैं और उनमें से रस निकलता है, खुजलाहट और जलन होती है। इस प्रकार का लक्षण ज़्यादातर सिर, कान, मुंह, हाथ और पैरों में अधिक प्रकट होते हैं तथा शरीर के अन्य स्थानों पर भी उभरता है। अगर यह बीमारी एकाएक दब जाती है तो फेफड़ों की बीमारी

0: दम्मा, अतिसार, यकृत रोग और स्त्रियों की प्रदर आदि अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती है। एक्जिमा के होम्योपैथिक इलाज इस प्रकार है। पहली दवा है आर्सेनिक एल्बम। इसमें सूखी खुजली और खुजलाने के बाद बेहद जलन, खुजलाने के समय आराम मालूम होना, परंतु यह सोचकर कि बाद में जलन हो जाने से जान निकलने लगेगी, इस कारण खुजलाना बंद कर देता है। ठंडा पानी या ठंडी हवा लगने से खुजली बढ़ जाती है और गर्म से घटती है। दूसरी दवा है कलकरिया कार्प। माथे पर लाल हो जाती है, फिर वहाँ छोटे छोटे फटे फटे एक तरह का उद्भेद निकलता है, उनमें से रस निकलता है, खुजलाहट और जलन होती है, मोटी पपड़ी जम जाती है और उससे बदबू निकलता है। यह लक्षण माथे से शुरू होकर धीरे धीरे नीचे की ओर मुंह तक आ जाता है। तीसरी दवा है क्लीमेटिस इरेक्टा। इनके लक्षण में माथे के पिछले भाग में, कंधे या गर्दन में एक तरह का दाना निकलता है जो बहुत खुजलाते हैं, उनमें से रस निकलता है और उस जगह घाव हो जाता है और पक जाता है। इसका लक्षण बिछोने की गर्मी से बढ़ती है और रोग वाली जगह धोने से भी उपसर्ग बढ़ता है। हाथ का एक्जिमा तथा प्रमेह स्राव बंद होकर लिंग और अंडकोश में आ जाता है। एक्जिमा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक बढ़ता है, उसमें से रस निकलता है और कृष्ण पक्ष से घटने लगता है और सूख जाता है। अन्य दवाई क्रोटोन टिग्लिनम है। इसमें पहले छाले जैसे दाने निकलते हैं, उसके बाद वे पकते हैं और उसमें पीप हो जाती है। रोग वाली जगह बहुत खुजलाता है और दर्द इतना रहता है कि खुजला नहीं सकता। जरा सा हाथ फेरने से दर्द बढ़ जाता है। मुंह, लिंग, अंडकोश में एक्जिमा ज़्यादा होता है। जिनके पेट में कोई गड़बड़ी रहती है तो उसमें क्रोटोन टिग बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है। इसकी जलन और खुजली पानी से धोने से या ठंडी हवा लगने से बढ़ जाती है। दूसरी दवा ग्रेफाइट्स है। इसके समस्त स्थानों पर, खासकर सिर, मुंह, कान, नाक के ऊपर, पलकों और जननेंद्रियों में फुंसी जैसे फटे या घाव के समान किसी भी तरह का उद्भेद से मधु जैसा गाढ़ा लसदार रस निकलता है। रोग वाली जगह का चमड़ा मोटा हो जाता है और फटा रहता है। उसके ऊपर मछली के चोंटा जैसा पदार्थ से ढका रहता है। कान में एक्जिमा होकर क्रमशः उसका रस लगकर सारे सिर में फैल जाता है। बहुतों को हाथ के पीठ अर्थात डॉर्सम ऑफ द हैंड में एक्जिमा होती है। उंगलियों और नाखून मोटे हो जाते हैं और जो कुरूप दिखाई देता है। दूसरी दवा मेजेरिनम। इसमें मोटी पीली या सफ़ेद रंग की पपड़ी जम जाती है, उसमें बहुत खुजली और जलन होता है। इसके अंदर से गाढ़ी मोटी और पीले रंग की पीप बहती है। माथे में इस प्रकार का उद्भेद ज़्यादा निकलता है। रात में बिछावन की गर्मी से खुजली बढ़ जाता है, खुजलाने से बहुत जलन होता है, जो इसका मुख्य लक्षण है। अन्य दवाइयों में ओलियंडर भी हैं, जो मस्तिष्क और कानों के पीछे का एक तरह का उद्भेद निकलता है, उसमें लगातार रस निकलता है और बहुत खुजलाहट होती है, और खुजलाहट के साथ साथ खून भी निकलता है और इसमें कीड़े पड़ने लगते हैं।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आपने जाना एक्जिमा के होम्योपैथिक उपचार के बारे में वार्ताकार डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब आपके लिए प्रस्तुत है रामचरित मानस गान श्रीकांत पर गांवकर के स्वर में।

अयोध्या लौट जाने के लिए श्री राम के आग्रह भरे वचन सुनकर राजा जनक तथा मुनिवर वशिष्ठ को कुछ भी कह सकने में संकोच होता है। भरत गंभीर असमंजस की स्थिति में हैं। एक ओर हृदय में श्री राम के लिए प्रेम और आदर का सागर उमड़ रहा है तो दूसरी ओर है स्वर्गीय पिता तथा स्वयं श्री राम के वचन की मर्यादा पालन का दायित्व। अंत में धैर्यवान भरत के स्नेह जनित शोक संताप पर विवेक ने विजय पाई। हाथ जोड़कर उन्होंने बड़ों से क्षमा याचना करते हुए श्री राम से कहा, हे नाथ, आप माता पिता मित्र गुरु परम हितैषी तथा अंतर्यामी हैं। ऐसे स्वामी का मैं ऐसा द्रोही हूँ जिसका कोई सानी नहीं। मोह के वशीभूत होकर मैं पिता और आपके वचन का उल्लंघन कर यहाँ आया हूँ। आपने मेरी ढिठाई को भी स्नेह और सेवा मान लिया, मेरे दोष को गुण के रूप में स्वीकार कर लिया। आप जैसा कोई दूसरा स्वामी नहीं है।

रामचरितमानस गान आपने सुना श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। श्रोताओं, अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त रूप से।

श्रोताओं, आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति भवन में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार 2025 प्रदान किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आप सुन पाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। आपको बता दें, अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि ठीक 7 बजे आप आनंद ले पाएंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनते हैं मौसम का मिजाज, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां और आज का इतिहास। साथ ही आप आनंद लेते हैं सुगम संगीत और फिल्मी गीतों का। आज आप सुनेंगे संस्कृत वार्ता भी। श्रोताओं, आज फिल्मी गीतों का आनंद लीजिए। प्रातः 9:06 पर, 10 बजे, 11 बजे, 11:30 पर, दोपहर 2:30 पर, शाम 5:30 पर और रात 8 बजे। साथ ही रात 10:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम पसंद आपकी होगा। प्रस्तुत होगा सुगम संगीत। प्रातः 9:30 पर कलाकार होंगे चेतन कुमार चौबे। आज शाम 7:52 पर अनिल कुमार आनंद के स्वर में सुगम संगीत। लोकगीतों का प्रसारण समय है प्रातः 10:30, कलाकार होंगी रेखा देवी। दोपहर 1 बजे कलाकार पूनम कुमारी। शाम 7:10 पर कलाकार विश्वनाथ ठाकुर। बहने अपना कार्यक्रम नारी लोक सुनती हैं दोपहर 12 बजे। 12:30 पर एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होता है। सुनिए बंगला गान कार्यक्रम दोपहर के 3 बजे। घर आंगन कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 1:30 पर। 3:20 पर रोजाना की तरह सुनिए समूह स्वर में देशभक्ति गीत। 3:25 से शाम 5 बजे तक आप आनंद लेते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का। हमारे केंद्र के कार्यक्रम प्रसारित होंगे शाम 6 बजे से। शाम 6 बजे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। साथ ही शाम 5:30 पर आप फिल्म संगीत भी सुनेंगे। इसी कार्यक्रम के साथ हमारे केंद्र के कार्यक्रम आरंभ हो जाएंगे। सुनना ना भूले साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी आज रात 8 बजे। रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में कलाकार अमजद अली खां पेश करेंगे राग श्याम कल्याण व राग झिमोटी।

हमारी आज की ये सभा संपन्न होगी 11:10 पर। कार्यक्रम विवरण में आपने जाना आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त रूप से। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रातः के 6:55 होने ही वाले हैं। आइए सुने दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना, अपने अपनों का और अपने आसपास का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, खुश होंगे, साथ ही अपने जीवन में हर रोज कुछ नया सीखने की, कुछ नया जोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। बस आपकी इसी कोशिश में आपका साथ देने के लिए लेकर आ चुके हैं हम आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा। आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपको बता दूँ कि रोजाना की तरह आज भी हम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में ढेर सारी बातें करने वाले हैं, ढेर सारी गपशप होने वाली है, साथ ही मनोरंजन तो होगा ही, आपको मिलेगी ढेर सारी जानकारियाँ। बस आप हमारे साथ कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए। और आपको पता है कि हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक छोटे से पर बेहद ही ज़रूरी जानकारी के साथ। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक समझा है, मैं आपको बताने वाली हूँ वक्त का हाल। अगर मैं आपको वक्त का हाल बता दूँ तो 7:02 अभी पूरे 7:02 हो चुके हैं और दिन है आज सोमवार का, तारीख है 25 मई 2026। सुबह के 7 बज चुके हैं, आपने अपने दिन की शुरुआत यकीनन कर ली होगी। और वैसे भी इस मौसम में तो दिन की शुरुआत बहुत जल्दी हो जाती है और इतनी गर्मी है अभी कि क्या ही कहने, बहुत जल्दी दिन की शुरुआत करनी अभी मजबूरी भी है क्योंकि सुबह इतनी अच्छी हवा चलती है, उसे आप कहाँ मिस कर सकते हैं। दोपहर को आपको इतनी अच्छी हवा का आनंद मिलेगा नहीं, और साथ ही इतनी अच्छी हवा के साथ आप हमारे कार्यक्रम का भी आनंद लीजिए। और कार्यक्रम में हम बहुत सी बातें करने वाले हैं, बहुत सारी गपशप, बहुत सारा मनोरंजन, और कार्यक्रम में आपको मैं यकीन दिलाती हूँ कि बहुत आनंद आने वाला है, बहुत हम मनोरंजन भी करने वाले हैं। और कहते हैं ना कि कुछ लोगों को आनंद गीत संगीत में मिलता है, कुछ लोगों को आनंद किताबों में मिलता है और कुछ लोगों को आनंद भजन में मिलता है। और यहाँ पर तो भजन भी होने वाला है, गीत संगीत भी होने वाला है, बातें किताबों की भी होने वाली है, यानी कि कुल मिलाकर हमारे सारे के सारे श्रोताओं के लिए ये कार्यक्रम पूरा है। तो आइए हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें भजन के साथ, और भजन भी वो भजन जिसमें आप समझेंगे कि ध्यान कितना महत्वपूर्ण होता है। ध्यान में किसी को भी आनंद नहीं आता, शुरुआत में ध्यान किसी का भी नहीं लगता। जो अभी एक एक घंटे के लिए या उससे भी लंबे समय के लिए ध्यान कर रहे हैं, उन्हें भी कभी परेशानी हुई होगी कि शुरुआत में ध्यान करने बैठे होंगे और शुरुआत के कई दिनों तक उन्हें अलग अलग ख्याल आए होंगे, ध्यान नहीं लगता है। लेकिन ध्यान करना ज़रूरी होता है, आप भी शुरुआत करेंगे ध्यान करने की तो आपको बहुत परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे जब आदत हो जाती है तो आपको उसमें आनंद आता है। और जो ध्यान करते हैं लगातार, उनके चेहरे पर एक अलग सा तेज होता है और उनके मन में जो शांति होती है, उनके दिमाग की जो शांति होती है ना, वो बहुत ही अलग होती है। कहते हैं कि ये जो हमारा मन है, ये जो रस गगन गुफा है, इसके अंदर जैसे जैसे जैसे आप ध्यान के जरिए से प्रवेश करते जाएंगे, आपको आनंद आता जाएगा। लेकिन शुरुआत में मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे ही ध्यान में लीन होते जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि ध्यान कितना महत्वपूर्ण होता है। आइए इस भजन को सुनते हैं, भजन को लिखा है कबीरदास ने, इस भजन का आनंद लेते हैं। भजन के उस पार मैं यहीं हूँगी।

वाकई जो रस गगन गुफा है वो अमर हो सकता है अगर हम अपने दिमाग को शांत कर ले और ऐसे कार्य करें जो कार्य हमें अमर बनाते हैं। कोई व्यक्ति अमर कभी नहीं हो सकता है, अमर होते हैं उसके काम, अमर होती है उसकी बातें। जैसे आप अभी गांधी जी की बातों को आप अभी भी सुनते हैं, समझते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ वैसे काम किए थे, अपने मन पर काबू पाकर अपने वो ध्यान भी करते थे और ध्यान करना बहुत ज़रूरी होता है। फिलहाल कुछ ज़रूरी बातें और भी, और ज़रूरी बातें मौसम के बारे में। मौसम के बारे में जानना अभी बहुत ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है कि मौसम अभी बिल्कुल कहर बरपा रही है। इतनी गर्मी की क्या ही कहने। अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस। और साथ ही अगर हम बात करें तो आज हो सकता है कि एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं और वर्षा होने की भी संभावना है। और अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान मैंने आपको बता दिया। सापेक्ष आर्द्रता की बात करें तो सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। तो ये था मौसम का हाल, मौसम का मिजाज। मौसम का मिजाज तो आजकल बहुत ही बुरा है और इस मौसम के मिजाज की वजह से ये होता है कि रात की नींद बड़ी परेशानी से आती है। ऐसा लगता है कि ये जो हवा है ना, कोई अच्छी सी गीत गा दे, अच्छा सा गीत गुनगुना दे, उसके बाद हम आराम से सो जाएं। वाकई जब हवा बिल्कुल ठंडी ठंडी चलती है तो ऐसा लगता है जैसे हवा हमें लोरी सुना रही हो और हमसे कह रही हो कि मैं गीत गाता हूँ, तुम सो जाओ।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: एक बहुत ही प्यारे से सुगम संगीत और एक छोटे से अंतराल के इस पार हमें आपके साथ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा। आपको बता दूं कि सुगम संगीत में आज कलाकार थे डॉक्टर अजय राय। और अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप तक कुछ ज़रूरी जानकारियां पहुंचाते हैं। जी हाँ, ज़रूरी जानकारियों से पहले एक छोटी सी जानकारी की वक्त का हाल हो चुका है 7:17। और अब आइए जानते हैं कि कौन सी ट्रेन सही समय पे है और कौन सी ट्रेनें हैं लेट लतीफ। अगर आप कहीं जाने वाले हैं या आपके कोई अपने आने वाले हैं तो फिर ये जो समय होता है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए जानते हैं ट्रेनों का हाल। ट्रेन संख्या 15553 भागलपुर जयनगर अपने बिल्कुल सही समय से भागलपुर से रवाना होगी, यानी कि 7:50 पर। 13016 हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 7:45 पर भागलपुर आएगी। ट्रेन संख्या 12368 आनंद बिहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 52 की देरी से चलते हुए 9:07 पर, जी हाँ, आज आनंद बिहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस 52 की देरी से चल रही है, 9:07 पर भागलपुर पहुंचेगी। 15658 यानी कि ब्रह्मपुत्र मेल 8 भागलपुर आएगी, यही इसका सही समय है। 53416 यानी कि जमालपुर साहिबगंज पैसेंजर अपने निर्धारित समय 8:37 पर भागलपुर आएगी। 13403 रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस बिल्कुल राइट टाइम है, 9 भागलपुर पहुंच जाएगी। 12253 यशवंतपुर भागलपुर अंग एक्सप्रेस 1:05 की देरी से चलते हुए 10:25 पर भागलपुर आएगी। 6341 साहिबगंज जमालपुर मेमू या 9:15 पर भागलपुर आएगी, ये बिल्कुल राइट टाइम है। 13409 मालदा क्यूल इंटरसिटी अपने सही समय से चलते हुए 9:35 पर भागलपुर आएगी। 13241 बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी बिल्कुल सही समय यानी कि 10:15 पर भागलपुर पहुंचेगी। बात करें भागलपुर आनंद बिहार विक्रमशिला एक्सप्रेस की यानी कि 12367 की, तो बिल्कुल अपने निर्धारित समय 11:55 पर भागलपुर से रवाना होगी। तो ये था ट्रेनों का हाल, ट्रेनों का मिजाज। अगर कहीं जा रहे हैं तो बिल्कुल हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप पहले से ही तैयारी कर लेंगे। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो पहले से सारी तैयारी करके रखते हैं और जब उन्हें कहीं जाना होता है तो बिल्कुल शांत दिमाग से, शांति से, बिना किसी हड़बड़ी के जाते हैं। दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जो सोचते हैं अच्छा अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है, और आखिरी के 15 में वो सारी तैयारियां शुरू करते हैं और उस वक्त जो उनके दिमाग की हालत, उनके दिमाग के जो हालात होते हैं वो बहुत भयानक होते हैं। अगर कोई उनके रास्ते में आ जाए तो उन्हें भी डांटते हैं और ख़ुद तो परेशान होते ही हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप पहले ही तैयारी करके रखें। फिलहाल हम तैयारी करते हैं एक संस्कृत वार्ता सुनने की और संस्कृत वार्ता का विषय है साधुता। जी हाँ, साधुता की परानीति और वार्ताकार हैं ब्रजेश कुमार पाठक। आइए सुने वार्ता साधुता की परानीति और इस वार्ता को सुनेंगे आप एक छोटे से अंतराल के उस पार।

0: कर्मणा च अहिंसा धर्मः पालनीयः। कर्मानुरूपं सर्वास्यापि जन्तो न भवति जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। यो हि जायते तस्य मरणं ध्रुवमेव अस्ति। तदैव ज्ञाना अग्निनां श्रेयस सुखम् उपभुज्य ते अप्यावर्तन्त इति। देवयज्ञ ब्रह्मयज्ञ वलिवैश्वय देवयज्ञ शुश्रूषा सत्करणं च साधु नीति। स्मृति ग्रंथेषु साधुताः स्वरूपं मनु स्मृति योषितं तु सर्वकृत्यानां निष्फलत्वं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अतएव पूषणाच्छाद्यभिः संस्कृतौ सत्क्रिया विधेयाद् मनुः स्त्रीनाम स्वरूपम्। साम्प्रतिक साधुक्रमो भारत सर्वकारादेशानुसारं प्रवर्त्यते यद्यपि प्रचार्यतं च। सन्ति केचन प्रदेशा यत्र संस्कृतस्य साधुता हि परानीति मार्गावरोध एव विभाव्यते। यद्यपि संस्कृता विधेयः साधु यशोधनानां हि यशो गरीयः। कीर्ति यस्य स्वजीवति स्वमुग्र रूपं धारयति राहु द्रुतं ग्रसते चंद्रं भानुं च चिरेण साधु यसेव परमं धनं मन्यन्ते मानिनः। अतः साधु हि परानीति शब्दं तेजस्विनी न पराश्रयम् अपेक्षन्ते न च ग्रसते चंद्रं स्वमुग्र रूपं धारयन्ते। जीवनस्य साफल्यं निरर्थकं च तस्य जन्म। संतः सदैव जीवन्ति म्रियन्ते च साधव ततो निगद्यते भारवीना यसेव परमं धनं मन्यते। स्थिता तेजसी मानिता के गुणास्ते ये जीवनं साफल्यं लभ्यन्ति। अतस्तेषां दर्शनं शक्यं महाकवि कालिदासो तेजस्विताया धारयन्ति। यस एव परम धनं मन्यते तदुच्यते तदाह महत्वं बहुधा वर्णितं। कीर्ति यस्य स्वजीवति साधुता हि परानीति प्रवर्त्यते च भाविका कर्म जातम्। अत उभयाश्रयनं न्याययन् विश्वहितस्य सर्वा एव मूलभूत भावना संस्कृतावश्याम् उपलभ्यन्ते। भारतीय संस्कृति विचारे बहवो अनुयोगा समापतन्ति चेतसि साध्यं क्षेममिह लोकस्य। संस्कृता अनया दुर्भावना दमनपूर्वकं अस्थैर्यं चेतसि मनः शुद्धिपूरं सरः। पावनत्यात्मनं परिहरन्ति चोचितस्त्रयं संस्कृतेश्च शौर्यं स्वतस्य वर्णः।
1: आप सुन रहे थे संस्कृत वार्ता। वार्ता का विषय था साधुता की परानीति। वार्ताकार थे ब्रजेश कुमार पाठक। श्रोताओं आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम और आपके पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में। गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त रेडियो होस्ट उमा। आपका एक बार फिर से स्वागत है और कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं वक्त का हाल। वक्त हो चुका है 7:30 और दिन है आज सोमवार का। तारीख है 25 मई 2026। तो आइए जानते हैं कि इस तारीख को क्या कुछ घटित हुआ था, क्या कुछ महत्वपूर्ण है और क्या कुछ याद रखने वाली बातें और कौन से ख़ास व्यक्ति का आज जन्मदिन है और कौन से ख़ास व्यक्ति ऐसे रहे जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कह दिया। शुरुआत आज के दिन के इतिहास के साथ। 25 मई को आज ही के दिन यानी कि 1995 में अमेरिकी वैज्ञानिकों को पहली बार जीवित जीव के डीएनए को डीकोड करने में सफलता मिली थी और ये बहुत बड़ी सफलता साबित हुई थी। 1998 में परमाणु परीक्षणों के कारण भारत पर प्रतिबंध न लगाने के लिए यूरोपीय संघ के सभी 15 सदस्य देश सहमत हो गए थे। बात करें साल 2003 की तो साल 2003 में चिली ने पहली बार विश्व कप टेनिस खिताब जीता था। साल 2006 में नासा ने COESN नामक मौसम उपग्रह अंतरिक्ष में रवाना किया और आज ही के दिन यानी कि साल 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पोत आधारित इंस्पेक्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। जी हाँ, अमेरिका ने पोत आधारित इंटरसेप्टर मिसाइल का

सफल परीक्षण किया था और श्रीलंका की सरकार ने तमिल शरणार्थी की नागरिकता पर सैद्धांतिक अनुमति दी थी साल 2007 में। और बात करें साल 2008 की, तो साल 2008 में दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के 12 देशों ने यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर एक नए संगठन का गठन किया था और हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने विवादित पुलाऊ बाटू द्वीप सिंगापुर को हस्तांतरित किया था साल 2008 में ही। साल 2010 में भारतीय मूल के 59 वर्षीय कमला प्रसाद विशेसर वर्तमान प्रधानमंत्री पैट्रिक मैनिंग को पराजित कर त्रिनिदाद और टोबैगो की पहली महिला प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई थी। ये बात थी साल 2010 की। और आप बात करते हैं उन व्यक्तियों की जिन्होंने आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 2020 में बलबीर सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कहा। बलबीर सिंह भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। भगवत रावत भारत के प्रसिद्ध कवि और निबंधकार थे। रावत जी का निधन 2012 में हुआ था। 2011 में रजनीकांत अरोल का निधन हुआ। रजनीकांत अरोल भारतीय समाज सेवी थे। साल 2010 में तपन चट्टोपाध्याय का निधन हुआ। तपन चट्टोपाध्याय बंगला अभिनेता थे, हिंदी फिल्म अभिनेता और राजनीतिज्ञ। सुनील दत्त इस दुनिया को अलविदा कहे गए साल 2005 में। 1998 में लक्ष्मीकांत इस दुनिया को अलविदा कह गए। लक्ष्मीकांत हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार थे। इनके बहुत सारे गीत आपने सुने होंगे। 1974 में कृष्णचंद्र गजपति का निधन हुआ। कृष्णचंद्र गजपति भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। सर आशुतोष मुखर्जी का निधन हुआ। साल 1924 में आशुतोष मुखर्जी बंगाल के ख्याति प्राप्त बैरिस्टर और शिक्षाविद थे। और अब बात उन व्यक्तियों के बारे में जिनका आज के दिन जन्म हुआ था, आज जो अपना जन्मदिन मना रहे होंगे। 1831 में दाग देहलवी का जन्म हुआ था। दाग देहलवी प्रसिद्ध उर्दू शायर। और 1886 में जन्म हुआ था रास बिहारी बोस का। रास बिहारी बोस प्रख्यात वकील और शिक्षाविद थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज ही के दिन सुनील दत्त का निधन हुआ था। और सुनील दत्त की जीवनी भी बहुत ही कमाल की रही है, उनके बारे में भी हम बातें करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी उन्हीं की एक फिल्म का गीत सुनते हैं। इस गीत के उस पार हम आपको यहीं मिलेंगे और बहुत सी बातें होने वाली है, बहुत सारी गपशप, बहुत सारी जानकारियाँ भी। फिलहाल ये गीत।

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे मिलन फिल्म से, और इस फिल्म के गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और आवाज़ तो आप पहचान ही गए होंगे लता मंगेशकर और मुकेश की। और ये जो फिल्म है, इस फिल्म में सुनील दत्त ने काम किया था और इस फिल्म के संगीत को तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और आज यानी कि 25 मई के दिन ही दोनों ने अलग अलग वर्षों में हालांकि इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। और अगर हम बात करें तो आज हम अभी फ़िलहाल अगर मैं आपको बताऊं सुनील दत्त के बारे में, तो उनका जीवन बहुत ही परेशानी भी भरा रहा और उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां भी आई। इनका जन्म 6 जून 1929 को हुआ था और माना जाता है कि भारतीय सिनेमा के ये दिग्गज अभिनेता रहे, निर्देशक रहे, और बाद में इन्होंने राजनीति में भी भूमिका निभाई। और इनकी कुछ मशहूर फिल्मों की बात करें तो मदर इंडिया को कोई नहीं भूल सकता, और मदर इंडिया ही वो फिल्म रही जो इनके करियर के लिए तो एक मील का पत्थर साबित हुई ही, साथ ही इनके इनके निजी जीवन के लिए भी ये फिल्म काफ़ी महत्वपूर्ण रही थी। साथ ही मुन्ना भाई MBBS 2003 में भी इन्होंने काम किया। और बात करें तो इनका मूल नाम जो था वो बलराज दत्त था, पंजाब में इनका जन्म हुआ था और झेलम जिला में। और अगर हम बात करें तो इनकी जो डेब्यू फिल्म थी वो रेलवे प्लेटफॉर्म थी, लेकिन सफलता का जो इन्होंने स्वाद चखा वो मदर इंडिया के साथ ही चखा, जो 1957 में आई थी। इस फिल्म में इनके साथ नरगिस दत्त भी थी। इनका जो किरदार था बिरजू का किरदार इनके करियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। इन्होंने और भी कुछ अन्य फिल्मों में काम किया जैसे कि साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, वक्त, पड़ोसन, क्षत्रिय, और इन्होंने कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया बाद में। 1964 में एक प्रायोगिक फिल्म आई थी यादें, और फिर रेशमा और शेरा 1971 में, और इनकी आखिरी फिल्म रही 2003 की जो ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई थी, मुन्ना भाई MBBS, जिसमें उन्होंने अपने बेटे संजय दत्त के साथ काम किया। और ये फिल्म ना केवल सुनील दत्त के लिए बल्कि संजय दत्त के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर इनके निजी जीवन के बारे में बात करें तो मदर इंडिया के सेट पर आग लग गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फिल्म ना केवल इनके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बल्कि पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट थी, बहुत महत्वपूर्ण थी। हुआ ये था कि मदर इंडिया के सेट पर आग लग गई थी और वो नरगिस दत्त को बचाने के लिए आग में कूद पड़े, और नरगिस दत्त इनसे इतनी प्रभावित हुई कि दोनों के बीच दोस्ती शुरू हुई और बाद में दोनों में प्रेम हुआ, और बाद में ये शादी का रूप ले लिया इस रिश्ते ने, और 1958 में इन्होंने शादी कर ली थी। और नरगिस दत्त 1981 में कैंसर की वजह से नरगिस दत्त का निधन हो गया, और इसका बहुत गहरा सदमा सुनील दत्त को लगा था। और बाद में अपनी पत्नी के निधन के बाद उन्होंने उनके नाम पर नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की, और उन्होंने सामाजिक कार्य भी बहुत सारे किए, साथ ही राजनीति में भी उनका सफ़र काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। वो एक लोकप्रिय राजनेता थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर मुंबई उत्तर पश्चिम और से उन्होंने 5 बार लोकसभा सांसद के रूप में उनका चुनाव हुआ था, और 2004 से 2005 तक वो केंद्र सरकार में युवा मामला और खेल मंत्री भी रहे। तो 2005 में इनका निधन हो गया और इसी के साथ इनके जीवन का सफ़र भी ख़त्म हो गया, लेकिन आज भी इन्हें इनकी इनकी जो पर्सनालिटी थी और इनके जो काम इनका जो काम था इसकी वजह से आज भी इन्हें याद किया जाता है। वहीं अभी जो आप गाना सुन रहे थे इस फिल्म के गीत के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत तैयार किया था, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वो जोड़ी जिन्होंने बहुत सारे गीतों के लिए संगीत तैयार किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उनमें से एक थे लक्ष्मीकांत शांताराम कुडालकर। इनका जन्म 3 नवंबर 1937 में हुआ था, और माना जाता है कि भारतीय संगीत के इतिहास में, संगीतकार के इतिहास में ख़ास तौर से अगर सबसे सफल का संगीतकार कोई रहे हैं तो वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी उनमें से एक है। प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा इनकी जोड़ी बनी और इतनी मशहूर हो गई कि इन्होंने 500 से भी अधिक फिल्मों में यादगार संगीत दिया। अगर इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो 3 नवंबर 1937 में इनका जन्म मुंबई में हुआ था, जिसे कि तब महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता था, और बचपन में इन्हें बहुत आर्थिक तंगी थी जिसकी वजह से उनकी जो शुरुआती शिक्षा थी वो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन संगीत में इनकी रुचि बहुत गहरी थी जिसकी वजह से उन्होंने बचपन में ही मैंडोलिन और वायलिन बजाना सीख लिया था। और इन्होंने बाल कलाकार के रूप में भक्त प्रहलाद 1946 में आई थी और संत ज्ञानेश्वर 1947 में जो फिल्म आई थी उसमें उन्होंने काम किया। जब पैसों की ज़रूरत थी तो उन्होंने ये सारे काम भी किए। लेकिन 1953 में उनकी मुलाकात हुई प्यारे लाल से और फिर दोनों ने पूरी उम्र एक साथ काम करने का फैसला किया। इसके बाद वो प्रसिद्ध संगीतकार एस एच बिहारी नौशाद साहब के साथ भी सहायक रूप से असिस्टेंट के तौर पर वो काम करने लग गए। और पहली जो उनकी स्वतंत्र फिल्म थी वो आई थी 1963 में पारस मणि। ये दोनों साथ थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लेकिन असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे थे। और पहली जो इनकी जोड़ी ने फिल्म के लिए संगीत तैयार किया 1963 में। और इनकी कुछ प्रमुख फिल्मों की बात करें तो दोस्ती, कर्ज, अमर अकबर, एंथनी, मिस्टर इंडिया, राम लखन, तेजाब, इन सारी फिल्मों के गाने आज भी लोगों को उतने ही पसंद हैं क्योंकि इन गानों में बात ही अलग है। इन गानों के संगीत, इन गानों के बोल और संगीत तैयार करने वाले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिन्होंने आज ही के दिन 25 मई 1998 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन आज भी उनका संगीत हमारे बीच है। इनके गीतों को और भी सुनेंगे, लेकिन फिलहाल एक लेते हैं छोटा सा अंतराल। अंतराल के उस पार आप सुनेंगे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजाया एक गीत।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: Some cars are designed to blend in, others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0-liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design, already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just Rs. 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now.
3: Nexa.
1: QR code scan karo, 5,000 ka cashback pao. Wah, dil ban gaya.
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म बॉबी से, और इस गीत के लिए भी संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और आवाज़ तो आप समझ ही गए होंगे, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ थी। जी हाँ, शैलेंद्र सिंह की आवाज़। और इस गीत को लिखा था किन्होंने, तो इस गीत को लिखा था राज कवि इंद्रजीत ने, माफ़ कीजिएगा, इस गीत को लिखा था बिट्ठल भाई ने। तो आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और इतिहास के पन्नों को तो हमने पलट लिया, अब जानते हैं कि समाचार पत्रों की सुर्खियाँ क्या कह रही है। पहली सुर्खी है ईरानी तेवर, डील हुई भी तो होर्मूज की बहाली में 30 दिन लग सकता है, ईरान ने कहा। फिर डवाडोल हुआ ट्रंप का फैसला, कहा 24 घंटे में उन्होंने, वो 24 घंटे में ही पलटे। ट्रंप बोले मुझे डील की जल्दी नहीं, ईरान 2.5 लाख करोड़ की जब्त संपत्ति डीफ्रीज कराने और यूरेनियम रखने पर भी अड़ा हुआ है। पाकिस्तान में आत्मघाती हमला, सैनिकों वाली ट्रेन में बड़ा धमाका, 25 मौतें। CUET UG 28 मई को होने वाली परीक्षा स्थगित हो गई है। अगली खबर है कैनोइंग और कायाकिंग के लिए एकलव्य केंद्र खुलेगा, स्कूली छात्रों का चयन, ट्रायल हुआ, ट्रेनिंग को होगा चयन। वाटर स्पोर्ट्स में नदियों को नापेंगे एकलव्य, 15 सालों में पहली बार ट्रेनिंग होनी है। मुनाफे का लालच, साइबर ठगों के जाल में बैंक अफसर, प्रोफेसर और CA भी फंस रहे हैं, लगातार साइबर थाना में इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर ठगी में दर्ज हो रहे केस। 5 जून से परिचालन की संभावना, सेतु के दूसरे बेली ब्रिज पर डेक बिछाने का काम पूरा हो चुका है। वन विभाग ने काटी सूखे और खोखले पेड़ों की खतरनाक डालियां, कई पेड़ चिन्हित किए गए। तिलका मांझी से कचहरी चौक के बीच सूखे और खोखले पेड़ों की कटाई शुरू हो चुकी है, लोगों को सतर्क रहने का संदेश दिया गया है, लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। भागलपुर स्टेशन पर अब निजी एजेंसी संभालेगी लिफ्ट एस्केलेटर की कमान, री एवेल्युएशन में CBSE ने अंतिम तिथि 25 मई की। राजस्थान केंद्रीय वीवी में खोजी गई साइलिफिकेशन तकनीक, रेत में थार में रेत पर उगाया गेहूं, अब बाजरा और मूंग की बारी। सरकारी अस्पताल का सिस्टम फेल, आम जनता की जेब से जा रहा पैसा परेशानी, सदर में सिर्फ एक ही रेडियोलॉजिस्ट, रोजाना अल्ट्रासाउंड के लिए लौटते हैं मरीज। 10 साल बाद मस्कन मिडिल स्कूल का जर्जर भवन टूटेगा, बनेगी नई बिल्डिंग, सहयोग पोर्टल पर शिकायत के बाद DPO ने पत्र जारी किया। अगली खबर है कहलगांव से जुड़ी हुई, पुलिया बनाने के लिए ठेकेदार ने रोड पर 3 माह पहले ही गड्ढा खोद कर छोड़ दिया। NTPC प्रबंधन ने कहा ठेकेदार को काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है। नवगछिया में 4 जगहों पर लगाए गए वाटर ATM बंद, इससे लोगों को परेशानी हो रही। केंद्रीय विश्वविद्यालय की जमीन अधिग्रहण के लिए 26 व 27 को लगेगा शिविर। तिनटंगा कहलगांव के बीच गंगा में आज चलेंगे मालवाहक जहाज, सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक जहाज चलाने की अनुमति। बिहार चैम्बर का शताब्दी वर्ष, गंगा सोन पर 126 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव बनेगा। अगले माह राघोपुर पुल का उद्घाटन होगा, सरकारी खजाने से उद्योग नहीं खुल सकते, PPP पर हो रहा काम, CM ने कहा। बिहार के 16 विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध 280 से अधिक कॉलेजों में अब साप्ताहिक प्लान यानी कि वीकली टीचिंग प्लान के आधार पर पढ़ाई होगी, गाइडलाइन जारी। प्रोफेसर हर हफ्ते पहले बनाएंगे टाइम टेबल, बताएंगे कब क्या पढ़ाएंगे। कोसी में पानी बढ़ा, सलखुआ में चचरी पुल पर खतरा। ईरान संकट का सबक, EV क्लीन एनर्जी में बनेंगे बड़े मौके। खाड़ी में तनाव से भारत में एनर्जी सिक्योरिटी पहली प्राथमिकता, सरकार देगी 9,500 करोड़ रुपए क्योंकि तेल पर 90% निर्भरता भारी पड़ रही। मार्च तिमाही में LIC ने मुनाफे में सबको पीछे छोड़ा, ईंधन महंगे हो रहे, सिर्फ जेब ही नहीं होगी हल्की बल्कि निवेश में भी कमाई घटेगी, पेट्रोल डीजल के दाम 5 रुपए बढ़ चुके हैं। असर, 4 सेक्टर सीधे प्रभावित, एविएशन, ऑटोमोबाइल, FMCG और कृषि सीधे प्रभावित क्षेत्रों में से। AI में अग्रणी कंपनियों का जोरदार प्रदर्शन, टॉप ग्लोबल ब्रांड्स में ChatGPT की वैल्यू 60% बढ़ी, क्लॉड की एंट्री, टॉप ब्रांड्स एप्पल को पछाड़, गूगल नंबर 1, वैल्यू 57% बढ़ी, TCS की 43% घटी। इस हफ्ते SME जुटाएंगे 129 करोड़, IPO में इस हफ्ते 3 बाजार होने वाले हैं, यशस्वी जो

एसएमआर ज्वेल्स और राजनंदनी फैशन डिजाइन। अगली खबर है, ट्रंप फैमिली की फार्मों पर उठाए सवाल, सस्पेंड हुआ। अब खबरें क्रिकेट से जुड़ी हुई, 69वें मैच में मुंबई को 30 रन से हराकर राजस्थान चौथी टीम के रूप में क्वालिफाई। पंजाब कोलकाता बाहर हो गए। 3 सीजन के बाद प्ले ऑफ में राजस्थान रॉयल्स। 70वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने 40 रन से हराया। घर पर हार के साथ विदा कोलकाता नाइट राइडर्स। फ्रेंच ओपन में तनाव के बीच जीती, करियर का सबसे मुश्किल मैच बताया। लगातार 12वीं जीत से दूसरे मैच में मार्टा। फुटबॉल में ब्रायन म्यूनिक 21वीं बार जर्मन कप चैंपियन। ईरान फुटबॉल फेडरेशन ने दी जानकारी। फुटबॉल में अमेरिका से मेक्सिको शिफ्ट हुआ ईरान का फीफा वर्ल्ड कप। अंडर 23 एशियन रेसलिंग में मानसी काजल को गोल्ड मिला। इबोला पर भारत का अलर्ट, कांगो युगांडा सुदान की यात्रा टाले, लौटने पर लक्षण दिखे तो बताएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। ये थे आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। अब वक्त है कि हम इस कार्यक्रम को अभी यहीं संपन्न करें। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले खास बात की, अपना और अपने अपनों का रखें विशेष ख्याल। और गर्मी बहुत है तो ज़रूरी है कि बहुत सारा पानी पिएं और पशुओं को पक्षियों के लिए भी पानी रखें। साथ ही जहां भी थोड़ा भी वक्त बिताते हैं वहां के साफ़ सफाई की जिम्मेदारी आपकी भी होती है। इन्हीं बातों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CEUT स्नातक परीक्षा 2026 से स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
5: इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स,
6: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
5: बिटवीन आवर टू नेशंस एंड रिमेन्स अ लिविंग ब्रिज।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
6: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
7: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौताओं को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, पालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन BLA ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने CBSE द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 40.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah says government has excluded all tribal communities from ambit of Uniform Civil Code. Petrol price hiked by 2 rupees 61 paise per litre, while that of diesel by 2 rupees 71 paise per litre. National Testing Agency postpones CUET-UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. External Affairs Minister S. Jaishankar says India and US have strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. US President Donald Trump says India can trust on him, also says he's a big fan of Prime Minister Modi. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Kolkata Knight Riders by 40 runs at Eden Gardens in Kolkata. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड्स अदा करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबायली बिरादरियों को यकसा सिविल कोर्ट के दायरे अमल से अलग रखा है। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 2.71 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी ने इस माह की 28 तारीख को कराए जाने वाले CUET UG 2026 इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका हर किस्म की दहशतगर्दी से लड़ने में शदीद दिलचस्पी के हामिल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत उन पर पूरी तरह एतबार कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो वजीर आजम मोदी के बड़े परस्तार हैं। और IPL क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा अब तक की पहली सिविल अवार्ड्स से मुतालिक एक तकरीब में पद्म अवार्ड्स अदा करेंगी। ये अवार्ड्स मुल्क के आला तरीन सिविल अवार्ड्स होते हैं जो 3 जुमरों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के तहत दिए जाते हैं। आज इस तकरीब में सदर जमहूरिया 66 पद्म अवार्ड्स अदा करेंगी जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। बकिया पद्म अवार्ड्स इस तकरीब के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे जो बाद में मुनाकिद की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: इस साल हुकूमत ने 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। इनाम याफ्तगान में 19 खवातीन शामिल हैं जबकि 16 अफराद को बाद अज़ मर्ग इन अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये अवार्ड

0: 18 ओवर 4 गेंद पर महज 163 रन बना सकी। ओस्लो में पहले राउंड के मुकाबलों के साथ ही नॉर्वे शतरंज 2026 का आगाज हो गया है। अलबत्ता इस टूर्नामेंट का आगाज सरकारी तौर पर आज भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे होगा। ये नॉर्वे शतरंज का 14वां और नॉर्वे शतरंज खवातीन का 3रा टूर्नामेंट है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर चलने के हवाले से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना के बाज़ इलाकों में भी दिन के दौरान शदीद गर्मी की सूरत हाल रहने का इम्कान है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने नई दिल्ली में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक खबर को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब लिखता है कि भारत और अमरीका के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। अखबार ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है कि दुनिया की दो बड़ी जमहूरियतों के दरमियान ताल्लुकात सिफारतकारी से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। इसी अखबार ने भारतीय हुकूमत की तरफ से अपने शहरियों को एबोला वायरस के तई मोहतात रहने के मशवरे से मुतालिक खबर को भी अपने पहले सफ़े पर शाये किया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबायली बिरादरियों को यकसा सिविल कोड के दायरे अमल से अलग रखा है। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 2.71 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया है। इम्तहानात मुनक़िद करने वाली कौमी एजेंसी ने इस माह की 28 तारीख को कराए जाने वाले CUET UG 2026 इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी से लड़ने में शदीद दिलचस्पी के हामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत उन पर पूरी तरह इत्मीनान कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो वजीर आजम मोदी के बड़े परस्तार हैं। और IPL क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म होता है।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। एक अंतराल के बाद सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: इधर आइए, इधर।
7: इधर?
6: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
8: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
7: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
8: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
7: विज्ञापन प्रसारण सेवा आ

0: आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
0: लाभवाणी,
1: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी। पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में दूध और मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिकारियों को कार्य योजना बनाने का दिया निर्देश। सीबीएसई ने कक्षा 1 से लेकर माध्यमिक स्तर तक मैथिली भाषा को मातृभाषा विषय के रूप में मान्यता प्रदान की। और मौसम विभाग ने आज बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया जिले में लू चलने की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की है। पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। पिछले 2 सप्ताह में तेल के मूल्यों में चौथी बार वृद्धि हुई है। पटना में पेट्रोल 113.35 रुपये और डीजल 99.36 रुपये प्रति लीटर हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। आज जिन विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे उनमें बिहार की 3 हस्तियां शामिल हैं। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के पूर्व कुलपति डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। वहीं टोमकच नृत्य को मुख्य धारा में लाने वाले विश्व बंधु और भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती को कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री दिया जाएगा। डॉक्टर त्रिवेदी और विश्व बंधु को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में दूध और मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिकारियों को कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया है। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन कॉम्फेड के माध्यम से दूध का उत्पादन 40 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 1.25 करोड़ लीटर करने का निर्देश दिया। श्री चौधरी ने कॉम्फेड के माध्यम से राज्य के पशुपालकों को उन्नत नस्ल के पशु उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पशुपालन में महिलाओं को प्राथमिकता देने को कहा। बैठक में मुख्यमंत्री ने मछली का उत्पादन 9 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 25 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने नेपाल और सीमावर्ती राज्यों के मछली बाजार में बिहार के मत्स्य पालकों की मछली की पहुंच सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश में 41 लाख से अधिक परिवारों का पक्का मकान बनाया जा चुका है। इस पर 5,57,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने बताया कि योजना का पहला चरण पूरा हो चुका है और दूसरे चरण में भी अच्छी प्रगति है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि सरकारी विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाएं लेने वाले शिक्षकों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभाग जल्द ही नई नीति लागू करने जा रहा है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से आयोजित अभिनंदन सह सम्मान समारोह के दौरान श्री तिवारी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और शिक्षक के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में शिक्षकों की समस्याओं का अस्थायी समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के पाठ्यक्रम में कक्षा 1 से लेकर माध्यमिक स्तर तक मैथिली भाषा को मातृभाषा विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने उन्हें इस संबंध में पत्र भेजा है। सांसद ने बताया कि CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पाठ्यक्रम में मैथिली को सम्मिलित कर लिया है। नया पाठ्यक्रम CBSE की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। पत्र के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के आलोक में कक्षा 1 से माध्यमिक कक्षा तक मातृभाषा मैथिली को शिक्षण का माध्यम बनाया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत युवा संगम के छठे चरण में पंजाब से आए प्रतिनिधियों ने कल बोधगया का भ्रमण किया। इस दौरान युवाओं ने विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर समेत अन्य ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का भ्रमण किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने बकरीद को लेकर 28 मई को होने वाली CUET UG परीक्षा स्थगित कर दी है। एजेंसी ने कहा है कि परीक्षा की नई तिथियों की घोषणा जल्द की जाएगी। 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। मीना में रात गुजारने के बाद जायरीन कल तड़के अराफात के मैदान की तरफ जाएंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। शेष समाचार एक अंतराल की बात।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पूर्वा और पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के मौसम के दो अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। दक्षिण बिहार जहां एक ओर भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, तो दूसरी ओर उत्तर बिहार में आंधी बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज दक्षिण बिहार के 6 जिलों बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया में गर्म दिन और लू चलने की चेतावनी जारी की है
2: तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों और गया जिले में लू चलने की संभावना है।
0: विभाग ने उत्तर बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान और सारण जिले में कुछ हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है।
2: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अररिया, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, किशनगंज और सुपौल जिलों में तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे और हल्की से मध्यम आंधी और बिजली गिरने के साथ बारिश होने की संभावना है।
0: इधर मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 44.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ डेहरी प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। बक्सर का अधिकतम तापमान 43.9, कैमूर का 43.7, औरंगाबाद का 43.1 तथा गया और शेखपुरा का अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कटिहार के प्राणपुर में सबसे अधिक 75.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भीषण गर्मी को देखते हुए सीतामढ़ी

0: जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक के वर्ग संचालन पर 31 मई तक जबकि भोजपुर जिला प्रशासन ने 27 मई तक रोक लगा दी है। प्रदेश में पिछले 2 सप्ताह से जारी भीषण गर्मी और लू को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया है। लू से प्रभावित मरीजों को यह टीम तत्काल सरकारी अस्पताल पहुंचाएगी और इलाज की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएगी। कोई भी हीटवेव से प्रभावित मरीज हेल्पलाइन नंबर 104 पर स्वास्थ्य सुविधा के लिए मदद ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने के अवसर पर प्रदेश भाजपा की ओर से राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि 5 जून से इस अभियान की शुरुआत होगी। 21 जून तक चलने वाले अभियान के तहत संवाद कार्यक्रम, जनसंपर्क अभियान, पौधारोपण अभियान, प्रगति यात्रा और विकसित भारत संकल्प सम्मेलन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य का साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर 1930 जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित होगा। इससे कॉल सेंटर पर साइबर अपराध और ठगी से जुड़ी शिकायतें वर्तमान के मुकाबले काफी कम समय में दर्ज हो सकेंगी। IG साइबर अपराध रंजीत कुमार मिश्रा ने बताया कि नई व्यवस्था में कार्रवाई में लगने वाला समय घटेगा और पीड़ितों को गोल्डन आवर का फायदा होगा। उन्होंने बताया कि AI से सूचना की सटीकता बढ़ेगी और कार्रवाई में तेजी आएगी। पटना जिले के पचमला थाना क्षेत्र के नौरंगा जलालपुर गांव में 2 पक्षों के बीच हुई गोलीबारी के बाद कुख्यात सोनू मोनू के घर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम की घर वालों की ओर से तलाशी लेने के मामले में 2 थानाध्यक्षों को निलंबित कर दिया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि छापेमारी के दौरान कार्यशैली सही नहीं पाए जाने के चलते पचमला और हाथीदह थानाध्यक्षों को निलंबित किया गया है। इधर भोजपुर के पुलिस अधीक्षक राज ने खवासपुर थानाध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इन सभी पर एक मामले में हिरासत में लिए युवकों को छोड़ने के लिए 50,000 रुपए घूस मांगने का आरोप है। वहीं कटिहार के पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 16 पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। सुपौल जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र के कमरिया उपशाखा नहर के पास शराब तस्करी की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इसमें एक महिला होमगार्ड और पीटीसी जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावरों ने पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया और महिला होमगार्ड की राइफल भी छीन ली। इस मामले में 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अररिया जिले के कुवारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 115 किलो गांजा बरामद किया है। बेगूसराय पुलिस ने एक मामले में 20 वर्षों से फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कैमूर जिले के बबुरा गांव से पुलिस ने पशु तस्करों से 1 दर्जन पशुओं को मुक्त कराया है। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के त्रिकालपुर गांव में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 1 युवक की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, सरकार उद्यमियों को सुरक्षा और भरोसा देगी। दैनिक जागरण लिखता है, पशुपालकों को कॉम्फेड के माध्यम से दी जाएगी उन्नत नस्ल की गाय, भैंस और बकरी। प्रभात खबर की सुर्खी है, पाकिस्तान में सैन्य कर्मियों की ट्रेन पर आत्मघाती हमला, 24 की मौत। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 48 घंटे तक जारी रहेगा भीषण गर्मी का सितम, फिर बदलेगा मौसम। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, बिहार की 3 हस्तियों को आज मिलेगा पद्मश्री अवार्ड। आज अखबार की सुर्खी है, 1.5 लाख बेटियों को मिलेंगे 50,000 रुपए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी। पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में दूध और मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिकारियों को कार्य योजना बनाने का दिया निर्देश। सीबीएसई ने कक्षा 1 से लेकर माध्यमिक स्तर तक मैथिली भाषा को मातृभाषा विषय के रूप में मान्यता प्रदान की। और मौसम विभाग ने आज बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया जिले में लू चलने की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बिहार सरकार लेकर आई है आपकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक नई पहल, सहयोग शिविर। इसके तहत प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायत सरकार भवन अथवा निकटवर्ती सार्वजनिक स्थल पर सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
2: सहयोग पोर्टल sahyog.bihar.gov.in पर कभी भी ऑनलाइन परिवाद दर्ज कर सकते हैं। परिवाद दर्ज करने की तिथि से 30 दिनों के अंदर समाधान सुनिश्चित कर सहयोग पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
1: साथ ही सहयोग शिविर में संबंधित जानकारी हेतु निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1100 सुबह 8 से शाम 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। सहयोग से सबका सम्मान, जीवन आसान।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
6: शुभ वाणी,
5: लाभ वाणी,
6: आकाशवाणी।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
9: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी
10: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्स एवं FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए आनंद ले फिल्म संगीत के कार्यक्रम नगमे नए पुराने का। कार्यक्रम का पहला गाना फिल्म अशोका से, गीतकार हैं गुलजार, संगीत तैयार किया है अनु मलिक ने, आवाजें दी है अलका याग्निक और हेमा सरदेसाई ने।

0: 闻。
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: दीदी नौकरी लग गई।
4: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
3: हाँ दी, नया मोबाइल।
4: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
3: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
4: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
3: पर दी,
4: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
3: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
4: अच्छा।
5: RBI कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: फिल्म संगीत कार्यक्रम नगमे नए पुराने का अगला गाना अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की मिलीजुली आवाजों में, फिल्म है तमाशा, बोल हैं इरशाद कामिल के, संगीत तैयार किया है AR रहमान ने।

0: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric. Nexa.
1: Namaskar, ye Akashvani hai. 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: श्रोताओं, आपका पुनः स्वागत है फिल्म संगीत के कार्यक्रम नगमे नए पुराने में। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आइए अब सुने गीतकार मनोज मुंतशिर का लिखा गाना पलक मुच्छल

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आपके लिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत आज चेतन कुमार चौबे के स्वर में। आइए सबसे पहले सुने कबीरदास की ये रचना।

0: Some cars are designed to blend in. Others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0-liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design. Already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just Rs. 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now. Nexa.
1: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
2: क्रेश
3: क्रेश
1: और बाल्टी बॉय
4: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रेश ट्रेश और बाल्टी बॉय
5: सुगम संगीत में कलाकार हैं चेतन कुमार चौबे प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया जा रहा है आइए अब सुने मीराबाई की ये रचना

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं चेतन कुमार चौबे। आइए सुने महादेवी वर्मा की लिखी ये रचना।

0: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
1: सुगम संगीत में कलाकार थे चेतन कुमार चौबे। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। श्रोताओं, प्रातः के 10 बज चुके हैं। ये समय होता है फिल्म संगीत के कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से का। कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म प्यासा से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, संगीतकार सचिन देव वर्मन, गीतकार साहिर लुधियानवी।

अब सुनिए लता मंगेशकर और साथियों को बहारों की मंजिल फिल्म के इस गीत के लिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, बोल है मजरूह सुल्तानपुरी के।

AIR at 90. आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। श्रोताओं, आइए अब सुने अनीता फिल्म के इस गीत के लिए गायक कलाकार मुकेश को। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अल्फाज राज।

श्रोताओं, अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में जीने की राह फिल्म से। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अब संगीतकार सचिन देवर्मन के संगीत से सजाए गीत आराधना फिल्म से। आनंद बख्शी के लिखे गीत को आवाज दी है किशोर कुमार ने।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: फिल्म संगीत कार्यक्रम नगम पुरानी फिल्मों से में आपका पुनः स्वागत है। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुने फिल्म बातों बातों में का ये गाना। आशा भोसले, अमित कुमार एवं साथियों की आवाज़ों में बोल हैं अमित खन्ना के। संगीत तैयार किया है राजेश रोशन ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। कलाकार हैं रेखा देवी। आइए इनकी आवाज में सुने ये देवी गीत।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम कलाकार हैं रेखा देवी आइए अब सुने ये विवाह गीत

लोकगीत में कलाकार थी रेखा देवी। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। श्रोताओं कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजे हैं और वक्त है कार्यक्रम नई फिल्मों से के तहत नई फिल्मों के संगीत को सुनने का। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म हक के इस गीत से, जिसे गाया है विशाल मिश्रा और अरमान खान ने। गीत के बोल लिखे हैं कौशल किशोर ने, धुन बनाई है विशाल मिश्रा ने।

अभी आपने सुना फिल्म परम सुंदरी का गीत सोनू निगम और कृष्णकली साहा की आवाज़ में। गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार सचिन जिगर। कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए फिल्म सैयारा से। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने, गीत और संगीत मिथुन का है।

आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, कहीं जाइएगा नहीं, हम बस यूं गए और यूं आए। बने रहें आकाशवाणी भागलपुर के संग।

आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं फिल्म भूल भुलैया 3 का ये गीत, जिसे गाया है श्रेया घोषाल ने। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, धुन बनाई है अमाल मलिक ने।

आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। मित्रों, इससे पहले कि हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक सूचना आपको दे दें। युवावाणी के मासिक स्तंभ फोन इन कुछ बातें कुछ गाने कार्यक्रम के लिए फोन कॉल रिकॉर्डिंग 27 मई 2026 को दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच होगी। इस कार्यक्रम में श्रोतागण अपने पसंदीदा गाने सुनने के लिए हमें 2400981 पर कॉल कर सकते हैं और भागलपुर से बाहर के श्रोता बंधु नंबर से पूर्व 0641 लगाकर हमें कॉल कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण 31 मई

2026 को यानी आने वाले रविवार को संध्या के ठीक 5 बजे किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई। और अब आइए श्रोताओं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिल्म गदर 2 का ये गीत, जिसे गाया है नीति मोहन, विशाल मिश्रा, शहनाज अख्तर, साहिल अख्तर और मिथुन ने। सईद कादरी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है मिथुन ने।

0: इस गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम नई फिल्मों से आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कंपेयरिंग पर आधारित फिल्म संगीत, शीर्षक है गुलदस्ता।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता, एक ऐसा कार्यक्रम जहां हर गीत किसी एहसास की खुशबू बनकर दिलों में उतर जाता है। सभी सुनने वालों को मीनू का प्यार भरा नमस्कार। आज फिर लेकर हाजिर हूँ सुरों, जज्बातों और खूबसूरत नगमों से सजा हुआ एक प्यारा सा गुलदस्ता। दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जहां दिल सुकून से बैठे, जहां यादें धीमे धीमे मुस्कुराए और जहां संगीत हमारे जज्बातों को अपनी मीठी धुनों में पिरो दे। फिल्मी गीतों का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों। कभी ये हमें किसी अपने की याद दिलाते हैं, कभी बीते हुए खूबसूरत लम्हों से मिला देते हैं, तो कभी दिल की अनकही बातों को भी बड़ी ही नज़ाकत से बयां कर जाते हैं। किसी गीत में मोहब्बत की मिठास होती है तो किसी में जुदाई की हल्की सी कसक। कुछ नगमे मुस्कुराना सिखाते हैं तो कुछ चुपके से आंखों को नम कर जाते हैं, और यही तो जादू है फिल्म संगीत का, जो हर दिल को अपने रंग में रंग देता है। तो आइए श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाते हैं। चलिए खो जाते हैं सुरों की उस दुनिया में जहां हर धुन दिल की धड़कन बन जाए, हर शब्द एक एहसास बन जाए और हर गीत आपकी मुस्कुराहट की वजह बन जाए। कभी कभी दिल की सबसे खूबसूरत ख्वाहिश सिर्फ इतनी होती है दोस्तों कि कोई हमें भी उतनी ही शिद्दत से चाहे जितनी शिद्दत से हम किसी को अपने ख्यालों में सजाते हैं। कोई ऐसा हो जो हमारी खामोशियों को भी समझ ले, हमारी मुस्कुराहट के पीछे छुपे एहसासों को पढ़ ले और प्यार का इजहार कुछ इस तरह से करे कि दिल उम्र भर उसी एहसास में भीगता रहे।

दोस्तों, कभी कभी दिल में कुछ एहसास इतने गहरे उतर जाते हैं कि उन्हें शब्दों में बांधना आसान नहीं होता। दिल हर पल किसी का नाम धीरे धीरे गुनगुनाता रहता है, लेकिन जब उन जज्बातों को कागज पर उतारने की बारी आती है तो हाथ मानो ठहर से जाते हैं और मन बस यही सोचता रह जाता है कि आखिर अपने प्यार का इजहार कैसे करें। दोस्तों, मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि ये बिना आवाज के भी दिल की धड़कनों में भी सुनाई देती है। किसी की याद हर पल मुस्कान बनकर साथ चलती है, उसका जिक्र आते ही चेहरा खिल उठता है और फिर दिल यही चाहता है कि अपने सारे एहसास एक खत में लिखकर उसे भेज दिए जाएं। लेकिन जब प्यार सच्चा हो ना, तो शब्द भी शर्माने लगते हैं। कागज पर लिखी हर पंक्ति में दिल की धड़कन उतर आती है और हर अल्फाज मोहब्बत की खुशबू से महकने लगते हैं।

दोस्तों, मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास जो कभी किसी की मुस्कुराहट में दिखाई देता है तो कभी किसी की आवाज़ में सुनाई देता है। और जब दिल किसी को अपनी दुनिया मान ले तो फिर हर लफ्ज़ शायरी बन जाता है और हर धड़कन कोई गीत गुनगुनाने लगती है। जनाब, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें किसी नाम की ज़रूरत नहीं होती, वो बस दिल में बस जाते हैं, किसी की दुआ बनकर, किसी की चाहत बनकर और कभी कभी किसी की खूबसूरत शायरी बनकर। जब कोई किसी अपने से ये कहे कि तू तो मेरा शायर है और मैं तेरी शायरी, तो यकीन मानिए ये सिर्फ एक गीत नहीं रहता बल्कि दो दिलों की धड़कनों की कहानी बन जाता है। किसी की आंखों में अपने सपने देखना, किसी की बातों में अपना जिक्र ढूंढना और किसी के मुस्कान में अपनी खुशी पा लेना, शायद यही मोहब्बत की सबसे हसीन तस्वीर होती है। और जब प्यार दिल से निकलकर अल्फाज बन जाए तो हर पंक्ति में अपना पन झलकता है, हर सुर में चाहत महकने लगती है। तो आइए मोहब्बत की इसी हसीन खुशबू और दिल के छू जाने वाले जज्बात प्यार से भरे मधुर सुरों के साथ सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत और रोमांटिक सा गाना।

दोस्तों, सजती हुई पालकी, हाथों में मेहंदी की महक, आंखों में अनगिनत सपने और दिल में अपने महबूब से मिलने की मीठी सी हलचल। दोस्तों, मोहब्बत का सफ़र सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं होता, बल्कि उन जज्बातों का खूबसूरत कारवां होता है जो बरसों से किसी एक चेहरे के इंतज़ार में चलते रहते हैं। जब एक दुल्हन अपने घर की चौखट से विदा होकर अपने महबूब की दुनिया की ओर कदम बढ़ाती है, तो उस पल में खुशी भी होती है, शर्म भी होती है और आंखों में हल्की सी नमी भी होती है। पालकी की हर धीमी चाल जैसे दिल की धड़कनों की गीत बन जाती है। हवाएं भी धीरे धीरे गुनगुनाने लगती हैं और चांद भी जैसे उस हसीन पल का गवाह बनकर आसमान में ठहर सा जाता है। कहीं माँ की दुआएं साथ चलती हैं तो कहीं महबूब की बाहों में सिमट जाने का सपना पलकों पर सज सा जाता है और दिल धीरे से ये कहता है। क्या कहता है वही सुनते हैं इस गीत के जरिए। मोहब्बत, सपनों और जज्बातों से सजे इस खूबसूरत माहौल में सुनते हैं एक बेहद प्यारा और दिल को छू जाने वाला नगमा।

दोस्तों, कभी कभी मोहब्बत की कहानी किताबों में नहीं, दिल की धड़कनों में लिखी जाती है। और जब एहसास को शब्द मिल जाए तो कागज भी महक उठते हैं, कलम भी गुनगुनाने लगती है। दोस्तों, हर प्रेम कहानी में कुछ अधूरे ख्वाब होते हैं, कुछ मीठी यादें होती हैं, कुछ ऐसे पल जिन्हें इंसान सारी उम्र अपने दिल की किताब में संभाल कर रखता है। तो आइए आज इसी मोहब्बत भरे एहसास में सुरों के जरिए महसूस करते हैं। तालियों की खूबसूरत गूंज के साथ स्वागत कीजिए इस प्यारी सी प्रस्तुति का।

इस गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम गुलदस्ता। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक, प्रस्तुत करता है श्री पार्वती के।

नारी लोक सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को अर्चना का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज विश्व फुटबॉल दिवस है, जिसे प्रतिवर्ष 25 मई को मनाया जाता है। इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 मई 2024 को एक संकल्प पारित करके 25 मई को आधिकारिक रूप से विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया। यह दिवस 25 मई 1924 को पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हुए पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित संकल्प में फुटबॉल की वैश्विक पहुंच और वाणिज्य, शांति और कूटनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रभाव को स्वीकार किया गया और यह माना गया कि फुटबॉल सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसमें फुटबॉल को बढ़ावा देने में फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे फीफा कहते हैं, की मूलभूत भूमिका और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय फुटबॉल संघों के साथ साथ संबंधित संघों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी मान्यता दी गई है। संकल्प सभी देशों को शांति, विकास और महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साधन के रूप में फुटबॉल और अन्य खेलों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही यह देशों को फुटबॉल और अन्य खेलों और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नीतियां और कार्यक्रम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। विश्व फुटबॉल दिवस बहनों वैश्विक स्तर पर शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी इनका अहम योगदान रहा है। एक प्रमुख वैश्विक खेल के रूप में फुटबॉल का एक अनूठा स्थान है। यह महज मनोरंजन से कहीं बढ़कर एक सार्वभौमिक भाषा है, जिसे हर उम्र के लोग राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक सीमाओं से परे जाकर बोलते हैं। यह साझा जुनून, समुदाय की भावना और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देता है। फुटबॉल की व्यापक लोकप्रियता और सुलभता इसे स्वास्थ्य और खुशहाली को बढ़ावा देने का एक सशक्त साधन बनाती है। यह मैदान पर और मैदान के बाहर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच भी रहा है। इसके अलावा फुटबॉल सामाजिक समावेश के लिए उत्प्रेरक का काम करता है, एकता को बढ़ावा देता है और विभिन्न समुदायों के बीच की बाधाओं को दूर करता है। यह एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग आपसी समझ, सहिष्णुता, सम्मान और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए एकत्रित होते हैं। बहनों, फुटबॉल के इतिहास की बात करें तो यह लगभग 2000 साल पुराना है, जिसकी शुरुआत ईसा पूर्व 2nd शताब्दी में प्राचीन चीन के हान राजवंश के दौरान

खेला जाता था जिसमें खिलाड़ी चमड़े की गेंद को पैरों से मारकर जाल में डालते थे। इसके अलावा प्राचीन ग्रीस में एपीसीसी रोस और रोमन साम्राज्य में हर्पेस्टन जैसे खेल खेले जाते थे। 19वीं शताब्दी के आसपास इंग्लैंड में मॉब फुटबॉल खेला जाता था जिसमें गांवों और कस्बों के बीच हिंसक और बिना नियम के खेल होते थे। आधुनिक फुटबॉल की शुरुआत 1863 को हुई थी। इंग्लैंड के स्कूलों में खेलों के अलग अलग नियम थे। मतभेदों को सुलझाने के लिए 1863 में लंदन में द फुटबॉल एसोसिएशन का गठन किया गया जिसने खेल को एक मानकीकृत और संहिताबद्ध रूप दिया। एवेनेजर कार्वे मोरलो को आधुनिक फुटबॉल का जनक माना जाता है। खेल के तेजी से प्रसार को देखते हुए 21 मई 1904 को फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा की स्थापना की गई थी। तो बहनों, इसी के साथ हम अपनी इस चर्चा को अब यहीं विराम देते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आनंद लेते हैं इस गीत का।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: AIR at 90.
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: बहनों आइए सुनते हैं ये वार्ता। विषय है महिलाओं के लिए योग और व्यायाम के लाभ। वार्ताकार है मानसी माही। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
4: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाएं घर परिवार नौकरी और समाज की अनेक जिम्मेदारियां निभाती है। लगातार काम और तनाव के कारण उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे समय में योग और व्यायाम महिलाओं के लिए एक वरदान के समान है। योग केवल शरीर को स्वस्थ नहीं बनाता बल्कि मन को शांत, आत्मविश्वास को मजबूत और जीवन को संतुलित बनाता है। भारत की प्राचीन परंपरा में योग का विशेष महत्व है। आज पूरी दुनिया योग को अपनाकर स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ रही है। महिलाओं के जीवन में किशोरावस्था, गर्भावस्था, मातृत्व और बढ़ती उम्र जैसे कई परिवर्तन आते हैं। इन सभी अवस्थाओं में योग और नियमित व्यायाम शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। योग का अर्थ है जोड़ना, अर्थात शरीर मन और आत्मा का संतुलन स्थापित करना। योग में आसन, प्राणायाम, ध्यान और संतुलित जीवन शामिल होती है। व्यायाम शरीर को सक्रिय और मजबूत बनाता है, जबकि योग शरीर को के साथ साथ मानसिक शांति भी प्रदान करता है। महिलाओं के लिए योग और व्यायाम के प्रमुख कुछ लाभ हैं, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। प्रतिदिन योग और व्यायाम शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं। प्रतिदिन नियमित अभ्यास से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती है तथा शरीर में लचीलापन आता है और महिलाएं अधिक ऊर्जावान महसूस करती है। इसके लाभ हैं, शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, थकान कम होती है, हड्डियां मजबूत होती है, शरीर का संतुलन बना रहता है। दूसरा लाभ है मानसिक तनाव को कम करता है। आजकल महिलाओं में तनाव, चिंता, अवसाद की समस्याएं बढ़ रही हैं, नींद कम आ रही हैं। योग और ध्यान मन को शांत करते हैं और प्राणायाम से मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तनाव कम होता है, मन शांत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और नींद अच्छी आती है। योग और व्यायाम करने से मोटापा नियंत्रित करने में सहायक होता है। अनियमित खान पान, शारीरिक गतिविधियां की कमी के कारण महिलाओं में मोटापा बढ़ रहा है। योग और व्यायाम कैलोरी को नियंत्रित करके वजन कम करने में मदद करते हैं। वजन नियंत्रित होता है, पेट की चर्बी कम होती है, शरीर आकर्षक बनता है, डायबिटीज और हृदय रोग का खतरा कम होता है, हार्मोन संतुलन बनाए रखता है। लगातार आप योग और व्यायाम करते हैं तो महिलाओं के शरीर में हार्मोनल परिवर्तन अधिक होते हैं। योग हार्मोन संतुलित रखने में सहायक होता है। इससे लाभ है, मासिक धर्म की समस्याएं कम होती है, PCOD PCOS में लाभ मिलता है, मूड स्विंग कम होते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। लगातार योग करने से गर्भावस्था में भी लाभदायक होते हैं। गर्भावस्था के दौरान हल्का योग व्यायाम माँ और बच्चे दोनों के लिए लाभकारी होता है। डॉक्टर की सलाह से योग करने पे प्रसव आसान हो सकता है। आप हल्का योग करते हैं तो कमर दर्द कम होता है, शरीर में रक्त संचार अच्छा रहता है और तनाव कम होता है। प्रसव के समय सहन शक्ति बढ़ती है। लगातार योग करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इससे शरीर कई प्रकार की बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है, जैसे सर्दी जुखाम कम होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, ऊर्जा बनी रहती है, संक्रमण का खतरा कम होता है, हड्डियों और जोड़ों को भी मजबूत बनाता है। बढ़ती उम्र में महिलाओं को कैल्शियम की कमी और हड्डियों की कमजोरी की समस्या होती है। योग और व्यायाम हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, गठिया का खतरा कम होता है, कमर दर्द में राहत मिलती है, शरीर में लचीलापन बढ़ता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, नियमित व्यायाम से रक्त संचार बढ़ता है और हृदय स्वस्थ रहता है। लगातार योग करने से आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच बढ़ता है, वे अपने कार्यों में अधिक आत्मविश्वास के साथ कर सकती है, सकारात्मक सोच विकसित होती है, मन प्रसन्न रहता है। महिलाओं के लिए कुछ उपयोगी योगासन, प्रतिदिन महिलाओं को 30 मिनट योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, जैसे ताड़ासन, भुजंगासन, वज्रासन, त्रिकोणासन, सूर्य नमस्कार। इन सभी आसन को करने से महिलाओं के शरीर लचीले होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसको करने से तनाव कम और मन शांत रहता है। और 5 मिनट अगर आप योग निद्रा नहीं कर सकते हैं तो आप शवासन में लेट जाएं। शवासन में लेट कर आप 5 से 10 मिनट आप उल्टी गिनतियां शुरू करें। उल्टी गिनतियां जब आप शुरू करते हैं तो आपकी मन की एकाग्रता बनी रहती है और आपको नींद अच्छी आती है। आप अपने चित्त पे कंट्रोल कर सकते हैं। महिलाओं के लिए उपयोगी कुछ व्यायाम भी हैं, जैसे वॉकिंग, प्रतिदिन 30 मिनट चलना। अगर आप मॉर्निंग वॉक नहीं जा सकते हैं, अगर आप किसी पार्क में, किसी फील्ड में नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने घर के छतों पे जाके 30 मिनट चलने की कोशिश करें। साइकिलिंग अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप योग के माध्यम से वहाँ पे चक्की चलासन, नौका चलासन, ये आसन होता है जिससे हृदय और पैरों को मजबूत बनाया जाता। आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग के माध्यम से शरीर लचीलापन होता है। स्केपिंग, रस्सी कूदने से वजन नियंत्रित करने में सहायक होता है। योग और व्यायाम करते समय कुछ सावधानियों को भी देखा जाता है। हमेशा योग को खाली पेट में करना चाहिए, आरामदायक कपड़े पहने और धीरे धीरे अभ्यास को शुरू करें। जब भी आप योग करें, पवन मुक्तासन भाग एक से शुरू करें। अब शरीर पवन मुक्तासन भाग एक को करने से शरीर की जो हड्डियां होती हैं, जितने ज्वाइंट होते हैं, वो लचीला होता है और उसके अंदर जो हवा होती है उसको निकाला जाता है। और धीरे धीरे इस प्रकार से धीरे धीरे योग के आसन को शुरुआत किया जा सकता है। नियमित अभ्यास करते रहना चाहिए। आधुनिक जीवन में योग की जो आवश्यकताएं होती हैं, आजकल मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी के कारण शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं। महिलाएं लंबे समय तक बैठकर काम करती हैं, जिससे मोटापा, कमर दर्द, तनाव जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। योग और व्यायाम आधुनिक जीवन की इन समस्याओं का सरल समाधान है। यह बिना किसी महंगे उपकरण के घर पर भी किया जा सकता है। स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकती है। योग महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। इससे वे आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनती है। योग महिलाओं को यह सिखाता है कि स्वयं का स्वस्थ होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना परिवार की जिम्मेदारियां।
3: अभी मैंने सुन रही थी मानसी माही से वार्ता। विषय था महिलाओं के लिए योग और व्यायाम के लाभ। इनकी इतनी अच्छी और उपयोगी वार्ता के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि है और आज के दिन हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार गंगा दशहरा है। माना जाता है कि इस दिन माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। गंगा दशहरा के लिए कहा जाता है कि भागीरथ की तपस्या से जब गंगा प्रसन्न हुई तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, मेरे पुरखों का उद्धार करने के लिए आप पृथ्वी पर अवतरित होने की कृपा करें। इस पर गंगा ने कहा कि बस, मैं तुम्हारी बात मानकर पृथ्वी पर अवश्य आऊंगी, किंतु मेरे वेग को भगवान शिव के अतिरिक्त और कोई सहन नहीं कर सकता, इसलिए तुम पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो। यह सुनकर भागीरथ ने भगवान शिव को शिव की घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी हिमालय के शिखर पर गंगा के वेग को रोकने के लिए खड़े हो गए। गंगा जी स्वर्ग से सीधे शिव जी की जटाओं पर जा गिरी। इसके बाद भागीरथ गंगा जी को अपने पीछे पीछे अपने पूर्वजों के अस्थियों तक ले आए, जिससे उनका उद्धार हो गया। भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार करके गंगा जी सागर में जा गिरी और अगस्त्य मुनि द्वारा

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
0: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
0: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गाँव गणेश धाम परसूली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी। आगे लिखते हैं,
2: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
0: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए। आपसे निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
2: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
2: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहां से कहां तक बनाया जाए।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
2: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
0: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
2: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है।

0: साथियों, मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा, ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद, धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्धशीर बुड़जोर जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्धशीर बुड़जोर जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी

0: वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
1: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्धशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनानायक थे।
0: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
1: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्धशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
0: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
2: जवानों,
3: जी सर।
2: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
3: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
2: तुमने ठीक सुना है। यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
4: जी सर।
2: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
4: जी जनाब।
2: हाथ गोला हाथ में लो।
4: ले लिया जनाब।
2: अब पिन रिलीज करो।
5: फेंको।
4: फेंको जनाब।
6: अरे अरे, ये क्या हुआ?
7: अरे बचो,
8: फटने जाओ,
7: सभी जाओ, सभी जाओ,
8: जमीन पर लेट जाओ, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल
1: जाओ। साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
0: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
4: ये आदि क्या कर रहा है?
0: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
3: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
4: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
9: सही में
4: बहादुर सैनिक हो तुम।
1: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
10: May I come in, sir?
3: Yes, come in.
10: Sir.
3: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
10: सर।
3: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
10: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
3: हाँ हाँ, कहो।
10: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
3: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
10: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
3: गो अहेड यंग मैन।
10: सर।
1: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
0: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
1: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
5: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जनसामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
9: जी सर,
2: हम पूरा ध्यान रखेंगे।
5: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
11: जी जनाब।
3: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
10: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
2: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
5: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
2: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
5: फायर।
2: सर ये टैंक तो गया।
5: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
2: सर ये टैंक तो गया।
5: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
2: यस सर।
1: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौविंडा छोड़कर चली गई।
0: इस तरह चौविंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी। और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरमोत्कर्ष का।

0: बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था, ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
1: सितंबर 1965 का दिन, उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निगल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।
6: सुनो ना।
7: हाँ?
6: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
7: तो रोका किसने है? हाँ?
6: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
7: मुझसे?
6: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
7: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
6: पर उससे मेरा क्या फायदा?
7: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
6: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
7: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
6: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ। 8700014242।

0: 2-4-2 पर।
1: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकरंग में सुनिए पूनम कुमारी के गाए लोकगीत। कार्यक्रम के आरंभ में इनसे सुनते हैं शिव भजन।

और कास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार हैं पूनम कुमारी।

आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकरंग। श्रोताओं, लोकरंग कार्यक्रम को हम पुनः जारी रखेंगे प्रादेशिक समाचार के बाद दोपहर 1:20 पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:10 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 11 जून तक करेंगे मैराथन बैठक। आज जल संसाधन, पेयजल एवं वाणिज्य कर विभाग के कार्यों की होगी समीक्षा। हाईकोर्ट ने लैब असिस्टेंट भर्ती मामले में दिया बड़ा फैसला। विज्ञापन की शर्त रद्द करते हुए कहा, वैधानिक नियमों से ऊपर नहीं हो सकती विज्ञापन की शर्तें। राज्य सरकार ने की गांवों के पारंपरिक ज्ञान को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच दिलाने की पहल। युवाओं के लिए झारखंड ग्रामोत्सव इंटर्नशिप इनोवेशन योजना शुरू। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर सियासी संग्राम। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लगाया मुनाफाखोरी का आरोप। भाजपा ने कहा, वैश्विक बाजार मूल्यों से तय होती है कीमतें। और हॉकी, झारखंड की स्पेशल जनरल बॉडी ने राष्ट्रीय खेल अधिनियम 2025 के अनुरूप नए बॉय लॉस को सर्वसम्मति से दी मंजूरी। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने यह बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
1: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 11 जून तक राज्य के विकास योजनाओं की प्रगति और वर्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना को लेकर विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठकों में आज जल संसाधन, पेयजल एवं वाणिज्य कर विभाग, 26 मई को स्कूली शिक्षा, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग, जबकि 27 मई को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा की जाएगी। हाईकोर्ट ने लैब असिस्टेंट प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने विज्ञापन की उस शर्त को रद्द कर दिया है जिसमें स्नातक स्तर पर संबंधित विषयों को 2 या 3 वर्ष तक पढ़ने की अनिवार्यता तय की गई थी। वहीं हाईकोर्ट ने राज्य के कर्मचारियों के मामले में स्पष्ट किया है कि किसी भी कर्मचारी का वेतनमान और सेवा शर्तें उसके औपचारिक नियुक्ति पत्र जारी होने की तारीख से नहीं बल्कि उस विज्ञापन और चयन प्रक्रिया की तारीख से तय होंगी जिसके तहत भर्ती शुरू की गई थी। राज्य सरकार ने युवाओं के लिए झारखंड ग्रामोत्सव इंटर्नशिप इनोवेशन योजना की शुरुआत की है। योजना का उद्देश्य गांवों में मौजूद पारंपरिक ज्ञान और नवाचारों को नई पहचान देना है। एक रिपोर्ट।
2: झारखंड सरकार ने युवाओं के लिए झारखंड ग्रामोत्सव इंटर्नशिप इनोवेशन योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य गांवों की पारंपरिक जानकारी और नवाचारों को नई पहचान देना है। ये 2 माह का क्रेडिट आधारित इंटर्नशिप कार्यक्रम है जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार किया गया है। योजना के तहत छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड, शैक्षणिक क्रेडिट और विशेषज्ञों की मेंटरशिप दी जाएगी। कार्यक्रम में झारखंड के उच्च शिक्षण संस्थानों के 17,000 से अधिक छात्रों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इंटर्नशिप के दौरान छात्र पंचायतों में जाकर स्थानीय नवाचार, पारंपरिक ज्ञान और ग्रामीण उत्पादों का अध्ययन करेंगे। योजना में बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीमों को राज्य स्तर पर 1,25,000 रुपए तक के पुरस्कार भी दिए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2

0: दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पूर्ण मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने पिछले 11 दिनों में चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। इसको लेकर राज्य में सियासी संग्राम जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने सरकार पर आम लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया है।
1: जनता से इन्हें कोई मतलब नहीं, अपने 2-4 उद्योगपति मित्रों से मतलब है, कैसे उनका मुनाफा बढ़े, कैसे उनकी जेब भारी हो। जो रिफाइंड ऑयल है, डीजल पेट्रोल, उसे हम निर्यात कर रहे हैं। वारे वाह, विडंबना देखिए, अपने देश में हम महंगा करते जा रहे हैं। इसका असर क्या होगा? आम रोजमर्रा की वस्तुएं आसमान छूने लगेंगी।
0: वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने दामों की वृद्धि के लिए कांग्रेस की पूर्व की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि सरकार हॉर्मूज पर नजर रखे हुए है, जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी।
2: पेट्रोल की कीमतें वैश्विक बाजार के हिसाब से तय होती हैं, ये किसकी देन है? ये सरकार कांग्रेस की थी उस समय, वरना उस समय तक तो सरकारें कंट्रोल करती थी। उसके बाद ऑयल कंपनी तेल पर नियंत्रण करने लगी प्राइसेस पे। तो हम मानते हैं कि ये डिफिकल्ट डिसीजन है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और हम गल्फ ऑफ हॉर्मूज पर लगातार नजर बनाए हुए। जैसे ही वहाँ स्थितियाँ बेहतर होंगी, ये प्राइसेस फिर से पुराने दर पे आ जाएगी।
0: धनबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों और अस्वच्छ तरीके से खाना बेचने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजा कुमार ने बताया कि फूड सेफ्टी ऑन व्हील के जरिए मौके पर ही स्ट्रीट फूड, मिठाई की दुकानों और होटलों के खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है।
3: टेस्टिंग व्हीकल मंगाया गया है, साथ में दुनिया लोग भी आए हुए हैं। स्पॉट जो स्पॉट पे कई दुकानें टेलीकॉम से हैं, सभी में ऑन द स्पॉट सैंपल का जांच किया जाएगा। और इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर सराइडर से हमने स्टार्ट किया है और अगले 2 दिन तक पूरे धनबाद जिले में अभियान जारी रहेगा।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 953 अंक की उछाल के साथ 76,368, जबकि निफ्टी 268 अंक बढ़कर 23,987 पर कारोबार कर रहा था। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,75,000 रुपये प्रति किलो है। रांची में आयोजित हॉकी झारखंड की स्पेशल जनरल बॉडी की बैठक में राष्ट्रीय खेल अधिनियम 2025 के अनुरूप नए बॉयलॉज को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। बैठक में जिला इकाइयों को महिला और पुरुष खिलाड़ियों की सूची जमा करने तथा संगठनात्मक प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए। जमशेदपुर में तृतीय झारखंड स्टेट योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 5 से 60 वर्ष तक की आयु वर्ग तक के प्रतिभागियों ने 12 कैटेगरी में योगासनों का प्रदर्शन किया। दिव्यांग बच्चों की स्टार कैटेगरी और महिलाओं की मॉम्स कैटेगरी आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम का उद्घाटन सरयू राय, आलोक मल्होत्रा और मनोज सत्यनारायण ने किया। रांची जिला कबड्डी संघ की ओर से आयोजित 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन कबड्डी प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया गया। शिविर में करीब 50 बालक और बालिका खिलाड़ियों को प्रशिक्षक प्रदीप तिर्की ने कबड्डी के महत्वपूर्ण डिफेंस कौशल, एंकल होल्ड की तकनीक सिखाई।

0: के अनुसार आगामी दिनों में खिलाड़ियों को विभिन्न तकनीकी कौशल और फिटनेस से संबंधित विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 11 जून तक करेंगे मैराथन बैठक। आज जल संसाधन, पेयजल एवं वाणिज्य कर विभाग के कार्यों की होगी समीक्षा। हाईकोर्ट ने लैब असिस्टेंट भर्ती मामले में दिया बड़ा फैसला। विज्ञापन की शर्त रद्द करते हुए कहा, वैधानिक नियमों से ऊपर नहीं हो सकती विज्ञापन की शर्तें। राज्य सरकार ने की गांवों के पारंपरिक ज्ञान को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच दिलाने की पहल। युवाओं के लिए झारखंड ग्रामोत्सव इंटर्नशिप इनोवेशन योजना शुरू। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर सियासी संग्राम। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लगाया मुनाफाखोरी का आरोप। भाजपा ने कहा, वैश्विक बाजार मूल्यों से तय होती है कीमतें। और हॉकी, झारखंड की स्पेशल जनरल बॉडी ने राष्ट्रीय खेल अधिनियम 2025 के अनुरूप नए बॉयलॉज को सर्वसम्मति से दी मंजूरी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। लोकरंग कार्यक्रम को पुनः जारी रखते हुए सुनते हैं पूनम कुमारी की आवाज में कार्यक्रम का अगला लोकगीत। लेकिन उससे पहले ये छोटा सा अंतराल।

वे अब सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार थी पूनम कुमारी। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.2

सभी श्रोता बहनों को आरू का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, भारतीय संस्कृति, ज्योतिष विज्ञान और ऋतु चक्र का आपस में एक बेहद गहरा और अटूट संबंध है। हमारे देश में ऋतुओं के परिवर्तन को केवल मौसम का बदलना नहीं माना जाता, बल्कि इसे खगोलीय घटनाओं और प्रकृति के जीवंत रूप से जोड़कर देखा जाता है। बहनों, इसी ऋतु चक्र में ग्रीष्म ऋतु के दौरान आने वाला एक अत्यंत विशिष्ट और महत्वपूर्ण समय है नौतपा। नौतपा का शाब्दिक अर्थ होता है नौ दिनों का तपना। बहनों, नौतपा की अवधि के दौरान सूर्यदेव पृथ्वी के सबसे निकट होते हैं और अपनी प्रचंड रश्मियों से पूरी वसुधा को तपा देते हैं। बहनों, नौतपा का समय उत्तर और मध्य भारत के लिए बेहद खास है। यह नौ दिन केवल अत्यधिक गर्मी का प्रतीक नहीं है, बल्कि आने वाले मानसून का आधार और भविष्य की कृषि समृद्धि का निर्धारण भी करते हैं। बहनों, इस बार नौतपा 25 मई यानी कि आज से आरंभ हो रहा है तथा 3 जून के बीच यह नौ दिन का जो दिन है वो नौतपा रहेगा। बहनों, जहां एक तरफ नौतपा पर्यावरण के लिए आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर इन नौ दिनों में आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाता है। दोपहर के समय शहरों और गांवों की सड़कें सुनी हो जाती है और लोग घरों में रहने को मजबूर होते हैं। बहनों, इस अवधि के दौरान चलने वाली गर्म और शुष्क पछुआ हवाएं, जिन्हें लू कहा जाता है, स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होती हैं। साथ ही बहनों, अत्यधिक पसीना निकलने के कारण शरीर में पानी और आवश्यक लवणों की कमी हो जाती है। इसलिए बहनों, इस दौरान 9 बजे दिन से शाम के 4 बजे तक घर से बाहर ना निकले। जब भी निकले, शरीर को ढककर निकले। खूब तरल पदार्थों का सेवन करें, जिसमें आम का पन्ना, नींबू का रस, सत्तू शामिल हो। साथ ही पशु पक्षियों का भी ध्यान रखें, क्योंकि हम तो मनुष्य हैं, हम अपना ख्याल रख सकते हैं, लेकिन जो जीव जंतु होते हैं, पक्षियाँ होती हैं, उनका ख्याल वो खुद नहीं रख सकते, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है, तो कहीं ना कहीं प्यासे भूखे वो लोग, वो जो पक्षियाँ होती है, जानवर होते हैं, घूमते रहते हैं। तो थोड़ा बहुत इंसानियत के नाते पानी डाल देना, कभी कभी दाना दे देना, जिससे कि उनका भी जीवन जो है वो सुरक्षित रहे। बहनों, इसके अलावा आज है विश्व थायराइड दिवस। स्वास्थ्य ही जीवन का सबसे बड़ा धन है बहनों। आधुनिक भागदौड़ भरी जिंदगी, अनियमित दिनचर्या और तनावपूर्ण माहौल के कारण आज मानव शरीर कई तरह की बीमारियों का घर बनता जा रहा है। इन्हीं बीमारियों में से एक प्रमुख और तेजी से बढ़ती हुई समस्या है थायराइड। बहनों, थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर की एक बेहद छोटी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथि है। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने, इसकी रोकथाम, शीघ्र पहचान और उपचार के महत्व को समझने के लिए हर साल 25 मई यानी कि आज के दिन दुनिया भर में विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। बहनों, सामान्यतः थायराइड रोग की समस्याएं दो प्रकार की होती है, जिसमें एक होता है हाइपोथायराइडिज्म। जब थायराइड ग्रंथि आवश्यकता से कम मात्रा में थायराइड हार्मोन का उत्पादन करती है, तो इसमें शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से अचानक वजन का बढ़ना, दिल का धड़कन तेज होना, घबराहट, आंखों पे सूजन और चेहरे पे सूजन, थकान, कमजोरी, ये सब होता है। साथ ही दूसरा जो थायराइड का प्रकार है वह है हाइपरथायराइडिज्म। इसमें होता है बहनों यह है कि यह ग्रंथि जरूरत से ज़्यादा हार्मोन का निर्माण करती है, और इसके लक्षण हैं तेज़ी से वजन का कम होना, बाल का झड़ना, इसमें भी चिंता, हाथों का कांपना, ये सब होता है। तो अगर ये सब लक्षण हो तो थायराइड की जांच करवाएं और यथाशीघ्र इसका उपचार करवाएं, क्योंकि कहते हैं ना कि जो बीमारी जितनी जल्दी इलाज हो जाए वो उतना जल्दी ख़त्म हो जाता है, नहीं तो देर होने पर बीमारी को ठीक होने में भी बहुत देर लग सकती है। इसलिए बहनों, अगर ये सारी अगर समस्याएं आप में ये लक्षण दिखें या किन्हीं और में, तो उनका जरूर थायराइड का जांच करवाएं। इसके अलावा बहनों, ये जो विश्व थायराइड दिवस है, यह एक तारीख नहीं है सिर्फ।

बल्कि स्वास्थ्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने का संकल्प दिवस है। यह हमें याद दिलाता है कि शरीर के छोटे से अंग की अनदेखी भी पूरे जीवन की गति को धीमा कर सकती है। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि यह धीरे धीरे शरीर को अंदर से कमज़ोर करती है। लेकिन बहनों, सही समय पर दी गई जानकारी, समय पर कराई गई जांच और अनुशासित जीवन शैली के बल पर इस बीमारी को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। तो आइयो बहनों, इस विश्व थायराइड दिवस पर हम स्वयं भी जागरूक बने और अपने परिवार, मित्रों तथा समाज को भी इसके लक्षणों और उपचार के प्रति सचेत करें। सजग समाज, स्वस्थ जीवन के मंत्र को अपनाकर ही हम एक निरोगी राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसी के साथ बहनों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ संदेशों को।

0: AIR at 90.
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: बहनों, एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों, आज है सोमवार और सोमवार का दिन विशेष रूप से महादेव के पूजन के लिए समर्पित होता है, तो क्यों ना इसी बहाने हम भी एक शिव भजन सुने। तो सुनते हैं यह शिव भजन।

0: बहनों, अभी आपने बहुत ही सुंदर से शिव भजन का आनंद लिया अरविंद यादव की आवाज़ में। बहनों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक पूर्व प्रसारित वार्ता। वार्ता का विषय है बेटियों के लिए शिक्षा संबंधी योजनाएं और वार्ताकार हैं अर्चना मिश्रा।
1: नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग हम दुनिया को बदलने में कर सकते हैं। बेहतर शिक्षा सभी के लिए जीवन में बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। यह हमारे अंदर आत्मविश्वास विकसित करने के साथ साथ हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करने में भी सहायक है। खासकर स्कूली शिक्षा सभी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, परंतु आज भी हमारे देश में लड़कियों की शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। आज भी कई लड़कियां प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। इस कारणवश हमारे समाज का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं। आज इन परियोजनाओं व जागरूकता अभियान का ही असर है कि लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। बेटियों की शिक्षा संबंधी योजनाओं में से एक मुख्य योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन मंत्रालय की एक संयुक्त पहल के रूप में समन्वित और अभिसारित प्रयासों के अंतर्गत 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना है। शिक्षा के साथ साथ बेटियों को अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ाने एवं उनकी इसमें भागीदारी को सुनिश्चित करना भी इसका मुख्य लक्ष्य है। साथ ही इस योजना के तहत बेटियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। यह योजना पक्षपाती लिंग चुनाव की प्रक्रिया का उन्मूलन कर बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को भी सुनिश्चित करती है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में बालिका समृद्धि योजना का भी बड़ा योगदान है। यह योजना भारत सरकार द्वारा 1997 में शुरू की गई थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य लड़कियों के जन्म और उनकी शिक्षा में योगदान देना है। इस योजना के तहत बच्चियों के जन्म के प्रति समाज की सोच को बदलने का निर्णय लिया गया है। यह भी निश्चित किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लड़कियों का स्कूलों में नामांकन हो एवं वे शिक्षा प्राप्त कर सके। यह योजना लड़कियों को स्वावलंबी बनाने की ओर भी कार्य करती है। इस योजना के तहत लड़कियों के जन्म पर माताओं को 500 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। साथ ही पहली कक्षा से 10वीं तक 300 से 1000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना का लाभ केवल एक परिवार की 2 बच्चियों को ही मिल सकता है। यह योजना केवल गांव ही नहीं शहर में भी गरीब परिवारों के लिए लाभदायक है। खाते में जमा हुई राशि को लड़की के 18 वर्ष पूरे होने के बाद ही निकाला जा सकता है। CBSE द्वारा शुरू की गई उड़ान योजना बेटियों के सुनहरे भविष्य की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना उन लड़कियों के लिए लाभदायक है जो 12वीं के बाद इंजीनियरिंग कॉलेजों में जाना चाहती हैं। उन्हें यह पर प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है। यह उन छात्राओं के लिए लाभप्रद है जो इच्छा होने के बावजूद पैसों की कमी या अवसर न मिल पाने के कारण अपने सपने को पूरे नहीं कर पाती। इस योजना के तहत छात्राओं को प्रवेश परीक्षा की मुफ्त में तैयारी कराई जाती है।

0: एवं पाठन सामग्री भी मुफ्त में मुहैया कराई जाती है। साथ ही उनके लिए मुफ्त कक्षाओं का भी आयोजन किया जाता है एवं उनकी प्रगति की भी लगातार निगरानी की जाती है। यह योजना उन लड़कियों के लिए है जिनके माता पिता की वार्षिक आय 6 लाख से कम है। लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए योजना की शुरुआत 2008 में हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों के माध्यमिक शिक्षा के महत्व को बताने का है। यह खासकर दलित व पिछले वर्गों की बच्चियों के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत किसी सरकारी बैंक अथवा डाकघर में हर छात्रा के नाम से एक खाता खोला जाता है एवं 3000 रुपये की राशि जमा कराई जाती है। यह राशि केवल 18 वर्ष पूरे होने के बाद ही निकाली जा सकती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रा को 9वीं कक्षा के बाद कम से कम 2 वर्षों तक अपनी पढ़ाई जारी रखनी होगी। इसका उद्देश्य बेटियों को 12वीं तक शिक्षा प्रदान करने का है। केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा कई राज्य सरकारों ने भी अपने स्तर पर कई कदम उठाए हैं। इन योजनाओं में से एक है लाडली लक्ष्मी योजना। यह योजना 1 अप्रैल 2007 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका मकसद लड़कियों के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना एवं उनकी शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। इस योजना के तहत जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की उम्र तक हर साल 6000 रुपये उनके नाम से जमा किए जाते हैं। साथ ही 6ठी कक्षा में प्रवेश के समय 2000, 9वीं में 4000 व 11वीं में 7500 रुपये का भुगतान किया जाएगा। परंतु यह सुविधा केवल उन लड़कियों को ही मिल सकती है जो अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें। इस योजना की सफलता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इसे उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं गोवा में भी लागू किया गया है। इन योजनाओं के अलावा कई राज्यों और केंद्र शासन की योजनाएं हैं जो कि बेटी जन्म और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं। इन सभी योजनाओं का लाभ तभी होगा जब लोग अपनी सोच में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। साथ ही लोगों को इन योजनाओं के बारे में सजग रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि एक साक्षर स्त्री पूरे घर को साक्षर बनाती है। एक लड़की को पढ़ाने से पूरा परिवार साक्षर और शिक्षित हो सकता है। ये हमारा मानना है। इसी के तहत इन योजनाओं को इतना आगे बढ़ाया जा रहा है।
1: बहनों, बेटियों के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं शिक्षा के लिए। हमें ज़रूरत यह है कि हम उनका लाभ उठाएं या अपनी बेटियों को प्रोत्साहित करें कि वो उन योजनाओं का हिस्सा बने और ख़ुद को शिक्षित करें। इसी के साथ बहनों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिर से कुछ संदेशों को।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: बहनों, इन संदेशों को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों, क्यों ना एक और शिव भजन सुना जाए, तो सुनते हैं यह शिव भजन।

अभी आप सुन रहे थे बहनों को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार पटना केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताई है। न्यायालय ने कहा है कि यह दुख की बात है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी ज्यादा मजबूत और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। पवित्र शहर मक्का से अपनी यात्रा शुरू कर रहे जायरीन मीना की टेंट सिटी में आज इकट्ठा हो रहे हैं। वे वहां रात बिताएंगे और कल तड़के अराफात के मैदान की ओर बढ़ेंगे, जहां वे हज के मुख्य अनुष्ठान में भाग लेंगे। इस वर्ष हज यात्रा में बिहार के 2552 हज यात्री समेत देश भर के लगभग 1,75,000 यात्री शामिल हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने सुचारू, सुरक्षित और आरामदायक हज यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय श्रद्धालुओं को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की है। पेट्रोल 2.61 रुपए और डीजल 2.71 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। पिछले दो सप्ताह में तेल के मूल्यों में चौथी बार वृद्धि हुई है। पटना में पेट्रोल 113.35 रुपए और डीजल 99.36 रुपए प्रति लीटर हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का परिणाम बताया है। डॉक्टर कुमार ने कहा कि सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जल्द ही इस पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। उन्होंने लोगों से ईंधन की बचत करने की अपील की है। बिहार विधानमंडल ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पटना के विभिन्न हिस्सों से बस सेवा की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील के अनुरूप नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने आज विधानमंडल परिसर से बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य के दक्षिणी भागों में भीषण गर्मी और उत्तरी भागों में आंधी बारिश की स्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने आज बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया समेत दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग में लू चलने को लेकर चेतावनी जारी की है। इस दौरान गया और रोहतास जिले में हॉट डे का अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में आंधी बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात हो सकता है। अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हसनपुर गांव में नदी में डूबने से एक युवती की मौत हो गई। नवादा के पुलिस केंद्र के पास गया नवादा रोड पर एक तेज रफ्तार ई रिक्शा की टक्कर से सड़क पार कर रहे पुलिस के 112 वाहन के चालक की मौत हो गई। गया जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पीपर पाती इलाके में पूर्व सांसद रंजीत सिंह के आवासीय परिसर में ड्रग विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और संदिग्ध दवाओं के पैकेट बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
2: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने नीट इम्तहान में बार बार हो रही चूक पर इजहार फिक्र किया है। अदलिया ने कहा कि ये अफसोस की बात है कि कौमी जांच एजेंसी ने गुज़श्ता पेपर लीक मामले से कोई सबक नहीं सीखा है। जस्टिस पी एस नरसिम्हा और आलोक आराधे की बेंच ने मरकजी हुकूमत, कौमी जांच एजेंसी NTA और मरकजी जांच ब्यूरो से इन मामलात पर जवाब तलब किया है, जिनमें मेडिकल दाखिला इम्तहान मुनक़द करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी ज़्यादा मजबूत और ख़ुद इन्हिसार इदारे को लाने का मुतालबा किया गया है। अदलिया ने एजेंसी को आइंदा जुमरात तक हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। भारत समेत दुनिया भर से लाखों आज़मीन हज सऊदी अरब के मीना में हज के लिए जमा हो रहे हैं। मक्का से अपना सफ़र शुरू कर रहे आज़मीन मीना की टेंट सिटी में आज जमा हो रहे हैं। वो वहां रात क़याम करेंगे और कल अलसुबह अराफात के मैदान की जानिब जाएंगे, जहां वो हज के अहम अरकान में शिरकत करेंगे। इस साल हज के लिए बिहार के 2552 आज़मीन हज समेत भारत से तकरीबन 175,000 सफ़र हज पर गए हैं। मरकजी हुकूमत ने बेहतर, महफूज और आरामदेह सफ़र हज के लिए मुनासिब इंतजाम किए हैं। हज सहूलत मोबाइल ऐप के तवसुत से हिंदुस्तानी आज़मीन को इत्तला और शिकायत दर्ज कराने की सर्विस फराहम की जा रही है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया है। पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये फी लीटर महंगा हो गया है। गुज़श्ता 2 हफ्ते में तेल की कीमतों में चौथी बार इजाफा हुआ है। पटना में पेट्रोल 113.35 रुपये और डीजल 99.36 रुपये फी लीटर हो गया है। असेंबली के स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा को आलमी सूरत हाल का नतीजा बताया है। डॉक्टर कुमार ने कहा कि हुकूमत हालात पर नज़र रखे हुए है और जल्द ही इस पर काबू पा लिया जाएगा। उन्होंने लोगों से ईंधन की बचत करने की अपील की है। बिहार कानून साजिया ने अपने मुलाजमीन और अफसरान के लिए पटना के मुख्तलिफ हिस्सों से बस खिदमात की शुरुआत की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील के मद्देनज़र नया निज़ाम शुरू किया गया है। कानून साज असम्बली के स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार ने आज कानून साजिया के कैंपस से बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डॉक्टर कुमार ने कहा कि बिहार मुल्क की पहली रियासत है जिसने कानून साजिया के मुलाजमीन के लिए इस तरह की बस खिदमात शुरू की है। रियासत के जुनूबी हिस्सों में सख्त गर्मी और शुमाली हिस्सों में आंधी बारिश की सूरत हाल बनी हुई है। महकमे मौसमियात ने आज बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया समेत जुनूबी मगरब और जुनूब वस्त खिता में लू चलने की तंबीह जारी की है। इस दौरान गया और रोहतास जिला में हॉट डे का अलर्ट जारी किया गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रोहतास का डेहरी रियासत का सबसे गर्म मकाम रहा, जहां ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं महकमा ने अपनी पेशगोई में कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल और दीगर खित्तों में रियासत के शुमाल मशरक़ी हिस्सों में आंधी बारिश का इम्कान है। इस दौरान कुछ मकाम पर आसमानी बिजली गिर भी सकती है। अररिया ज़िला के रानीगंज थाना हलका के तहत हसनपुर गांव में नदी में डूबने से दोशीज़ा की मौत हो गई। नवादा के पुलिस सेंटर के पास गया नवादा रोड पर एक तेज़ रफ्तार ई रिक्शा की टक्कर से सड़क पार कर रहे पुलिस के 112 गाड़ी के ड्राइवर की मौत हो गई। गया ज़िला के टाउन थाना हलका के तहत पीपर पाती इलाके में साबिक MP रंजीत सिंह के रहायशी क्वार्टर में ड्रग महकमा की और पुलिस की मुश्तरका टीम ने छापेमारी की।

0: छापेमारी में कई अहम दस्तावेज और काबिले एतराज दवाओं के पैकेट बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है।
1: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद 2:15 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रदान करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
2: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
4: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल की वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। जीनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं के श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र, NTA और CBI से जवाब मांगा। कहा, पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट से। चोर मचाए शोर। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं इंद्रजीत सिंह तुलसी ने, धुन बनाई है रविंद्र जैन ने।

और अब आइए सुनते हैं फिल्म सरस्वती चंद्र का ये गीत, जिसे गाया है मुकेश ने। गीत के बोल लिखे हैं देवर ने, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट से। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, कहीं जाइएगा नहीं, हम बस यूं गए और यूं आए, बने रहें आकाशवाणी भागलपुर के संग।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

Akashvani at 90. अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। चित्रपट से कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं फिल्म तुम्हारे लिए का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीत के बोल लिखे हैं नक्श लालपुरी ने, धुन बनाई है जयदेव ने।

आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट से। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, कहीं जाइएगा नहीं, हम बस यूं गए और यूं आए, बने रहें आकाशवाणी भागलपुर के संग।

AIR at 90. आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। श्रोताओं, इससे पहले कि कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुनवाएं, एक सूचना आपको दे दें। युवावाणी के मासिक स्तंभ फोन इन कुछ बातें कुछ गाने कार्यक्रम के लिए फोन कॉल रिकॉर्डिंग 27 मई 2026 को दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच होगी। इस कार्यक्रम में श्रोतागण अपने पसंदीदा गाने सुनने के लिए हमें 2400981 पर कॉल कर सकते हैं और भागलपुर से बाहर के श्रोता बंधु नंबर से पूर्व 0641 लगाकर हमें कॉल कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण 31 मई 2026 को यानी आने वाले रविवार को संध्या के ठीक 5 बजे किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई। और अब आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिल्म वारिस का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह ने। गीत के बोल लिखे हैं वर्मा मलिक ने, धुन बनाई है उत्तम सिंह ने।

आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिल्म थानेदार का गीत लता मंगेशकर और पंकज उधास की आवाज में। इंदिवर के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गीत के साथ ही संपन्न होता है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए बांग्ला गान।

अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति श्यामल मित्रा और मानवेंद्र मुखोपाध्याय की आवाज में।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं बांग्ला गान कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए मन्ना डे की आवाज में

लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही बांग्ला गान कार्यक्रम संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए समूह स्वर में देशभक्ति गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशभक्ति गीत। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अब से लेकर शाम 5 बजे तक मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। और शाम 5 बजे से इन्हीं मीटरों पर आप सुनेंगे आकाशवाणी भागलपुर के कार्यक्रम।
1: रोचक मुकाबले होते हैं।
2: बिल्कुल, बहुत रोचक मुकाबले होते हैं। और खेलों के लिए किसी ने कहा भी है कि खेलों की दुनिया बड़ी निराली होती है, हार में भी यहाँ जीत की लाली होती है। जो मैदान में डटकर मुकाबला करता है असल में वही खिलाड़ी सबसे भारी होता है।
1: बहुत बढ़िया।
2: और ये जो भारी खिलाड़ी होता है वो हाथों का उपयोग नहीं करता,
1: बिल्कुल
2: के बाकी अंगों का प्रयोग कर रहा है। और फुटबॉल खेलने से शारीरिक फिटनेस भी बढ़ती है। संपूर्ण शारीरिक गतिविधि है जो पूरे शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। तो अगर हम विश्व फुटबॉल दिवस की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 25 मई 1924 को पेरिस पे, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था।
1: बिल्कुल, और इस टूर्नामेंट ने विश्व जो वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की लोकप्रियता को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसके उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस तिथि को चुना गया है। और फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था है फीफा, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से विश्व फुटबॉल सप्ताह 21 से 25 मई तक मनाते हैं, जिसका विषय रहता है सक्रिय रहिए। इसका उद्देश्य लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय और स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करना होता है।
2: बिल्कुल, ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहते हैं और बढ़िया बढ़िया खिलाते रहते हैं। आरती, देखिए खेलना जीवन में बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है।
2: और फुटबॉल जो खेल है वो जब हम स्वयं भी खेलते हैं या हमारे सामने बच्चे खेल रहे होते हैं तो हम खुद देखते हैं कि उनका पूरा शरीर उसमें लगा हुआ होता है,
1: वो
2: पूरी मांसपेशियां उसमें काम कर रही होती हैं। और कई बार तो ये देखा गया है कि बच्चों की ऊंचाई भी यानी हाइट भी इससे बढ़ती है,
1: और पूरी बॉडी का स्ट्रेंथ, पूरे बॉडी में मजबूती आती है क्योंकि वो, और दिमाग भी से सक्रिय होता है क्योंकि पूरा उनको ध्यान रखना होता है कैसे गोल करना है, कैसे निकालना है, कहाँ से निकालना है बॉल को। तो बहुत ही मजेदार ये खेल भी, देखने वाला भी एकदम देखता रह जाता है इसे।
2: हाँ, और हमारे श्रोता भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इस विषय पे कह रहे हैं, और जिनमें से एक बात और मुझे, एक कविता और मुझे याद आती है। जब हम बचपन में थे और खेला करते थे,
1: अच्छा,
2: तो बारिश की कीचड़ में पूरी तरह से सराबोर होकर चले आते थे।
1: इस खेल की कहिए तो सुंदरता ही यही है कि खूब कीचड़ में, मिट्टी में एकदम सराबोर होकर खेलने से।
2: बिल्कुल, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, फुटबॉल खेलने में बहुत अधिक एनर्जी और स्टैमिना की आवश्यकता होती है। इसे दुनिया के सबसे थका देने वाले और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण खेलों में से एक माना जाता है। एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी एक मैच के दौरान लगभग 1000 से 1500 कैलोरी तक खर्च कर सकता है। मतलब बहुत सारे रसगुल्ले खाए जा सकते हैं इसके साथ,
1: बहुत बहुत आराम से खा सकते हैं, क्योंकि आपको जो सोचें कि मोटापा चढ़ेगा तो वो हो ही नहीं सकता, इतना ज्यादा इसमें खेलने में
2: कैलोरीज यहाँ पे खत्म कर दी जाएंगी। जी बिल्कुल। तो आरती, ऐसे ही इसके साथ में एक कविता और मुझे याद आती है कि खेल सिखाते हैं हौसला और उड़ान, मुश्किल में भी रखना खुद का ध्यान, जीत मिले तो विनम्र रहना, हार मिले तो बन जाना तूफान।
1: वाह, बहुत बढ़िया बात।
2: ये कविता जब मैं पढ़ रही थी ना तो इसका अर्थ मुझे समझ में ये आ रहा था कि कभी कभी हम ना जीत पर घमंड करने लगते हैं और हार पर दुख। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा कहा है कि अगर जीत मिले तो विनम्र बनो, सर झुकाकर जीत स्वीकार करो और हार जाओ। कहते हैं
1: जिस पे ज्यादा फल लगे होते हैं वो झुक जाता है।
2: हाँ,
1: जिस पे कुछ नहीं लगा होता वही अकड़ के खड़ा रहता है।
2: जी बिल्कुल। तो ये जो विश्व फुटबॉल दिवस है ये बहुत बढ़िया खेल है, और इस खेल को हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने और टिप्पणी लिखी है, वो जरा हम पढ़ते हैं।
1: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि विश्व फुटबॉल दिवस का महत्व और उद्देश्य सांस्कृतिक एकता, फुटबॉल को किसी भाषा या सीमा में की आवश्यकता नहीं होती है, ये दुनिया भर के विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों को आपस में जोड़ता है, शांति और कूटनीति को मान्यता देता है, लोगों को एक मंच पर लाता है जिससे कि लोगों में आपसी समझ और सहिष्णुता बढ़ती है, और साथ ही ये दिवस लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देता है और महिलाओं को और लड़कियों को भी जो सशक्त बनाने का काम करता है, एक महत्वपूर्ण साधन होता है। ये
2: बहुत बढ़िया चीज है ना। देखिए, बेटियां भी खेलती हैं, बेटे भी खेलते हैं, सब खेलते हैं, और खेलते खेलते अपने आप को एकदम बढ़िया मजबूत बना लेते हैं, और इस मजबूती को सच में स्वीकार किया जाना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि बच्चों को छोटी उम्र से ही फुटबॉल पकड़ा दो और वो खेलना शुरू कर दें।
1: बिल्कुल, वो मोबाइल से दूर रहेंगे, वो पकड़ेंगे भी नहीं मोबाइल अगर आपने एक बार इस खेल में उनको डाल दिया तो।
2: और छोटे छोटे बच्चे अगर फुटबॉल में पैर मारते रहेंगे तो शायद उनके पैरों की ताकत बढ़ेगी और उस ताकत के कारण उनके शरीर का पूरा विकास भी होगा और फिर धीरे धीरे जब वो बढ़ेंगे तो उनको कूटनीति भी आने लगेगी कि कहां से बॉल निकाल देना है, अगले किस दोस्त को पास करना है, शायद इस सबसे उनकी मित्रता भी बढ़ती है।
1: सहयोग की भावना इसी को तो कहते हैं, एक जब हम बॉल को पास करते हैं दूसरे तक पहुंचाते हैं उस पर विश्वास रखे कि वो गोल कर देगा
2: तो शायद यहीं से एक संगठन का विकास भी होता है।
1: बिल्कुल,
2: तो जब संगठन का विकास हो रहा है तो हम एक छोटा सा विराम लेते हैं, इसके बाद और बात करेंगे और गीत सुनेंगे
1: जी।

0: के लिए सब दुआ कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और एक जब वो जो खेल रहे होते हैं और वो बादलों की तरह आसमान में कभी उड़ते हैं, कभी नीचे जमीन से निकल जाते हैं, कभी नीचे से निकलते हैं, कभी बीच से निकलते हैं, पता नहीं क्या करके उस खेल को खेलते हैं, लेकिन ये खेल बहुत रोचक है।
0: बहुत बहुत।
1: और जब उन बादलों के बारे में बात कर रहे हैं जो खेल रहे होते हैं, तो उन सब के लिए ये प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं।

0: तो अब बादल दीवाना हो चुका है और दीवाना बादल कह रहा है कि हमको घूमी घूमी जाना है, यहाँ घूमने जाना है।
1: ठीक है, तो परिवार के साथ हम जब सफर पर निकलते हैं तो ये एक बेहद खूबसूरत और खुशनुमा अनुभव होता है। और परिवार के साथ किया गया सफर केवल एक यात्रा नहीं होती बल्कि यादों का खजाना बन जाता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच जब पूरा परिवार एक साथ निकलता है तो रिश्तों में एक नई मिठास खुल जाती है।
0: बिल्कुल, और रिश्ते मिठास के साथ में जब साथ में निकलते हैं ना, तो आती रास्ते में वो हंसी मजाक चलती रहती है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ साथ में बैठ के खा रहा है, उतनी सी जगह में बैठ के धीरे धीरे खाना निकाला जा रहा है, भोजन निकाला जा रहा है, दिया जा रहा है, मतलब वो छोटे छोटे पल कितना आनंद होता है ना। और साथ में कुछ समय के लिए ऐसा लगता है सारी चिंताएं कहीं चली गई हैं और हम खुशियों के साथ अपना समय जी रहे हैं, और छोटी मोटी परेशानियां जो बीच में आ रही है ना, अरे पैर मोड़ते नहीं बन रहा, अरे बैठते नहीं बन रहा, अरे थोड़ा सा सरक जाओ, ये परेशानियां कहीं एहसास नहीं होने देती।
1: लगता है कि ये भी वो पल है जिन्हें हमें सहेज लेना चाहिए। और

0: जब हम साथ में खा रहे होते हैं ना, तो वो जो स्वाद है ना वो एक अलग होता है, जब हम साथ में बैठ के ट्रेन में या इस तरह से किसी सफर में खा रहे होते हैं, जबकि जब हम घर में वो चीज वही चीज खा रहे होते हैं तो इतना पता नहीं चलता जब अकेले।
1: और आरती एक चीज और अच्छी लगती है कि अगर हम ट्रेन से चल रहे हैं मान लीजिए, तो थोड़ी दूर पे किसी की आलू पूड़ी का डब्बा खुलता है, किसी का चार खुलता है, सारी खुशी हमारे तक आ जाती है।
0: और जो लगातार निकलते रहते हैं लोग ना, ये ले लो वो ले लो, तो लगता है अच्छा हम भी ऐसे बोलने लग गए।
1: जी बिल्कुल। और उस सबके साथ बच्चों की जिद करना, उनको डांटना मनाना, सब कुछ बहुत खूबसूरत होता है। और इसमें कई बार ऐसा होता है जब हम अकेले ट्रिप पे जा रहे होते हैं तो हमें अपना ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हम अपने दोस्त अपने परिवार के साथ जा रहे होते हैं तो उसमें हम पहले से प्लानिंग करते हैं, क्या क्या कपड़े जाएंगे, क्या क्या सामान जाएगा, तो वो प्लानिंग में क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, ये बारे में तो चर्चा जरूर बनती है।
0: बिल्कुल, सबके हिसाब से हमें लेना चाहिए। और लेकिन ध्यान रख, जब अगर क्योंकि अगर कोई हमारे साथ में कोई बुजुर्ग जा रहा है तो हमें उसके हिसाब से सामान लेना होगा, कपड़े उनके हिसाब से, जो जो चीजें उनको जरूरत लगती है, उनकी दवाइयां सब कुछ उसी हिसाब से लेना होता है। जबकि बच्चे जा रहे हैं तो बच्चों के हिसाब से उनके सामान लेने होते हैं, तो जो भी जा रहा है हर परिवार के हर सदस्य को कोई परेशानी तो नहीं है, तो उस तरह से सामान लेने होते हैं। साथ ही दवाइयां ये जरूर आप पैक करके रखें, कम से कम जो छोटी मोटी चीजें होती है उनके लिए जो दवाइयां रहती हैं वो आप जरूर अपने साथ में लेकर चलें। बहुत
1: लेकर चलने के पहले आरती हमको एक काम करना पड़ता है।
0: क्या
1: वो होता है? टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग।
0: सबसे पहला काम,
1: सबसे पहला काम। अगर वही सही नहीं किया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप जहाँ जा रहे हैं वो सब चीजें अच्छे से पता कर लें। और सामान्य ध्यान, जब हम परिवार के साथ घूमने जाते हैं आरती, तो हम क्या करते हैं कि बहुत दिन पहले ही, जिस दिन 2 महीने पहले अगर टिकट बुक होती है ना, तो 2 महीने पहले ही एक डायरी उठ जाती है। और उस डायरी में जैसे 4 लोग जा रहे हैं तो 4 पेज बन जाते हैं। हाँ। और सबके पेज पे सबका लिखना शुरू हो जाता है कि कौन किस रंग की कौन सी शर्ट लेके जाएगा, ये भी लिख दिया जाता है।
0: अच्छा।
1: ताकि आखिरी समय में ऐसा ना हो कि 2 दिन पहले वही शर्ट पहन ली जाए और फिर हम परेशान हो जाएं।
0: बिल्कुल।
1: तो पहले से ही ये लिख लेना एक बहुत अच्छी आदत होती है श्रेणी, क्योंकि और एक और फायदा इसका क्या होता है, जब हम सामान्य लिख के ले जाते हैं और जब लौट के आते हैं तो उसमें चेक कर सकते हैं क्या कौन क्या छोड़ के आया है।
0: बिल्कुल, ये तो सबसे जरूरी चीज बताई है, बहुत अच्छी चीज है ये, ऐसा करना भी चाहिए। और हम इसी के साथ में एक कमेंट ले लेते हैं अपने श्रोता का, जो कहते हैं कि सफर पे जाने से पहले सबको अपनी जिम्मेदारी समझ लेनी चाहिए कि कौन सदस्य कौन सी बैग उठाएगा, जिसपे झगड़े होते कि हमें नहीं पकड़ना है, हमें नहीं पकड़ना है, और पैसे और टिकट्स किसके पास रहेंगे ये पहले डिसाइड कर लेना चाहिए। और गोल्ड और सिल्वर के कीमती गहने नहीं पहनने चाहिए, ये तो।
1: और अगर पहन भी रहे हैं तो आप उनको संभाल के रखिए, यानी आप उनको बाद में संभाल के रख सकें, इस बात का आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही जब परिवार के लिए निकल रहे हैं तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलना ना केवल एक बेहतरीन ब्रेक है बल्कि यह तो आपसी रिश्तों को मजबूत करना और नई यादें संजोने का एक बड़ा शानदार सा तरीका है। तो अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और आपने कहा बड़े बुजुर्ग अगर साथ में ले जा रहे हैं तो उनका जो विशेष भोजन होता है, और अगर बच्चे साथ में ले जा रहे हैं तो उनके विशेष भोजन की, हम तो कहते हैं अगर 8 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं तो 12 दिन की व्यवस्था करनी चाहिए।
0: बिल्कुल, ये सही कहा।
1: जाने कब कहां कौन सी घड़ी में क्या आवश्यक पड़ जाए, और आपके साथ भोजन और जल यानी पानी, ये 2 चीजें
0: जरूर
1: होना चाहिए।
0: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर में निकलते हैं तो प्री प्लान करते हुए सभी की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जरूरी आराम का ध्यान रखना जरूरी है। साथ में खान पान में भी ध्यान रखना जरूरी है। पूरे सदस्यों के अलावा मेरे जैसे जो वो अपना बता रहे हैं कि मेरे जैसे बड़े बुजुर्गों के लिए मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स भी रखना चाहिए। सफर से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज, आधार, पैन कार्ड और टिकट की हार्ड कॉपी के साथ डिजिटल कॉपी भी सुरक्षित रखिए। बाकी की सारी जानकारी तो आपसे मिलेगी, बोल रहे हैं जैसे कि इन्होंने बाकी सारी की जानकारी दे ही दी है कि बहुत जरूरी है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास रखिए, उन्हें चाहे हार्ड कॉपी हो चाहे सॉफ्ट कॉपी हो।
1: जी बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलते समय सुरक्षा, आराम, मनोरंजन का विशेष ध्यान रखें। यात्रा से पहले कन्फर्म टिकट और होटल बुकिंग, आपातकालीन दवाओं, फर्स्ट एड किट, पर्याप्त पानी, घर के बने स्नैक्स, इन्होंने बिल्कुल स्थायी रूप से लिखा है, घर का बना आहार जो है वो रखें, तथा सभी सदस्यों के आईडी कार्ड साथ रखना सुनिश्चित करें। परिवार के साथ सुरक्षित आनंददायक यात्रा के लिए प्रमुख बातों की सावधानी रखें। यात्रा के दौरान होने वाली आम समस्याएं जैसे उल्टी, दस्त, बुखार, पेट खराब, बुखार की दवा, ORS की दवा, मेडिकेटेड बैंडेज, दर्द निवारक पेन बाम जरूर रखनी चाहिए। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ आरती, कि जब आप पहाड़ी क्षेत्रों पर घूमने जा रहे हैं तो डॉक्टर से पूछ के कि पहाड़ी क्षेत्रों पर सामान्यतः गाड़ियां जब घूम घूम के जाती हैं तो मतली आती है, समस्या होती है, तो डॉक्टर से पूछ के उसके लिए भी कोई निदान आप अवश्य रख लें।
0: बिल्कुल।
1: और चॉकलेट टॉफी

0: अवश्य रखें कि वो आप मुंह में डालें तो उससे आपको मतली या कई समस्याएं नहीं होंगी।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि चाहे हम तीर्थ स्थान पर दर्शन के लिए जाएं या घूमने के लिए जाएं, परिवार संग सभी सदस्य साथ हो तो वो सफर सुरीला हो जाता है, और अगर सफर ट्रेन से हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसी महीने मैं स्वयं सखी सहेली की सखी यानी की मेरी धर्म पत्नी और बच्चे अजमेर से द्वारकाधीश जी और द्वारका नागेश्वर ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी टकोर, मतलब इन्होंने जहां जहां लिखा है तो ये सब दर्शनों के लिए गए, तो सब साथ में गए थे।
0: बिल्कुल सही। हमारे श्रोता लिख रहे थे कि हम अभी सब परिवार महाराष्ट्र घूमकर आए हैं, बस ढेर सारा नाश्ता, खाने का सामान, बड़ी कैन, पानी की बड़ी कैन, आवश्यक वस्तुएं, आधार कार्ड, लाइसेंस, गाड़ी के कागजात, ये सब जरूरी सामान रखे थे उन्होंने। बच्चे बड़ों के कपड़े रखे थे आवश्यकता अनुसार। जहां जा रहे थे वहां की सारी जानकारी पहले निकाल ली थी ताकि परेशानी ना हो।
1: बहुत अच्छा। अगर सबसे पहले तो ये करना चाहिए, जो आप जहां अगर आप जा रहे हैं तो पहले से आप प्लान कर लें, और उसके बाद अगर आप ये चीज कर सके तो पहले से ही जहां पे आपको रहना है उस जगह को आप बुक कर लीजिए, और साथ ही एक वाहन को भी, अगर आप अपने वाहन से नहीं जा रहे हैं तो साथ तो वहां पे आप किसी वाहन को भी चाहे रेंट पे ले सकते हैं किराए पे, उसको भी बुक कर लें, क्योंकि अगर आप इस ये सहूलियां दे रहेंगी ना तो आप बस ट्रेन से उतरे या जहां से भी आप जिससे भी जा रहे हैं तो आप फटाफट उस जगह पे जा सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं। बिल्कुल आराम कर सकते हैं जाके, और साथ ही फ्रेश होकर फिर आप बाहर घूमने निकल सकते हैं क्योंकि आपके पास वाहन उपलब्ध रहेगा पहले से ही। तो बच्चे अगर साथ में, परिवार जा रहा है साथ में, तो ये बहुत सहूलियत करनी जरूरी होती है।
0: बिल्कुल सही आरती। और मैं इसमें दो चीजें और जोड़ना चाहूंगी। पहली चीज तो जहां आप जा रहे हैं वहां का मौसम और वहां के भोजन, इनका आनंद जरूर लीजिए। जैसा मौसम है उस मौसम का आनंद लीजिए और उसके अनुरूप ही अपना सामान रखिए। अब हम देश की यात्रा के साथ अगर विदेश की यात्रा की भी बात करें तो विदेश की यात्रा में एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, अति आवश्यक हो जाती है, आप सभी के पासपोर्ट।
1: बिल्कुल।
0: उन पासपोर्ट को किसी ऐसी जगह पर इतना संभाल कर रखें कि कोई चाहकर भी उन्हें ना चुरा पाए, क्योंकि पासपोर्ट ही वहां पर रहना और वहां से वापस आने का सबसे बड़ा साधन आपका होता है। तो विदेश यात्रा पर जाएं तो बाकी चीजों का ध्यान वैसे ही रखें जैसा देश में घूमने के लिए जा रहे हैं, पर पासपोर्ट के लिए विशेष कोई व्यवस्था करके, अपने कपड़ों के अंदर कोई चैन लगाकर बनाकर या किसी ऐसी व्यवस्था के तहत रखें। सामान्यतः जब हम घूमने जाते हैं तो हम पासपोर्ट को अपने कपड़ों में किसी एक चैन का थैला बनवा के अंदर के तरफ ही रखते हैं ताकि वो किसी के हाथ ना लगे, वो सुरक्षित रहे।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है
0: जी।
1: तो विधि एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल। और जब घूमने फिरने की बात चल रही है तो हम आपको लेके चलते हैं।

0: एक है।
1: तो आरती, कैसे गगन के तले अगर जा रहे हो तो सुरक्षा रखना बहुत जरूरी है। तो जब सुरक्षा की बात आती है ना, तो मुझे मेरे दादाजी की वो एक बनियान याद आती है जो मेरे पापा के पास भी एक दो थी, मेरे ससुर जी भी वो पहना करते थे। उसमें अंदर ही एक जेब होता था और अच्छा। जब हम कहीं जाते थे तो वो हमें थोड़ा थोड़ा पैसा दे देते थे। यहाँ तक मैं ससुर जी के साथ जब जाती थी तो वो भी मुझे थोड़ा सा पैसा हाथ दे देते थे, ये अपने पर्स में रख लो, बाकी सारा पैसा वो उसमें अंदर रख लेते थे। और समय समय पे जब हम मांगते थे तो धीरे से कहीं किसी बाथरूम में जाते थे और निकाल के ले आते थे। तो मेरे सोने के गहने या कुछ हमने पहना है तो वो सब पापा के उसी जेब में, उसी खीसे में बोलते थे, रख जाता था। तो ये एक व्यवस्था की जा सकती है कि परिवार का एक व्यक्ति, पहले के लोग बहुत समझदार होते थे और वो समझदारी अगर हम अपना लें तो हमारी कोई चीज चोरी हो ही नहीं सकती।
2: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि परिवार के साथ यात्रा में मौज मस्ती के अलावा निश्चिंतता भी बढ़ जाती है। पूरी परिवार के साथ घूमने फिरने में जो मजा और निश्चिंतता होती है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं करनी पड़ती है। परिवार का साथ हो तो खर्चे में भी राहत मिल जाती है। वहीं मन में ये भी भाव होता है कि वेकेशन के दौरान, छुट्टियों के दौरान अगर किसी चीज में एक्स्ट्रा खर्च आता है तो एक साथ मिलकर संभाल लेंगे। और इसके अलावा परिवार के साथ जीवन भर की यादें भी बस जाती है मन में।
1: कुछ चीजें और मैं सतर्कता की बोल रही हूँ, तो सतर्क सकारात्मक बात हमारे श्रोता कह रहे हैं। अनजान लोगों पर जल्दी से भरोसा नहीं करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सतर्क रहना, बच्चों को अकेले कहीं नहीं जाने देना और सभी सदस्य एक दूसरे के संपर्क में रहें। और कहीं कई जगहों पर ऐसा होता है, पहाड़ी होती है या नदी होती है, तो उन जगहों पर विशेष ध्यान दें क्योंकि आपको उस स्थान के बारे में नहीं पता है। तो विशेष ख्याल रखें, और अगर वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो वहां के जो यातायात के नियम है उनका पालन करें। रात्रि में यात्रा करने से बचें और रात्रि में सुनसान स्थानों से भी आप बहुत बचें। अगर ऐसी नई जगह पर जा रहे हैं तो सावधानी से सफर करो, सही योजना से,
2: ताकि आपका सफर अच्छा बना रहे। आप एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर पर निकलें तो दिल में ढेर सारी खुशियां और बैग में सुरक्षा की पूरी तैयारी होनी चाहिए। और रास्ते में अंताक्षरी, घर का बना स्वाद और अपनों का साथ हर सफर को बेहद खूबसूरत और यादगार बना देता है।
1: आपने स्वाद की बात की ना, तो मुझे स्वाद से खाजा याद आ गया। मुझे तो मेरे श्रोताओं को खाजा के बारे में बताने का मन कर रहा है क्योंकि ये मेरा भी पसंदीदा रहा है। ये जो खाजा है ना, ये मुझे भी बड़ा पसंद है और इस खाजा को मैं दही के साथ खाती हूँ। अच्छा। बड़ा आनंद आता है,
2: सच में अच्छा लगता है क्योंकि मीठा है ना, और मीठा के साथ किसी जब दही मिल जाता है ना तो बहुत बहुत
1: बहुत आनंद आता है। और ये जो खाजा है ना, इसे बनाना बड़ा आसान है। मैदा, चीनी और घी, और जहाँ शुद्ध घी डल जाता है वही मजा अलग ही आ जाता है। तो जब अपन हम जब खाजा बना रहे होते हैं तो परतदार और कुरकुरी मिठाई जो खाजा है वो बनती है, और इसे इसे तलना होता है। तो घी, जब जब मैदा होती है या आटा होता है जिसमें आप बना रहे हैं, उसमें घी डाल के उसे मोयन डालना बोलते हैं। तो आप मोयन डालते हैं, और हम लोग कहते थे मम्मी मौन हो गई थोड़ी देर के लिए। मोयन डालते समय मोयन डाला जाता है और फिर परतों में बेल कर मोड़ा जाता है, और इसके बाद विशेष तरीके से उसे तला जाता है, और जब वो तल जाता है तो चाशनी में डुबो दिया जाता है। और अगर आप इसे चाशनी में ना डुबोए तो भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है। और चाशनी में डुबो लें तब भी यह बहुत अच्छा लगता है। ये सिलाऊ नालंदा बिहार का ये पसंदीदा भोग है, और इसे भगवान को भोग या प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है। और मीठा और नमकीन दोनों तरह का होता है, जो मैंने कहा मीठा वाला भी दही के साथ अच्छा लगता है और नमकीन वाला तो यम यम दही के साथ बहुत आनंद आता है।
2: बिल्कुल। और साथ ही हम आपको बता दें, एक हमारे जो श्रोता है उन्होंने भेजा है रसिया जो होता है ना, उसकी रेसिपी भेजी है। तो वो बताते हैं कि गुड़ का पानी तैयार करें। इसके लिए आपको एक बर्तन में 2 कप पानी और गुड़ डालकर उबालना है, और जब तक कि गुड़ पूरी तरह से पानी में घुल ना जाए इसे छानकर अलग रख लीजिए। उसके बाद जब गुड़ घुल जाता है, उसके बाद एक पैन में प्रेशर कुकर में भीगे हुए चावल और गुड़ का पानी डालिए और इसे मध्यम आंच पर पकाइए, तब तक कि जब तक कि चावल एकदम नरम नहीं हो जाता है और पानी पूरी तरह सूख नहीं जाता। इलायची और मेवे इसमें मिला सकते हैं, और जब चावल पक जाए तब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो हैं और इलायची जो भी आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स डालिए और इलायची का पाउडर डालिए और बहुत अच्छी तरह से इसको मिला लीजिए। और इसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, और इसके बाद इसमें ठंडा या फिर सामान्य तापमान वाला दूध मिलाइए और अच्छी तरीके से इसको चला लीजिए। और अगर इसमें क्या कहते हैं, स्वादिष्ट आपका तैयार है रसिया, और इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं और इसे ठंडा करके भी परोस सकते हैं।
1: हाँ, ये फ्रिज में रख के निकालने के बाद इस गर्मी में कितना सही लगेगा ना,
2: बहुत अच्छा लगेगा,
1: इतना आइसक्रीम जैसा गले में सूदिंग सूदिंग,
2: बाहर की आइसक्रीम जो आप खाते ना बिल्कुल भूल जाएंगे इसको खाने के बाद।
1: बिल्कुल। और वैसे ये जो स्वादिष्ट व्यंजन या पकवान है ये हमारे स्वास्थ्य को देखकर बनाए जाते हैं राजस्थान के हिसाब से, तो हमने स्वाद वाले पकवानों की तो बात कर ली है, और अब हम क्या एक गीत सुनवा सकते हैं?
2: बिल्कुल बिल्कुल, सुनते हैं गीत
1: जी।

0: तो आरती
1: अब हमारे श्रोताओं ने और भी कुछ बोला है। हाँ। कहा एक जो आपको सावधानी बरतनी चाहिए वो ये है कि बच्चों के गले में आपका पूरा पता और मोबाइल नंबर और आई कार्ड आप उसमें लेके किसी कार्ड में ऐसा बना के उनके गले में डाल दीजिए।
2: हाँ।
1: बिल्कुल, जिससे कि अगर उनको कोई परेशानी या कहीं इधर खो जाते हैं या कोई इधर उधर हो जाते हैं वो, तो आपको सहायता मिल जाएगी, जो भी उनको लेगा वो आप तक पहुंचा देगा।
2: बिल्कुल, हमारी एक और श्रोता लिखती है आरती और निधि, तो मैंने बताना चाहती हूँ मेरा नाम विधि है। विक्ट्री विधि। सो वो कहती है कि क्या क्यों कहूं, मुझे भी बाहर जाना है अकेले और मैं भी तुरंत पैन कार्ड इत्यादि पर्स में रख ली हूं, हंस रही हूं चूंकि तैयारी हो चुकी है, एक दिन हाथ में है फिर भी। ये तो बहुत अच्छी बात
1: बहुत,
2: है,
1: बहुत
2: ऐसे ही तैयारी करके चलना चाहिए और ऐसे ही आराम से घूमिए, बढ़िया बढ़िया खाइए और बढ़िया एंजॉय कीजिए, जिंदगी खुश रहने के लिए है। और सखी सहेली सुनते रहिए
1: सुनते रहिए।
2: तो आरती, आज की सखी सहेली में बस इतना ही, समय जितना मिला उतने में हमने अच्छी बातें की, लोगों से मिलना हुआ। अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार। सभी पहले की प्रस्तुत करता अनुश्री पाठक।
3: सखी सहेली।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी से, और आज के कार्यक्रम में जो विषय है वो है थायराइड, होम्योपैथी में इसका उपचार। तो डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियोज में आपका सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर लीजा बनर्जी। धन्यवाद विविध भारती को कि मुझे आमंत्रित किया गया।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे विविध भारती का जिक्र आपने शुरू में ही किया, तो कितना पुराना नाता है डॉक्टर साहब विविध भारती से आपका?
1: सुर पहचानती हूँ तब से विविध भारती पहचानती हूँ, ये बोलना भी गलत नहीं होगा। मेरे घर पे आज भी इसका चलन है, हम बजाते हैं, सुनते हैं, और ये रहेगा
0: जी। मनोरंजन का एक बहुत ही बेहतरीन और नंबर वन माध्यम है आज के दौर में। अब हम अपने विषय पर आते हैं। आज का जो विषय प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम जिक्र कर रहे थे थायराइड और होम्योपैथी में इसका उपचार, तो ये विषय रहेगा। दरअसल ये थायराइड जो बीमारी है, इसके बारे में कई भ्रामक स्थितियां पैदा हो जाती हैं। हर कोई दूसरा इंसान जब कुछ विपरीत अपने शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं तो कोई भी व्यक्ति उसको सलाह देता है, कहीं थायराइड तो नहीं हो गया, इस वजह से कमजोर तो नहीं हो गए, इस वजह से मोटे तो नहीं हो रहे हो, तो ये थायराइड है क्या? इसको बड़े आसान से शब्दों में आप बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: थायराइड एक्चुअली ग्रंथ ही है, मतलब ग्लैंड्स जो कि गले के सामने के भाग में पाई जाती है, स्थित है, और इसमें से सिक्रीट होती है थायरोक्सिन T3 एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन T4
0: जी।
1: T3 T4 ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण है विकास के लिए एंड मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया
0: जी।
1: इसका मेन फंक्शन या इसका मेन थायराइड की क्रिया ही होती है बच्चों में एवं बड़ों में विकास की, दिमागी शारीरिक दोनों विकास। मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन क्रिया, जो आप रोजाना खाते हैं ये सारी चीजें पाचन होनी चाहिए। जब तक पाचन नहीं होगी, आपके शरीर को उनके कोशिकाओं को जो चीज मिलनी चाहिए वो मिलेंगी नहीं। इसमें थायराइड का एक बड़ा रोल होता है। और ये होता कैसे है? दिमाग में एंटीरियर पिट्यूटरी करके एक
0: ग्रंथी
1: होती है, वहां से TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सिक्रीट किया जाता है। वो ब्रेन को बोलता है कि T3 T4 कम हो गए हैं भाई, इनको शुरू करो,
0: आदेश देता है।
1: हाँ, तो जैसे ही T3 T4 शुरू होते हैं ये ब्लड में जाते हैं, ब्लड से अपना जो क्रियाएं होती है वो करते हैं। एक लेवल पे आने के बाद वापस हाइपोथैलेमस कहता है कि बस हो गया, आप TSH तुम बंद हो जाओ ताकि T3 T4 अपने लेवल पे काम कर सके
0: जी।
1: जब ये बैलेंस खराब हो जाता है तब होता है थायराइड। पढ़ना सुनना या गूगल सर्च, सोशल मीडिया काफी आ गए हैं, बेटर है कि हम इनसे जितना हो सके दूर रहे, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है फियर्स कम फ्रॉम ईयर्स, मतलब डर सुनने के माध्यम से आता है
0: जी।
1: तो आप जितना गलत सुनोगे सही सुनोगे आपको स्वयं को नहीं पता है। तो जो एक्चुअली ये सारी चीजों में विशेषज्ञ है उनके पास जाइए।
0: अच्छा, ये कितना सच है डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि थायराइड वाकई में हो जाता है? ऐसे चिकित्सक तो आप बताएंगी ही, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मोटा होता है और उसका मोटापा दूर ही नहीं होता, या कोई बहुत दुबला है और दुबला होता रहता है, तो वाकई में थायराइड ग्रंथि का कोई कमाल होता है इसमें?
1: नहीं, ये तो डिपेंड करता है आपका डाइट कैसा है, मतलब आप कितना खान पीने में ध्यान दे रहे हो, कितना एक्सरसाइज कर रहे हो। मैं सोचिए पूरे दिन भर एक जगह पे बैठी हूँ और मैं खा ही रही हूँ, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान मोटा ही होगा, इसमें थायराइड कुछ नहीं कर रहा।
0: अच्छा।
1: तो ऐसा नहीं है, डायबिटीज में भी इंसान पतला होता रहता है। तो वही मैंने बोला ना कि सुनने पे ये मत जाइए, क्योंकि अभी डॉक्टर्स को पता है कि ये डायबिटीज वाला है इसलिए पतला हो रहा है, या ये थायराइड वाला है इसलिए पतला।
0: तो देखिए, कुल मिला के इस प्रश्न के उत्तर में आपने ये कहा है कि चिकित्सक से मिलिए और कंफर्म कीजिए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि खुद ही तय ना कर लें किसी के कहने सुनने पर। और यहाँ पर ये तय करना होगा कि प्रोग्राम में बातचीत तो हमारी जारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ वक्त है कि एक गाना सुन लिया जाए।
1: एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है, छू कर मेरे मन को किया तूने इससे अगर शुरुआत की।
0: याराना फिल्म का गाना है, किशोर कुमार की आवाज में सुनते हैं।

0: वाकई मन को छू गया है, लेकिन अगला प्रश्न हमारे दिमाग में उभरता है कि थायराइड जो है क्या कार्य करता है?
1: आज के वातावरण में इतने दौड़ भाग जिंदगी में हम क्या करते हैं? खाने पीने को साइड में रखते हैं, नेचुरल कोई भी चीजों को साइड में रखते हैं। हमको कैंड फूड चाहिए, हमको जंक फूड चाहिए, हमको फटाफट फास्ट फूड चाहिए, मगर हमें गरम घर का खाना ये हम जल्दी नहीं लेते, हम अवॉइड कर जाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, शरीर को जो मिलना चाहिए, कोशिकाओं को जो मिलना चाहिए वो मिलते नहीं है। इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए अमुक विटामिन, तमुक कैल्शियम, तमुक आयरन, अमुक ये तमुक वो, ये करके करके हम जो खाते हमको लगता है कि हाँ अरे हमने खा लिया ना, मैंने रोज कैल्शियम के ये खाया, मैंने रोज वो किया है
0: सप्लीमेंट्स,
1: मगर ये सप्लीमेंट्स एक्चुअली बॉडी को मिल रहा है मुझे नहीं लगता, और ये होता भी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी आपका शरीर एक ऐसे सिस्टम से बंधा हुआ है जहाँ पे आप जो नेचुरली चीज़ें खाते हो वो एब्जॉर्ब होती है। जो सप्लीमेंट्स, हाँ सप्लीमेंट्स कहीं ना कहीं ज़रूरी होते हैं, मगर हम आधे खाने को, आधे बैलेंस डाइट को सप्लीमेंट्स के साथ ऊपर नहीं डाल सकते, ये हम करते हैं। और ये सप्लीमेंट्स जब हजम नहीं होती है तब शुरू होता है 10 प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे एक बार कोई चीज़ एक डिसऑर्डर में चली गई, ऑर्डर से बाहर चली गई, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ता है। और जैसे ही सिस्टम बिगड़ता है, ब्रेन अपना सिस्टम उसको ठीक करने के में लग जाता है, तब या तो TSH बढ़ जाता है, या तो T3 बढ़ जाता है, या तो T4 बढ़ जाता है, तो उसमें हमारा जो विकास है दिमागी या शारीरिक विकास वो साइड में रह जाता है, क्योंकि बॉडी ज्यादा ध्यान दे रहा है कि इसमें गड़बड़ ना हो।
0: तो देखिए, आपने जो आहार की बात की कि कई बार हम जल्दबाजी में अपना रूटीन, जो प्राकृतिक आहार है, जो नेचुरल हमारी डाइट है, उससे हटके सप्लीमेंट्स पर भी डिपेंड हो जाते हैं और मन से ही हो जाते हैं कई बार, तो ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है और इसको रोकना है, थामना है। आपके पास भी कई मरीज ऐसे आते होंगे कि अचानक बहुत जब बढ़ जाती बीमारी तभी आते हैं।
1: हाँ, मेरे पास ज्यादातर तभी आता है जब एकदम बढ़ी हुई रहती है, मतलब 10 जगहों से बोला जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी आते हैं। मैंने आज तक कोई भी एक अच्छा केस देखा नहीं है जहाँ पे मैं खुश हो जाऊँ कि ये अभी रिसेंट है
0: जी,
1: कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये एक और रहेगा लोगों को कि जब भी आपको लग रहा है कि कुछ अलग हो रहा है आपके शरीर में, कुछ नॉर्मल से बाहर हो रहा है, तो अपना इलाज खुद मत कीजिए, हो सके तो अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, क्योंकि होम्योपैथ को एक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ कहा जाता है, जो कि हम आगे जब डिस्कस करेंगे ये मैं और क्लियर करती जाऊंगी।
0: जी जी, आपने कार्यों के बारे में बताया कि कार्य प्रणाली किस तरह से काम करती है, लेकिन हम इसके प्रकारों पर भी एक प्रकाश डालना चाहेंगे यहाँ पर, तो उसमें कई बार आप अपने हिसाब से बताएंगी, परीक्षण भी इसमें शामिल हैं, जैसे T3 T4 के परीक्षण आप करवाती हैं, तो किस परिस्थिति में होता है, तो ये हम चर्चा करेंगे एक गाना सुनने के बाद।
1: नमो नमो जी शंकरा, केदारनाथ से।
0: जी, केदारनाथ फिल्म का बहुत ही मशहूर गाना है।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई अच्छा सुनवा दिया आपने और बहुत ही माकूल था प्रोग्राम में इस समय। लेकिन प्रकारों की जहां तक बात है तो उसके बारे में आप विस्तार से अपने हिसाब से बताइए कि कितने प्रकार के इसमें थायराइड की ग्रंथियों का काम भी होता है, और फिर निदान की बात आती है तो क्या क्या परीक्षण करने आवश्यक होते हैं मरीज के लिए।
1: थायराइड, ये नाम हमने काफी टाइम सुना हुआ है, बट एक्चुअल थायराइड होता क्या है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है। और टाइप्स मतलब प्रकार, एक हाइपर थायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म है, काफी प्रकार, जैसे ग्रेव्स डिजीज हो गया, गॉइटर हो गए, टॉक्सिक एडिनोमा हो गया, ठीक है, थायरॉयड कैंसर हो गया। बट मूलतः जो भारत में या बाकी देशों में भी जो ज्यादातर पाई जाती है वो ज्यादातर हाइपर थायरॉयडिज्म ही होते हैं। हाइपर थायरॉयडिज्म में होता ये है कि T3 T4 लेवल ज्यादा हो जाता है। अभी हमें पता कैसे चले?
0: हाँ, उसके लक्षण भी दिखाई देते होंगे बॉडी पे।
1: लक्षण तो दिखाई देते हैं, मगर उसको कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इन्वेस्टिगेशंस का अलग एक महत्वपूर्ण बताया गया है
0: निदान।
1: इसमें आता है ब्लड। पहला जो थायराइड टेस्ट रहता है, फर्स्ट ही होता है ब्लड टेस्ट, ब्लड सीरम, T3 T4 TSH का
0: जी।
1: अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक है टोटल T3 T4, एक होता है फ्री T3 T4। TSH वैसा ही रहता है। टोटल T3 T4 होता है जो टोटल बॉडी में आपके संचालित होती। इसमें क्या हो जाता है, TBG, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, अगर बॉडी में ज्यादा कम होती है तो T3 T4 भी ऊपर नीचे रहेगा।
0: अच्छा,
1: तो ये पहले के डॉक्टर्स किया करते थे, मगर इससे भी ज्यादा एक्यूरेट फ्री T3 T4 है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करती किसी भी अन्य रासायनिक पे।
0: अच्छा,
1: फ्री T3 फ्री T4 ये आपको एग्जैक्टली बता सकती है कि जो पेशेंट है इसका T3 या T4 फ्री कितना है, मतलब बॉडीज में जो अत्यधिक है वो कितना है, जो कि डायग्नोसिस में हेल्प करता है। हमको पेशेंट को ठीक करना है, अंधेरे में तीर नहीं चलाना। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन, मैं फिर कहती हूँ, होम्योपैथी में भी इन्वेस्टिगेशन

0: बहुत महत्वपूर्ण है। अब ब्लड के बाद आ गया अल्ट्रासोनोग्राफी,
1: अच्छा
0: फिर आता है रेडियो एक्टिव स्कैनिंग, मगर ये सारे बाद में, मतलब जैसे थायराइड कैंसर हो गया, मल्टी नोड्यूलर ये हो गए, नोड्यूल्स हो गए, इसमें सारे ये अल्ट्रासाउंड या स्कैन्स ये सारे वहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें जब पता करना है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपर थायराइड या हाइपोथायराइड, ब्लड टेस्ट इज द फर्स्ट थिंग, प्राथमिक निदान जो रहेगा वो ब्लड टेस्ट है
1: अच्छा
0: और ये अनिवार्य है।
1: लेकिन मान लीजिए T3 या T4 में से कोई पॉजिटिव आ गया, जैसा
0: पॉजिटिव,
1: कि आपकी यूनिट के बाहर या कम जो
0: हाँ
1: होता
0: रेंज के
1: है,
0: बाहर,
1: रेंज के बाहर,
0: हाँ
1: तो आप क्या मानती हैं उसको?
0: नहीं, इस पे तीन चीज डिपेंड करता है, सिर्फ T3 T4 देख के नहीं होगा, TSH भी चाहिए।
1: अच्छा, तो उसमें अगर मान लीजिए
0: अगर
1: है तो क्या रेंज रहती है और क्या उसके लक्षण
0: जैसे
1: दिखाई देते हैं?
0: T3 और T4 अगर हायर साइड में है और TSH रेंज से नीचे है,
1: जी
0: इसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं।
1: अच्छा
0: हाँ ठीक है। और जब T3 T4 लो है और TSH हाई है तो इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं।
1: जी जी जी
0: तो उस हिसाब से हमारे चिकित्सा जो है वो शुरू होने चाहिए।
1: हाँ, क्योंकि निदान में पता हो जाता है कि ये
0: हाँ
1: लेवल क्या है
0: लेवल
1: बीमारी
0: क्या
1: का।
0: है और पेशेंट कौन सा पेशेंट है, हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है कि हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट, और शुरू होता है हमारा चिकित्सा।
1: जी, तो हम चिकित्सा की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले आपके प्रकारों में और भी जो बातचीत है उसको लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक वातावरण को संगीतमय बनाना होगा।
0: शुरू करते हैं, एक बहुत ही मेरा पसंदीदा गाना है, खोया खोया चांद,
1: काला बाजार,
0: काला बाजार।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गाना वाकई में बहुत ही पुराने दौर में हमें लिए गया और एक पुराने मंजर को हमारे सामने ला दिया गाने ने, तो हम यही कहेंगे कि होम्योपैथी भी एक बहुत पुरानी चिकित्सा है, आज की नहीं है। तो इसमें तो कई प्रकार के निदान के साथ साथ जब चिकित्सा में हम आगे बढ़ते हैं तो कन्फर्म हो जाते हैं कि नहीं, मरीज ठीक होगा ही। तो जब आपके पास जो प्रकार आप बता रही थी, इस तरह के मरीज ज्यादा आपको मिले या कम वाले मिले?
1: पेशेंट हमको कभी बोल के नहीं आता कि हम हाइपरथायराइड के हैं या हाइपोथायराइड। अपने हिसाब से पेशेंट्स को सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं। उनका जो बोलना होता है वो आधे से ज़्यादा आपको बता देगा कि क्या एग्जैक्टली चिकित्सा का तरीका जाना चाहिए। जैसे ज़्यादातर जब पेशेंट्स ये जो हाइपरथायराइडिज्म में होते हैं, ये 6 महीने पहले से ही इनके लक्षण शुरू हो जाते हैं।
0: अच्छा।
1: मगर लक्षण कैसे होते हैं, कहीं खाज हो गई, कहीं खुजली हो गई, कहीं बाल गिरने का जो समस्या है एलोपेशिया,
0: जी जी,
1: विटिलिगो मतलब सफेद पैचेस, किसी को एंजाइना पेन हो रहा है, किसी का वेट एकदम कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, कहीं डायरिया बहुत ज्यादा है, मतलब लूज मोशंस।
0: जी।
1: अब जब ये सारे पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे समझ लीजिए मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, अब वो पेन अंजाइना का भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, सांस में तकलीफ हो रही है, पेशेंट जाता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि ये गलत है।
0: जी।
1: कहीं पे किसी को डर्मेटोलॉजी का प्रॉब्लम होगा,
0: त्वचा रोग,
1: तो वो त्वचा विशेषज्ञ के पास जाएगा, तो वो देखेंगे कि हाँ चलो बाल गिर रहे हैं, सिर्फ उतने तक दवाई देके छोड़ देंगे। मगर यहाँ पे ही होम्योपैथ अपना खुद का एक अलग छाप छोड़ता है। जब एक पेशेंट मेरे पास आ रहा है और मुझे ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, मुझे ये ऑलरेडी सोचना चाहिए, ये ऑलरेडी मेरे दिमाग में शुरू हो जाता है कि ये इसका जड़
0: इसका
1: क्या है,
0: किधर है।
1: एग्जैक्टली, रूट जो कहते हैं ना होम्योपैथी जड़ से निकालता है, क्या होता है, यही होता है। मुझे दिख रहा है मेरे सामने एक पेशेंट बैठा है, वो बोल रहा है कि मेरे बदन में खुजली है, मेरा वेट लॉस हो रहा है, मतलब वजन कम हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रहा है। लोगों को लगेगा कि अच्छा भाई इसको थोड़ा पेट का समस्या होगा, थोड़ा बाल का कुछ शिकायत होगा। नहीं, इसको अगर आप बैक ट्रैक करो, मतलब आप सोचते जाओ इसका जड़, तो कहीं ना कहीं आपको 10 चीजें रहेंगे, उसमें से आपका एक्सपीरियंस, आपका खुद का नॉलेज आपको बताएगा कि कहाँ जाना है, वो आपको दिशा देगा। तो ये होता है जड़। तब मुझे सोचना चाहिए कि थायराइड एक कॉज हो सकता है
0: जी,
1: क्योंकि डायबिटीज में भी ये होते हैं, मगर थायराइड एक कॉज हो सकता है। इस प्रकार से अगर हम निदान करें उस पेशेंट का उस वक्त, काफी टाइम, ऑलमोस्ट मेरे केसेस में 80% तक ऐसे हो चुका है कि थायराइड इनिशियल स्टेजेस पे डिटेक्ट हो गया, तो या तो हम उसको स्लो डाउन कर ले या तो एक्चुअली वो क्योर हो जाता है। हाँ, अगर लेटर स्टेज में जब पेशेंट्स आते हैं कि बकायदा हाइपर थायराइडिज्म के सिम्टम्स लेके, जो लक्षण है वो मैं बता दूंगी, तो ये लक्षण लेके तब तो उसको क्योर करना ही करना है
0: जी।
1: मैं बोल रही हूँ कि 6 महीने पहले से जब लक्षणें दिखाई देती है तब अगर ध्यान दिया तो ट्रीटमेंट या चिकित्सा है या उसका
0: आसान
1: जो
0: हो जाएगी।
1: हाँ, क्योर है वो जल्द हो जाएगा।
0: तो ये तो आपने बहुत ही गंभीर बात बताई है, लेकिन बहुत ही आसान से शब्दों में सुनने वालों को भी समझना होगा और जो इसके मरीज हैं वे भी ये जान सकते हैं कि कितना आसान है, लेकिन प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते ही चिकित्सक से सलाह लें। और अब हम यहाँ पर बढ़ेंगे अगले गाने के साथ, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
1: एक बहुत ही पुराना गाना है, मन रे तू काहे न धीरे धरे,
0: चित्ररेखा फिल्म का गाना है ये।
1: हाँ।
0: और वाकई में धैर्य रखने की जरूरत है,
1: जरूरत
0: लेकिन
1: है।
0: प्रोग्राम में तो इस गीत को अभी बजाना पड़ेगा।

0: वाकई एक बहुत ही संदेशात्मक नगमा जो आपने सुनवाया अपनी पसंद पर, मोहम्मद रफ़ी ने गाया। और चित्रलेखा फिल्म के इस गाने को आत्मसात करते करते कई प्रश्न होम्योपैथी क्या क्या होता है वो सब मंजर सामने आने लगा। लेकिन थायराइड और होम्योपैथी में उपचार विषय पर हमारी चर्चा जारी है डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। डॉक्टर साहब, इस गीत के बाद जो एक प्रश्न उभरता है वो ये है कि निदान के बारे में अभी और कुछ कहना चाहेंगी आप?
1: शुरुआत में ही आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, तुरंत वो ठीक हो जाए। अब हमारे होम्योपैथी में तीन चीज बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: क्या क्या है?
1: एक होता है जो चीफ सिम्टम्स है या प्रेजेंटिंग सिम्टम, मतलब तात्पुरता आप जब डॉक्टर के पास आए हो किस लक्षण के साथ आए हो। सेकेंड होता है पास्ट हिस्ट्री, मतलब बचपन से लेके अभी तक आप क्या क्या बीमारी आपको हो चुकी है,
0: हिस्ट्री क्या है,
1: हिस्ट्री क्या है इसमें आपको। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी कि आज के दिनों में हम ध्यान नहीं देते हैं, मगर कैसे होता है कि कोई भी चीज होम्योपैथ में कहा जाता है कि सप्रेस अगर हो गई तो वो जब बाहर निकलना ही निकलना है, जब बाहर निकलती है और बड़ा होके, मतलब और ज्यादा होके वो आपके शरीर पे घातक होता है। एग्जाम्पल, कभी अगर हमको भूख लगती है, पेट में दर्द होता है, हम बहुत टाइम तक वो भूख को मतलब नहीं, अभी खाने का टाइम नहीं आया, जो भी है, या कभी किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, कहीं जा रहे, डर लगा, ये थोड़ा भी हमारा जब माइंड चेंज होता है या सोचने का प्रक्रिया हमारी चेंज हो जाती है तब रासायनिक क्रियाएं शुरू हो जाती है बॉडी में। कभी हमें ध्यान में आता है, कभी नहीं आता है। तो यही सारी चीजें जब हम सप्रेस करते हैं, मतलब दबा देते हैं
0: जी,
1: तो वो आगे जाके बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है हमारे खुद के शरीर को या हमको। इसमें से आता है दो तरह के सप्रेशंस,
0: वो कैसे?
1: एक है मेंटल, मानसिक, और एक है फिजिकल।
0: जी,
1: मेंटल में कैसे कैसे होता है कि अगर मुझे अमुक व्यक्ति पे गुस्सा आया, समझिए आप पे गुस्सा आ गया, मैं वो अंदर ही अंदर रख लूंगी कि नहीं जी, मैं तो तिवारी जी को नहीं बोल सकती, बड़े हैं, चलो वो गुस्सा मैंने सप्रेस कर लिया। इससे होता क्या है कि कभी देखा होगा कि हिंदी में एक कहावत है, आग बबूला होना।
0: जी जी,
1: तो वो आग बबूला होना या हाथ वो जो लाल हो जाता है, कान लाल होती है गुस्से से थोड़ा, तो वो होता ये है ऑलरेडी केमिकल चेंजेस या रासायनिक क्रिया आपके बॉडी में शुरू हो गई है।
0: जी जी,
1: आपका ब्रेन आपको बोल रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, सावधान
0: जी।
1: अब आपको कहीं किसी से डर लग रहा है या कहीं नए जगह पे जाने पे एक अलग सा एक

0: फोबिया।
1: हाँ, धड़धड़ाहट होती है, सबको होती है। तब क्या होता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, धड़धड़ सुनाई देती है दिल की। एक्चुअली होती है क्योंकि तब हमारा बॉडी उस हिसाब से काम करना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी पे गुस्सा है तो मैं उसे मारूं या चिल्लाऊं, नहीं, ऐसा नहीं होता। मानसिक चीजों में सप्रेस करना मतलब है, अगर आपको कुछ चीजें बुरी लग रही है या जो भी है, उसको एक अलग ढंग से प्रस्तुत कीजिए। नहीं तो सबसे अच्छा माध्यम मेरे हिसाब से ये है, गाने, म्यूजिक इज अ बेस्ट थेरेपी फॉर एनीथिंग।
0: और ये भी हो सकता है कि उस माहौल से थोड़ा हट जाएं।
1: तब क्या होता है, तब थ्री इडियट्स में जैसे हमने एक डायलॉग सुना होगा, हम बेवकूफ बनाते, ऑल इज वेल, वो हो जाता है, हम ब्रेन को बेवकूफ बना रहे कि भाई कुछ नहीं हुआ है,
0: सब ठीक है।
1: तो तात्पुरता ब्रेन जब नॉर्मल हो जाता है, वो केमिकल रिएक्शन सारे गड़बड़ जो हो रहे हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, तब देखना आपका गुस्सा भी ठंडा हो रहा है, आपके बॉडी पे असर नहीं पड़ रहा है। ये हो गया मेंटल
0: जी।
1: अब अगर हम शारीरिक बातों पे आए,
0: फिजिकल,
1: उसमें क्या होता है कि टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि जंक फूड, ये वो वाला ना,
0: सारी विषैली चीजें,
1: हाँ,
0: तत्व जो है अंदर रहते हैं।
1: हाँ, तो ये सारी टॉक्सिक चीजें जब अंदर से बाहर आने की कोशिश करती है, याद रखिए नेचर, प्राकृति हमेशा अपने आप को बचाना चाहती है। कोई चीज अगर क्रिएट हो रही है या बन रही है, उसको जल्दी से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नेचर कभी नहीं करता, प्रकृति कभी नहीं करती, शरीर भी वही है। तो जैसे ही कोई टॉक्सिक बॉडी के अंदर है, विषैली चीजें, वो बाहर निकलेगी। कैसे निकलेगी, ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्गन्स को फर्स्ट हाथ नहीं देती नेचर। बाल हो गए, फेस हो गया, मतलब स्किन हो गया, ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर थोड़ा बहुत खराब भी हो गया तो आपके शरीर में या ऑर्गन्स में जो महत्वपूर्ण है आपके जीवन शैली में, वहां पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से जब हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं या टॉक्सिन्स बाहर निकालने होते हैं, फर्स्ट होता है स्किन, रिंग वर्म हो गया, एक्नी हो गया, सिंपल पिंपल हो गया,
0: रोम छिद्रों से निकल जाते हैं।
1: हाँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 क्रीम लगाओ, 50 लोशंस लगाओ, पहले उसको ठीक करो, भले कुछ हो जाए। अब वापस नेचर ट्राई करता कि फिर उसको निकाले, फिर हम उसको अंदर डाल देते, क्योंकि हमको बाहर से अच्छा दिखना है, अंदर कुछ भी हो जाए।
0: जी जी।
1: तो यहाँ पे हो जाता है क्या कि लिवर या कोई भी ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी, गुर्दा, मसल्स, ब्रेन, हार्ट, ये सारे एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं तो आपको इफेक्ट करने ही वाले हैं।
0: जी।
1: और वहां से शुरू होता है प्रॉब्लम्स की सारी प्रक्रियाएं, जड़, जैसे मैंने बोला था होम्योपैथी का जड़। तो इसलिए पास्ट हिस्ट्री, मैंने इसलिए इतना डिटेल्स में बोला कि ये होता है पास्ट हिस्ट्री, ये भी हमें ध्यान रखना है। एंड लास्टली, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, फैमिली हिस्ट्री,
0: इतिहास क्या है परिवार का।
1: अभी जैसे आम के बीच से आम ही होगा, केला होगा नहीं, केले के झाड़ में केले ही आएंगे,
0: हेरिडिटरी।
1: अभी जैसे अगर फैमिली में थायराइड का हिस्ट्री अगर है, जो यंग गर्ल्स होती है, जो लड़कियां जो प्यूबर्टी में जाती है, उनके चांसेस भी ज्यादा रहते हैं कि आगे के दिनों में उनको भी थायराइड होने के चांसेस है। तब होम्योपैथ का काम ये होता है कि ये भी ध्यान में रखे, अगर है तो उसको ठीक करे, अगर नहीं है तो उसको होने ना दे, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। ऐसे में काफी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि अरे डॉक्टर साहब, आपने दवाई दी थी मगर अमुक चीज तो ठीक है, मगर अरे इसको फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं। मैं बोलती हूँ आने दो, क्योंकि टॉक्सिन्स निकल रहा है, जितने टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाए ऑर्गन्स उतना ही ठीक रहेगा। ऑप्टिमम लेवल, मतलब जो एक्चुअल लेवल में रहना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए, वो लेवल में रहेगा। और जैसे ही बैलेंस में आ जाता है, ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम बैलेंस में आता है।
0: तो फिलहाल तो हमें अपने प्रोग्राम को भी बैलेंस करना होगा, संतुलित रखना होगा। चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और आपकी पसंद का एक अच्छा सा गाना यहाँ सुनेंगे।
1: अभी तो मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, वो है तू गंगा की मौज में,
0: बैजू बावरा।
1: बैजू बावरा
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: बैजू बावरा फिल्म का ये नगमा वाकई आनंदित कर गया। और देखिए जिस तरह से गंगा की मौज में जो एक पवित्रता झलकती है, तो शरीर भी पूरी तरह से कुदरत का दिया हुआ एक पवित्र रचनात्मक पूरा व्यक्तित्व होता है। हम इसे बिगाड़ देते हैं विषैले तत्वों को आत्मसात करके, तो होम्योपैथी उससे भी बचाती है। और आहार के बारे में भी अब जानेंगे आपसे, लेकिन थोड़ा सा चिकित्सा का और आप विस्तार दे रही थी, वो क्या है?
1: अच्छा, अब आते हैं हम दवाइयों पे। हाँ, मेरा एक सुझाव रहेगा सभी से, कृपया कर खुद का इलाज खुद मत कीजिए, या दूसरों का भी सिर्फ पढ़ के, गूगल पे सर्च करके, सोशल मीडिया पे जाके मत कीजिए। इतना आसान नहीं है, मगर ये नाम सुनने को इजी, या लक्षणें जब पढ़ेंगे, अरे हाँ ये है ना, ये अमुक में है, अरे ये तो अमुक में है, दे देते हैं, इतना आसान नहीं होता। क्योंकि जैसे मैंने कहा था, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री सब जानना जरूरी है, प्लस इन्वेस्टिगेशन का जो ये भी जानना जरूरी है। हर एक दवाई हर एक जगह पे काम नहीं करती, तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं दवाई?
0: सही बात,
1: दवाई तो वही है, लक्षणें भी वही है, वेट लॉस होगा, वेट गेन होगा, यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म में स्वेटिंग मतलब
0: पसीना
1: बहुत ज्यादा आएगा, डायरिया होगा, हाइपो में उल्टा होगा। तो कैसे सिलेक्ट करते हैं कि कहाँ पे किसको देना है?
0: लक्षण देख के
1: लक्षण में भी एक स्पेशल इंगित होती है, हर एक पेशेंट एक स्पेशल इंगित स्वयं देता है, सुनने की देरी है,
0: एक इंडिकेशन होता है,
1: एक इंडिकेशन। जैसे थायरोक्सिन का पेशेंट है, एक आयोडीन का, हम मान के चलते हैं, ये अपने ऊपर ट्राई मत कीजिएगा, मैं बता रही हूँ एज एन एग्जाम्पल। थायरोक्सिन का पेशेंट दिखने में कैसे होता है? गोल मटोल सा, बहुत स्वेट करता हो, थोड़ा भी कुछ काम किया तुरंत उसको पसीना आता है, तुरंत वो वीक हो जाता है, ठीक है?
0: आयोडीन थोड़ी मेहनत करने पे ही वो थक जाता है,
1: बहुत जल्दी थक जाता है।

0: ठीक है, मैंने जैसे पहले कहा था ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशन आ गया, अब होता है पेशेंट डायग्नोसिस। मुझे ये पेशेंट डायग्नोस करना पड़ेगा।
1: क्या बात है।
0: पेशेंट डायग्नोसिस होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अमुक पेशेंट अमुक मेडिसिन का है, तमुक पेशेंट तमुक मेडिसिन का है। तो ये कैसे पता चलेगा? पेशेंट के हिस्ट्रीज लेके और पेशेंट के प्रेजेंट सिम्टम्स लेके और वो जिस तरीके का मानसिक विचारधारा रखता हो। थायरोक्सिन का पेशेंट बहुत उग्र होगा, गुस्सेल। आयोडीन का पेशेंट उसी, अगर उससे देखा जाए वो बेचारा सा
1: मायूस
0: सा बेचारा, हर एक चीज पे थोड़ी थोड़ी चीजों पे मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये सारी चीजें उसमें होती। अब यहाँ पे आता है, जब मुझे पेशेंट डायग्नोसिस करना पड़ता है, मैंने थायरोक्सिन को आयोडीन और आयोडीन को थायरोक्सिन अगर दे दिया तो मेरे काम बिगड़े बिगड़े मगर पेशेंट सफरर है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन या स्वयं को दवाई देना प्लीज बंद कर दीजिए।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक प्रश्न और उभरता है। हम कई बार देखते हैं बहुत ही मोटा सा व्यक्ति है, बहुत उसको पंचकर्म की क्रिया दे दी गई है, नेचुरोपैथ ये वो, लेकिन वो मोटा ही रहता है। और वो जब भी पूछते हैं तो बोला थायराइड का प्रॉब्लम है। तो एक तो ये बात, तो ये थायराइड में मोटा होना या एकदम अत्यंत दुबला या कृश हो जाना, ये क्यूरेबल है?
0: है, क्योंकि जैसे ही आप थायराइड क्यों है, कारण क्या है, ये जैसे ही आप ठीक कर रहे हो ऑटोमेटिक वो अपने नॉर्मल में आ रहा है, नॉर्मलसी जिसको कहते हैं, मतलब
1: सामान्य अवस्था में आ रहा है।
0: सामान्य अवस्था। डिजीज होता क्या है, डिस ईज, जब आपका ईज या आपका कंफर्टेबल लेवल जब खराब होता है, ईजनेस खराब होता है, उसको डिस ईज कहा जाता है। तो जैसे ही वो जड़ से ठीक होने लगता है, जब उसके ऑलरेडी जो गड़बड़ चल रही है वो ब्रेन में चले, माइंड में चले, कहीं पे भी चले
1: जी,
0: ये जैसे ही ठीक किया जाता है, वैसे ही ऑब्वियसली उसका जो सामान्य रूप से पूरी तरह से वो ठीक होके अपना सामान्य जीवन यापन कर सकता है।
1: जी जी। और अब देखें कि इसमें कई बार आहार भी काम करता है, जो इस तरह की थायराइड की आने वाली आगामी जो बीमारियां हैं उससे बचाव भी होता है उसका। तो आप क्या कहेंगे कि डाइट और प्रिवेंशन के बारे में क्या कहना?
0: कोई भी पैथी अगर कहे कि मैंने ही सब कर लिया, एकदम गलत। क्योंकि सिर्फ पैथी, सिर्फ दवाइयाँ कुछ नहीं करती, कर ही नहीं सकती। इसमें डाइट का मतलब आहार का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता ही है। सिर्फ डाइट अगर बोलूँ तो गलत होगा, साथ में होते हैं एक्सरसाइज, मतलब व्यायाम। व्यायाम मतलब ये नहीं कि आप जिम में जाओ, अमुक वेट्स लो, तमुक करो, कोई जरूरत नहीं है। आप रोजाना 5 से 7 किलोमीटर चलो, सीजनल फ्रूट,
1: कोई भी मौसमी एक जो मौसमी फल है खाना चाहिए,
0: खाना हो या फल हो ये खाइए। और पानी, हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी, लोग पानी जब बोलते हैं तो बोलते हैं ज्यादा पानी पियो, ज्यादा पानी पियो, शरीर ठीक रहेगा, बिल्कुल नहीं। 2.5 से 3 लीटर काफी है आपके बॉडी के लिए। इससे जब ज्यादा पानी पियोगे, एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, आप की खुद की कैपेसिटी अगर होगी, मेरी खुद की कैपेसिटी है 2 किलो चीज उठाने की, मुझे 3 किलो दे दिया जाए मैं उठा लूंगी, मुझे 10 किलो दे दिया जाए क्या मैं उठा पाऊंगी?
1: बहुत प्रेशर पड़ेगा।
0: यही प्रेशर हमारे इंटेस्टाइन्स, किडनीज पे स्पेशली पड़ता है, जब हम ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं। किडनीज सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम नहीं करता, T3 किडनीज लिवर से भी प्रोड्यूस होती है।
1: ओहो,
0: यस, इसलिए मैंने ये यहाँ पे जिक्र किया। और जब किडनीज अगर काम नहीं कर रही है तो 10 चीजें होंगी ही होंगी, T3 पे भी असर पड़ेगा।
1: तो ये सावधानी बहुत जरूरी है रखना। और आपका जो टोटल इन ऑल कहना ये है कि वो कॉमनली कहा जाता है कि ज्यादा पानी पिए, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार
0: उतना ही।
1: लेकिन आहार में ये बात तो मानती है, आज की जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, उसमें जंक फूड वगैरह भी इसमें
0: सबसे पहला चीज जो लोगों को बंद करना चाहिए वो है अजीनोमोटो,
1: जो बड़ी खतरनाक ज्यादा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही बोला है,
0: अजीनोमोटो बंद कर दीजिए, फास्ट फूड्स कम कर दीजिए,
1: और कुछ नहीं तो सामान्य खाना खाइए।
0: हाँ, कम कर दीजिए, मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि बंद कर दीजिए, एक्चुअली बंद करनी चाहिए, अगर नहीं हो रहा है कम कर दीजिए। क्योंकि जैसे ही आप कम करेंगे ऑटोमेटिक आपका शरीर पॉजिटिव दिशा में जाएगा। और मेरा सुझाव एक रहेगा लोगों से, जितना हो सके अपने माइंड को थोड़ा नियंत्रण पे रखिए, मतलब

0: थोड़ा सैक्रिफाइस अगर हम करना शुरू हो जाए,
1: कंट्रोल
0: करना शुरू हो जाए, सैक्रिफाइस मतलब अपना स्वार्थ थोड़ा सा हटके देख लेना, जैसे ही आपका मन शांत रहेगा, आपकी सोच अच्छी होगी, शरीर ऑटोमेटिकली उसी दिशा में उस हिसाब से अच्छा ही चलेगा,
1: क्योंकि उसी हिसाब से उसको आदेश प्राप्त होंगे।
0: हाँ, हम जैसे बोलते हैं कि ब्रेन ने वो आदेश दिया, मैंने जैसे पहले कहा कि ब्रेन को आदेश मिलता है कि टीएसए चालू करो बंद करो, एक्चुअली ब्रेन देता है क्या, मन देता है। मन को आप ब्रेन के अंदर रिलेट मत करना, वो अलग चीज होती है।
1: हमारे जो कार्यक्रम का मन इस समय कह रहा है कि आदेश दे रहा है दरअसल कि एक गाना अच्छा सा हो जाए यहाँ पर,
0: एक अच्छा सा गाना चलते चलते मैं हूँ।

0: डॉक्टर साहब, बहुत ही झूमता मचलता बहलाता कदमों को थिरकाता नगमा आपने सुनवाया झुमरू फिल्म से और किशोर कुमार की आवाज में। देखिए, समापन की ओर बिल्कुल नजदीक है हमारा प्रोग्राम। चलते चलते आज के हमारे विषय पर हमारे सुनने वालों को आप क्या मैसेज, संदेश या सलाह देना चाहेंगी?
1: एक है कि पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए नहीं तो खुद के लिए, खुद के शरीर के लिए। दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए, खुद के लिए भी अच्छा सोचिए। आप जितना अच्छा सोचोगे, आपके शरीर की जो रासायनिक क्रिया है उतनी ही पॉजिटिव आएगी। और इससे होगा क्या, हमारे आने वाले जेनरेशंस को हम एक बहुत

0: अच्छा एनवायरनमेंट या एक अच्छा जगह दे पाए जहाँ पे वो पनप सके। मेरे जो गुरु है जिन्होंने आज मुझे सिखाया है कि होम्योपैथी का मतलब क्या, कैसे सेवा की जा सकती है, कैसे ठीक करके हम, ये एक अलग ही खुशी मिलती है पेशेंट को ठीक करने की। ये जो खुशी मिलने का जो राह है वो मेरे गुरु ने मुझे दिखाया है। मेरे गुरु और कोई नहीं, मेरे डैड है, डॉक्टर एस बैनर्जी, एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और एक बार फिर विविध भारती को तहे दिल से शुक्रिया करूंगी मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। आज के प्रोग्राम में चर्चा का विषय था थायराइड होम्योपैथी में उपचार। इस विषय पर यह कार्यक्रम आपने सुना और उम्मीद है आप प्रतिक्रिया देंगे तो हमें पता चलेगा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। चलते चलते आपको बताना चाहेंगे, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। और अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटा
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे राष्ट्रपति भवन में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार 2025 प्रदान किए जाने का सीधा प्रसारण। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। आइए शामिल होते हैं दिल्ली केंद्र के प्रसारण में।

0: कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा। आइए राष्ट्रपति भवन चले। नमस्कार, राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपने साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज यहां 66 विभूतियों को पद्म अलंकरण प्रदान करेंगी, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। नागरिक अलंकरण समारोहों का ये पहला चरण है और दूसरे चरण में शेष रहे पद्म अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। अभी हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री जी, ये तमाम अतिथि आ चुके हैं और कुछ क्षणों में यहाँ पर पधारेंगी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू,
1: नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ द सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी एज वी ब्रॉडकास्ट फ्रॉम द गणतंत्र भवन एट राष्ट्रपति भवन इन द ऑगस्ट प्रेजेंस ऑफ डिग्निटरीज and the proud recipients of the prestigious awards and their family members. And friends, today is the day when Padma Awards, the highest civilian awards of the country, shall be presented by the first citizen of the country, Honorable President Srimati Draupadi Murmu ji. The awards are given in various disciplines like art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil services, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, and Padma Shri and Padma Bhushan is for distinguished service of high order, and Padma Shri is for distinguished service in any field. Friends, the awards are announced on Republic Day every year.
2: इस वक्त राष्ट्रपति जी का यहाँ पर इंतजार। हम ये बता दें कि राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप, जहाँ पर 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट ने शपथ ली थी, ठीक यहाँ पर राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक पीछे 5वीं शताब्दी की मथुरा की ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा, जो कि गंधार शैली में बनी है, और ठीक बीच में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शैंडिलियर और इसके ठीक ऊपर सांची के स्तूप से प्रेरित गुंबद और 12 बहुत ही सुंदर जैसलमेरी पत्थर के बने स्तंभ। और अब पधार रही हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप में।

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था महार रेजिमेंट सेंटर सागर के बैंड ने। सुबेदार पीवी गुरुंग इसका कर रहे थे।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्यवाही आरंभ की जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने कार्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति दी। उन्होंने सुनहरे रंग की फिरोजी रंग के बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है और मंच पर आसीन। अब कुछ ही पलों में प्रस्तुतिकरण शुरू होने वाला है।
1: श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: सबसे पहले महान अभिनेता हीमन के नाम से मशहूर, जिन्होंने 6 दशक तक कैरियर रखा है, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी पद्म विभूषण प्राप्त करने जाती हुई।
2: श्री धर्मेंद्र सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द 14th लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द बीकानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन राजस्थान फ्रॉम 2004 to 2009, and he was known for his emotional bond with his constituents.
1: Dr. Shrimati N. Rajam, Kala, Violin.
0: 87 वर्षीय Dr. Shrimati N. Rajam भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान है और वायलिन के क्षेत्र में एक अनूठा नाम है। आप एर्नाकुलम में जन्मी थी और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से आपने वायलिन की शिक्षा प्राप्त की।
2: Beyond her illustrious performing career, Dr. Rajam served with distinction as a professor in the Faculty of Performing Arts at the Banaras Hindu University for nearly 4 decades and rose to become the head of department and subsequently dean of faculty, earning the prestigious title of Emeritus Professor by BHU.
1: Padma Bhushan, Shatavdhani Dr. R. Ganesh, Kala Avdhan.
0: अवधान के विशेषज्ञ 64 वर्षीय शतावधानी डॉक्टर आर गणेश कलम और कागज की किसी भी सहायता से, उसकी सहायता के बिना छंद लिखते हैं और इन्होंने 1300 से ज्यादा अष्टावधान और 5 शतावधान लिखे हैं और 70 से ज्यादा पुस्तकें भी।
2: डॉक्टर आर गणेश इज आल्सो अ प्रोलिफिक ऑथर हैविंग मोर देन 70 बुक्स टू हिज क्रेडिट।
1: भगत सिंह कोशियारी लोक कार्य।
0: भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें भगत दा के नाम से जाना जाता है, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं 74 वर्षीय, और लोक सेवा का अनूठा काम किया है, राष्ट्रवादी नेता है।
2: श्री कोश्यारी स्टार्टेड टीचिंग एट सरस्वती शिशु मंदिर कासगंज उत्तर प्रदेश, वेयर ही वर्क्स टू इंपार्ट भारतीय वैल्यूज अलोंग विद मॉडर्न एजुकेशन टू यंग चिल्ड्रन।
1: श्री उदय सुरेश कुमार कोटक, व्यापार एवं उद्योग।
0: 67 वर्षीय कोटक, आपने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड से शुरुआत की और आज कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जैसा एक बड़ा आयोजन इन्होंने किया है।
2: श्री कोटक has played an important role in defining and developing India's banking and financial sector over 4 decades, and he leads several key bodies serving as co-chairman of the Indo-UK Financial Partnership.
1: विजय कुमार मल्होत्रा मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री अजय कुमार मल्होत्रा।
0: बीते 30 सितंबर 2025 को श्री मल्होत्रा का निधन जरूर हो गया था, लेकिन आप एक खेल प्रशासक थे और एक राजनीतिज्ञ और अकादमिक भी थे। उनके बिहाफ पर अजय कुमार मल्होत्रा पद्म भूषण प्राप्त करते
2: हैं। प्रोफेसर मल्होत्रा सर्व्ड ओवर 40 इयर्स एज़ द प्रेसिडेंट ऑफ आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया।
1: रामास्वामी पल्लीस्वामी चिकित्सा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी।
0: 77 वर्षीय डॉक्टर पलनी स्वामी देश के प्रतिष्ठित

0: गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट हैं। आपने 2007 में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त किया था।
1: He also served as president of the Society for Gastrointestinal Endoscopy of India, where he initiated a task force to form
2: guidelines.
1: श्री
2: पीयूष पांडे मरणोपरांत कला विज्ञापन, उनकी पत्नी श्रीमती नीता जोशी।
0: पीयूष पांडे कौन नहीं जानता उन्हें, विज्ञापन की दुनिया में एक अनूठा नाम। 70 वर्ष की उम्र में 24 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हो गया। नीता जोशी उनके बिहाफ पर ये पुरस्कार प्राप्त करती हैं।
1: श्री पांडे वाज नेम्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजिंग मैन इन इंडिया।
2: पद्मश्री, श्री विश्व बंधु मरणोपरांत कला लोक नृत्य, उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी।
0: विश्व बंधु जी लोक कला के एक बड़े अनूठे हस्ताक्षर थे और बिहार में लोक कलाओं की, खास तौर पर लोक नृत्यों की बहुत सेवा की। 95 वर्ष की उम्र में आपका निधन जरूर हो गया, लेकिन राष्ट्र आज कर रहा है उनका सम्मान पद्मश्री देकर मरणोपरांत।
1: श्री विश्व बंधु वॉज द फाउंडर ऑफ सुरंगन, वन ऑफ बिहार's मोस्ट रिस्पेक्टेड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, एंड रिमेन्ड सो ओवर 6 डेकेड्स।
2: श्री भरत सिंह भारती कला लोक गायन।
0: भरत सिंह भारती, 90 वर्ष की उम्र में भी आप सांस्कृतिक विरासत और खास तौर पर भोजपुरी गायन और भोजपुरी लोक शैलियों का अभी भी संरक्षण कर रहे हैं। आपने गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ, सबका अभिवादन करते हुए और राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गुरुजी का इन्हें संबोधन दिया जाता है।
1: श्री भरत सिंह भारती रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सागर फेस्टिवल इन मॉरिशस इन 1987, व्हेयर हिज एल्बम पुरबिया तान वाज रिलीज्ड। ही हैज आल्सो गाइडेड अ न्यू जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट एज अ जज एंड मेंटर।
2: श्री तगाराम भील कला अलगोजा वादन।
0: जैसलमेर के तगाराम भील अलगोजा बजाते हैं, कितना सुंदर साज जो कि शीशम और कैर की सूखी लकड़ी से बना होता है। इन्होंने जैसलमेरी पट्टू पहना है और ऊपर जैसलमेरी साफा चुनरी का।
1: श्री तगाराम इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स। ही हैज रिसीव्ड अ महरावाल गिरधर अवार्ड इन 2013 बाय महरावाल गिरधर ट्रस्ट जैसलमेर एंड मेनी मेनी अदर अवार्ड्स। He got many opportunities.
2: हरमनप्रीत कौर भुल्लर खेल क्रिकेट।
0: कौन नहीं जानता हरमनप्रीत कौर को, जिन्होंने राष्ट्र के लिए विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी। 37 वर्षीय हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, सुनहरे रंग का परिधान पहना हुआ राष्ट्रपति जी के सामने जाकर अपना पद्मश्री स्वीकार करती हुई।
1: Her achievements have not only strengthened India's presence in international cricket, but have also contributed significantly to the growth.
2: Shri Ratilal Mohanlal Borisagar, Sahitya Evam Shiksha.
0: 88 साल के हैं रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, और गुजरात में कितने ही बच्चों के चेहरों पर जिन्होंने मुस्कान पैदा की है, क्योंकि ये कॉमिक्स और हास्य लेखन के लिए मशहूर हैं।
1: Yes, he has received many awards and honors, and after 36 years, his students have established a foundation in 2011 for literary and educational activities. He's also written a biography, Raman Bhai Nilkant.
2: Shri Kumar Bose कला तबला।
0: कुमार बोस तबले में एक बहुत बड़ा नाम है। आप 4 अप्रैल 1954 को जन्मे थे और पिता विश्वनाथ बोस से सीखा, लेकिन बाद में ये पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के भी शागिर्द रहे।
1: श्री बोस इज क्वाइट डिग्निटी, एथिकल इंटेग्रिटी एंड अनवेवरिंग कमिटमेंट टू क्लासिकल वैल्यूज हैव अर्नड हिम टॉप ग्रेड स्टेटस इन ऑल इंडिया रेडियो, द संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एंड पंडित दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, अलोंग विद इमेंस रिस्पेक्ट फॉर द आर्टिस्ट।
2: जनार्दन बापूराव बोथे समाज सेवा।
0: मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता हैं बोथे जी, 77 साल के हैं, और पूज्य राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज द्वारा स्थापित पवित्र गुरुकुंज आश्रम में आप सेवा दे रहे हैं।
1: श्री बोथ एकंपनीड राष्ट्र संत श्री तुकड़ोजी महाराज ऑन सिग्निफिकेंट विजिट्स अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग गोवा राष्ट्रपति भवन मेजर कुंभ मेलास साधु सम्मेलन एंड द फाउंडिंग मीटिंग ऑफ संस्था ऑफ द विश्व हिंदू परिषद इन मुंबई. He has also served as full-time personal secretary
2: Swami Brahmadev Samaj Seva.
0: Swami Brahmadev, 82 साल के हैं आप, श्रद्धे हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर से आते हैं और आपने राष्ट्र के कई अंचलों में आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया है और समाज की सेवा भी की है.
1: And during spiritual practice while completing bachelor degree at college in Amritsar, which was adjacent to a blind school, being compassionate with blind children, he decided to dedicate his life for upliftment of specially abled children. Swami Brahmadev.
0: Kesariya rang ka aapne saafa pehna hai aur kesariya hi paridhan hai. Rashtrapati ji ke samne unhe abhivadan karte hue jis tan Padma Shri se sammanit hota hai.
2: श्री प्रोसेनजीत चैटर्जी, कला फिल्म अभिनय.
0: प्रोसेनजीत चैटर्जी इन्हें गुम्बा दा नाम से ज्यादा जानते हैं और भारतीय सिनेमा की एक अनूठी पहचान इन्होंने बनाई है और खास तौर पर बंगाली सिनेमा में आपने बहुत काम किया है और दूसर के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है.
1: इन द डिजिटल एरा श्री चैटर्जी सक्सेसफुली रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ थ्रू हिंदी स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स लाइक जुबली स्कूप एंड खाकी.
2: श्रीमती देवकी अम्मा जी समाज सेवा.
0: वन उत्पादक हैं आप, 82 साल की हैं लेकिन रुकी नहीं है, वन दादी नाम से जानी जाती है. 3000 से ज्यादा पेड़ों और स्वदेशी औषधियों और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को बचाने का काम आपने किया है और केरल के अल्लुपुआ से आती हैं.
1: श्रीमती देवकी अम्मा रिलाइड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ सोइल एंड क्लाइमेट कंडीशंस फॉर ग्रोइंग प्लांट सैपलिंग्स एंड यूज्ड मल्चिंग ऑर्गेनिक मैन्योरिंग फ्रॉम होम कैटल केयरफुल रिटेंशन ऑफ लीफ लिटर एंड थॉटफुल वाटर मैनेजमेंट. She was also conferred the Nari Shakti Puraskar in 2018.
0: People,
2: Dr. Ramchand Godbole evam Shrimati Sunita Godbole, Chikitsa.
0: Dr. Ramchand Godbole aur unke saath Sunita Godbole, aap ek
2: Dr. Ramchand Godbole.
0: छियासठ साल के हैं और आदिवासी समुदायों के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ में आपने बहुत काम किया है.
1: In 1990, soon after their marriage, Dr. Godbole and his wife, Shrimati Sunita Godbole, decided to move to Bastar to serve tribal communities medically.
2: Shrimati Sunita Godbole.
0: ये भी कितना गौरव का क्षण है. उनके साथ आ रही हैं सुनीता गोडबोले. एक साथ दोनों को पद्मश्री मिलता हुआ. आपने भी समाज के लिए बहुत कार्य किया है और खास तौर पर अपने पति डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले के साथ महाराष्ट्र में 12 साल और छत्तीसगढ़ में 30 सालों से आपने सेवा की है.
2: श्री पेची गोबिंद समाज सेवा.
0: अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और वास्तुकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं. आपने बहुत ही कार्य किए वहाँ पर और पारंपरिक अरुणाचली परिधान पहनकर जिसमें सिर पर पंख भी है हॉर्नबिल का नमस्कार करते हुए पेची गोबिंद 62 वर्षीय पद्मश्री प्राप्त करते हुए.
1: श्री गोविंद ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड द सीमांत दर्शन यात्रा इन 2010 एंड 2021 विजिटिंग रिमोट विलेजेस बॉर्डरिंग चाइना म्यांमार एंड भूटान. ही आल्सो लेड अ टीम ऑफ डेलीगेशंस टू मीट द वाइस प्रेसिडेंट टू रिपोर्ट.
2: डॉक्टर एच वी हांडे चिकित्सा.
0: 99 साल के हैं आप और ध्यान रखिए 99 वर्षों से इस शख्स ने भारत की सेवा की है. मशहूर चिकित्सक हैं और साथ में राजनीतिज्ञ भी हैं लेकिन इन सब के अलावा डॉक्टर हंडे ने संपूर्ण कंब रामायण जो कि तमिल में है मूल रूप से उसका अंग्रेजी गद्य में अनुवाद भी किया है. राष्ट्रपति जी के ADC उनका हाथ पकड़ कर ले जाते हुए उन्होंने हल्के हरे रंग का जैकेट पहना है और राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए आगे अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जाते हुए.
1: While Dr. Hande was the health minister of Tamil Nadu between 1980 and 1986, he brought the state into the first slot consecutively for 3 years in

0: reduces infant mortality rate and maternal mortality rate in drastically reducing the incidence of leprosy and other communicable diseases. Thereafter, he received the prestigious Dr. P.P. Roy
1: Award. Shri Ghafruddin Mevati Jogi, Kala, Bhapang Vadan.
2: राजस्थान में अलवर से गफरुद्दीन जी आते हैं. इन्होंने राजस्थानी काफा पहना है, नमस्कार करते हुए जाते हुए जोगी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और भपंग बजाते हैं, जिसे महादेव का वाद्य कहते हैं, और खास तौर पर महाभारत और कृष्ण लीला अली बख्शी परंपरा जैसी कथाओं का वाचन करते हैं.
0: When through his sustained artistic practice, Shri Ghafruddin has contributed significantly to the preservation of nearly 20 endangered folk musical instruments and oral narrative traditions. His work has supported academic research into PhD-level
1: Shri Mir Hazi Qasim, Kala Dholak.
2: 75 साल के मीर हाजी कासम, इन्हें हाजी रामकडू नाम से बुलाते हैं, आप जूनागढ़ के एक महान और मशहूर लोक संगीतकार हैं. 75 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने पूरा जीवन गुजरात के पारंपरिक संगीत को समर्पित किया है और खास तौर पर बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं.
0: श्री कासम हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन कैरिंग गुजराती फोक म्यूजिक टू ग्लोबल ऑडियंसेस, परफॉर्मिंग अक्रॉस कंट्रीज सच एज द यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, कनाडा, यूएई, ओमान एंड सेवरल अदर्स. ही हैज आल्सो रिसीव्ड मेनी स्टेट लेवल ऑनर्स, including the Gujarat Gaurav Puraskar, Gujarat Rajya Sangeet Natak Academy Award, Gujarat Lokala Rashtriya
1: Puraskar. Shri Raghuveer Khedkar, Kala Theatre.
2: Raghuveer Khedkar ko Maharashtra ke log achhi tarah jante hain. Aap ek mashhoor tamasha kalakar hain aur tamasha ki ek mandali bhi chalate hain aur lok kala aur khaas taur par Marathi lok kala ko sanrakshit karne ke liye katibaddh hain.
0: During the COVID-19 pandemic, when public performances halted and many artists faced hunger and unemployment, Shri Khedkar stood up as a staunch advocate. He led appeals for financial support and leveraged solace and solidarity for folk artists.
1: Shri R. Krishnan Kitna Mannoprant, Kala Kurumba Tribal Painting, Unki Patni Srimati Sushila Krishnan.
2: आर कृष्ण किटना, जिनका 20 मार्च 2025 को निधन हो गया था, आप तमिलनाडु से आते हैं और बचपन से ही चित्रकारी करते आए थे और दीवारों पर इन्होंने बहुत चित्र बनाए. सुशीला कृष्णन, उनकी पत्नी, पद्मश्री प्राप्त करती हुई.
0: श्री आर कृष्णन किटना इज नोन फॉर यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स इन हिज आर्ट फॉर्म एंड हिज स्किल्स एज अ स्टोरी टेलर.
1: प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच, कला म्यूजिकोलॉजी.
2: एथनो म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं आप, बंगाल से प्रेम करते हैं और खास तौर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ इनका एक आत्मिक संबंध है. बॉन में टैगोर इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से भी जुड़े रहे.
0: प्रोफेसर कोच इज डायरेक्टर ऑफ द स्टेट एथनोग्राफिक कलेक्शन इन द स्टेट आर्ट कलेक्शन सेक्टोनिया इन ड्रेसडन जर्मनी सिंस अक्टूबर 2025.
1: प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार, साहित्य एवं शिक्षा.
2: 66 वर्षीय जगदीश कुमार, आपने एनसीईआरटी में बहुत काम किया है, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद है और राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है.
0: वेल प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार framed and operationalized models under NEP 2020 and the four-year undergraduate program with flexible structure and the academic bank of credits.
1: Shri Praveen Kumar, Khel Athletics Divyang.
2: Rabbari, this is the first year Khiladi ki T44 Uchi Kood mein Vishu mein aap number one hai और पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पैरा एथलीट हैं प्रवीण कुमार.
0: श्री प्रवीण कुमार वेंट ऑन टू क्लेम गोल्ड एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड ग्रैंड प्री विद अ लीप ऑफ 2.05 मीटर, सेटिंग एन एशियन रिकॉर्ड. एट टोक्यो पैरालंपिक्स ही वन अ सिल्वर मेडल.
1: श्री के विजय कुमार, सिविल सेवा.
2: विजय कुमार जी सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक रहे हैं और संकटपूर्ण मिशनों में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
0: एज कमिश्नर ऑफ चेन्नई, श्री के विजय कुमार रिफॉर्म्ड क्राइम कंट्रोल प्रैक्टिसेस, क्रैक डाउन ऑन ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स एंड एनहांस्ड पब्लिक

0: safety and reduce road fatalities by 40%. As additional DG Law and Order, he strengthened public safety.
1: Devba Lad, Dada Lad, Krishi.
2: Devba Lad, Kisani Kheti Karte Hain. और ग्रामीण विकास और स्थायी कृषि और सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया है। परभणी जिले के मालसोना गांव में आप जन्म हैं, 79 वर्ष के हैं।
0: श्री रंग देवा लार इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी इन कॉटन कल्टीवेशन व्हिच वाज यूज्ड बाय फार्मर्स इन ऑल कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ही हैड डन रिसर्च वर्क इन जवार एंड तूर एज वेल।
1: श्री अंके गौड़ा एम, समाज सेवा।
2: 77 साल के अंके गौड़ा अब माननीय राष्ट्रपति जी से अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए जाते हुए आपने अपना पूरा जीवन पुस्तकों के संरक्षण, संग्रह और उसे लोगों तक पहुंचाने में दे दिया है।
0: श्री अंके गौड़ा जी हैज पर्सनली कलेक्टेड मोर देन 20 लाख बुक्स ओवर द लास्ट 50 ईयर्स यूजिंग हिज इंटायर पर्सनल अर्निंग फॉर दिस पर्पज and his collection includes books in Kannada, English, Hindi, Tamil, Telugu and several other Indian languages and diverse subjects such as literature, history, art, culture and philosophy.
1: Professor Dr. Saroj Mandal, Chikitsa Cardiology.
2: 69-year-old Dr. Mandal, interventional cardiologist. आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की खूब सेवा की है।
0: Professor Dr. Mandal has served over 6 lakh patients in OPD over 35 years and independently performed and supervised 50,000 coronary angiograms and 50,000 angioplasties.
1: Professor Buddh Rashmi Mani, Puratattva Vigyan.
2: Bharatiya Puratattva Vigyan ke ek mahatvapurna hastakshar Professor Buddh Rashmi Mani, Rashtriya Sangrahalaya ke महानिदेशक भी आप रहे हैं और कहां कहां उत्खनन इन्होंने नहीं किया हमारी सभ्यता के अवशेष खोजने में।
0: While working in the archaeological survey of India, Professor Mani conserved about 150 centrally protected monuments in Maharashtra, Goa, Delhi and Jammu and Kashmir and discovered 200 archaeological sites and he directed 20 expeditions.
1: Shri Nilesh Vinod Chandra Mandlewala, Samaj Seva.
2: ऑर्गन मैन के रूप में जाने जाते हैं और डोनेट लाइफ संस्थान के रूप में इन्होंने बहुत कार्य किया है, खास तौर पर गुजरात और भारत में शव अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई है।
0: श्री मांडलेवाला, he has a long term vision that by 2047 no citizen should lose life because of the non availability of organs. For that he has traveled extensively across India.
1: डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र, साहित्य एवं शिक्षा।
2: लुप्त प्राय जनजातीय आवाजों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाजों को संरक्षण करने में 4 दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने।
0: इंटरनेशनली डॉक्टर मिश्र हैज एडवाइज्ड नेपाल्स एमएलए पॉलिसी, लेक्चर्ड एट चाइनाज कैस, हानयांग यूनिवर्सिटी, साउथ कोरिया, थाईलैंड, महिडोल यूनिवर्सिटी एंड रशियाज एकेडमी ऑफ साइंसेज।
1: श्रीमती तृप्ति मुखर्जी, कला कंथा एम्ब्रॉयडरी।
2: कंथा ऐसी कढ़ाई है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने में, उसे नए स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत योगदान रहा है।
0: श्रीमती मुखर्जी इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स सच एज द नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट इन 2010 एंड शिल्प गुरु अवार्ड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शी हैज आल्सो बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल by conferring on her the Bangashri Award.
1: Hari Madhav Mukhopadhyay, Kala Theatre, unke putra Shri Krishnendu Mukhopadhyay.
2: आप मशहूर थिएटर निर्देशक, नाटककार और अभिनेता थे। 85 वर्ष की उम्र में 17 मार्च 2025 को आपका निधन हो गया। उनकी बिहाफ पर पद्मश्री प्राप्त करने जाती हुई कृष्णेंदु उपाध्याय मुखोपाध्याय।
0: श्री मुखोपाध्याय
1: श्री सत्य नारायण नंदलाल नुवाल, व्यापार एवं उद्योग।
2: 74 वर्षीय नुवाल सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से।
0: अंडर श्री नुवाल्स लीडरशिप सोलर बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर

0: He also founded the Mamalan Silambaman Folk Art Development Club in Pondicherry. He has also trained youth who were interested in Silambam.
1: Shri Dharnik Lal Sunilal Pandya, Kala Man Akhyan.
2: 94 वर्ष के हैं आप, धार्मिक लाल चुनीलाल पंड्या, और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं। आपने पगड़ी पहनी है और व्हील चेयर पर जाते हुए राष्ट्रपति जी खुद अपने आसपास आकर श्री पंड्या का सम्मान।
0: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
1: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya Evam Shiksha.
2: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत, मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया है।
0: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly Jan Dharam from November 1988 as Secretary of Madhya Pradesh Rashtra Bhasha Prachar Samiti. He revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine, Akshara.
2: Rashtrapati ji swam ek seedhi utar ke niche aati hui aur Pant ji, jo ki 90 saal ke hain, unka samman karti hui aur ye kartal dhwani is baat ka prateek ki rashtra ऐसे सेवकों का ऋणी है।
0: His work earned him the विश्व हिंदी सम्मान।
1: श्री गरी मेला बाल कृष्ण प्रसाद मरणोपरांत कला गायन, उनके पुत्र श्री गरी मेला अनिला कुमार।
2: अनिला कुमार उनके ब्याह पर लेगी ये पुरस्कार। गली मेला बाल कृष्ण प्रसाद 78 वर्ष की उम्र में ये देह तो छोड़ गए, लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए। प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप।
0: Over a career spanning 6 decades, Shri Prasad presented more than 6,000 concerts across India and internationally.
1: Professor Dr. Rajendra Prasad, Chikitsa, Tuberculosis.
2: क्षेत्रवर्षीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन है और क्षय रोग और खास तौर पर क्षय रोगियों की देखभाल और उनकी चिकित्सा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है।
0: प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद वाज द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश द एसोसिएशन ऑफ बीडी स्मोकिंग एंड द यूज ऑफ बायोमास फ्यूल स्मोक विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर। He has worked on 35 research projects and supervised 185 MD, MS and DM.
1: Dr. Gunduru Venkat Rao, Chikitsa, Gastroenterology.
2: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्षीय वेंकट राव एक प्रमुख सर्जरी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है।
0: Well, he has performed more than 12,000 complex gastrointestinal surgeries and nearly 16,000 advanced endoscopic procedures. He has also
1: Shrimati Deepika Reddy, Kala Nritya.
2: 60 वर्षीय दीपिका रेड्डी एक मशहूर कलाकार है, कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है। शास्त्रीय नर्तकों की तीन पीढ़ियों से आप ताल्लुक रखती हैं।
0: श्रीमती रेड्डी वाज द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी, गवर्निंग काउंसिल मेंबर संगीत नाटक अकादमी दिल्ली एंड हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड लाइक संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड मेनी मोर।
1: डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी, चिकित्सा ऑन्कोलॉजी।
2: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी। 67 साल के हैं और आप मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है।
0: Well, Dr. Reddy has delivered over 921 CME lectures, offered 112 plus publications, and organized numerous international conferences to bring cutting-edge technology to Indian practitioners. His advocacy efforts
1: Shri Hari Charan Shaikia, Kala Satriya Nitya.
2: Satriya, Assam ki ek suprasiddh kala. Aur हरिचरण शैकिया जी, जो कि 94 वर्ष के हैं, व्हील चेयर पर जाते हुए आपने इस कला का न सिर्फ संरक्षण किया है बल्कि इसे लोगों तक भी पहुंचाया है और

0: बहुत सारे लोगों को सक्रिय कला का प्रशिक्षण भी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए राष्ट्रपति जी आकर उन्हें पद्मश्री प्रदान करती हैं।
1: श्री हरिचरण सैकिया परफॉर्म सत्रिया डांस बिफोर इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑल्सो ही परफॉर्म द बरगीत विद मणिराम गायन मोक्तर एट ऑल इंडिया रेडियो इन 1948।
2: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री,
0: 86 साल के शास्त्री जी,
2: साहित्य एवं शिक्षा
0: विद्वानों में से हैं। आपने अद्वैत वेदांत दर्शन और संस्कृत काव्य शास्त्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। नमस्कार करते हुए, अभिवादन करते हुए अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का, और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हैं।
1: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री has authored and edited 15 books and more than 50 research papers. He has also guided numerous doctoral scholars and delivered hundreds of lectures.
2: Professor Shafi Shauk, Sahitya evam Shiksha.
0: 100 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं, और कश्मीरी, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है, प्रोफेसर शफी शौक।
1: His translations include his series of books under the title The Best of Kashmiri Literature. He has also written scripts for numerous TV serials and films.
2: Shri Baldev Singh Khel, hockey coach.
0: Baldev Singh ji ne bahut sare hockey khiladi is rashtra ko diye hain. Ek anubhavi coach hai aur aaj inhe milta hua Padma Shri aur ye taaliyan is baat ka praman ki unka kitna bada contribution raha.
1: Shri Baldev Singh ji is widely recognized for developing the Shahbad Markanda Hockey Nursery to one of India's most productive centers for hockey talent.
2: Shri Yumnam Jatra Singh Marnopran, Kala Nat Sankirtan, unke putra Shri Yumnam Bishan Bhor Singh.
0: Aap Manipur ke paramparik vaishnav nritya aur sangeet ke pratishthit pratipadak the aur bite varsh 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे, सम्मानित होते हुए युवनाम जात्रा सिंह मरणोपरांत।
1: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
2: Dr. Ashok Kumar Singh, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग।
0: अशोक जी ने भारत में बासमती चावल की खेती का कायाकल्प करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और इस कंट्रीब्यूशन के लिए आज राष्ट्र उन्हें सम्मान दे रहा है पद्मश्री का।
1: डॉक्टर सिंह हैज गाइडेड 34 पीएचडी एंड 5 एमएससी स्टूडेंट्स मेकिंग सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मेंटरिंग न्यूमरस यंग प्रोफेशनल्स।
2: श्रीमती शिव शंकरी, साहित्य एवं शिक्षा।
0: अब बारी श्रीमती शिव शंकरी जी की। आप 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में इन्होंने बहुत कार्य किया है, और खास तौर पर लेखन में सभी भाषाओं में, खासतौर तमिल में बहुत सारा इन्होंने लिखा है। 30 से ज्यादा उपन्यास, 40 से ज्यादा लघु उपन्यास, 100 से ज्यादा लघु कथाएं, 16 यात्रा वृत्तांत बहुत लिखा है।
1: Shrimati Shiv Shankari completed her Bachelor of Science degree as a university rank holder, reflecting her early academic excellence. She was also selected as the Woman of the Year 2000 by the International Women's Association. She was also one of the four writers who were recorded in her own voice for the archives of the U.S. Library of Congress.
2: Dr. R. Sridhar, Community Radio.
0: श्रीधर जी आकाशवाणी के उप महानिदेशक रहे, और विज्ञान का एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज्यादा बड़ा सीरियल था, विज्ञान सीरियल।
1: डॉक्टर श्रीधर इन एसोसिएशन विद द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप द लॉन्गेस्ट रेडियो साइंस सीरियल फॉर चिल्ड्रन टाइटल्ड द ह्यूमन एवोल्यूशन, मानव का विकास, broadcast in 18 Indian languages simultaneously to 200 radio stations. He has also played a central role in launching Gyan Darshan group of channels, the first 24-hour educational television channel.
2: Professor Shyam Sundar, Chikitsa Kala Azar.
0: आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेडिसिन के मानद प्रोफेसर हैं। संक्रामक रोगों खासतौर पर विसरल लिशमैनियासिस कालाजार में आपने बहुत कार्य किया है।
1: Professor Sundar is ranked at the top in the world in the field of leishmaniasis and kalaazar from the year 2013 to date. He has published extensively in academic journals including NEJM and
2: Dr. S. G. Sushil Amma, Samaj Seva.
0: 24 मई 1939 को आप कर्नाटक में जन्मी हैं और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और खास तौर पर अपने सेवा आश्रम के जरिए बहुत समाज सेवा का आपने कार्य किया है। 5 दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी, 5 दशक से ज्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाती हुई और सफेद साड़ी इन्होंने पहनी है और झुककर अभिवादन करती हुई माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करती हुई।
1: Dr. Sushil Amma has also implemented extensive rural development and women empowerment programs across Karnataka, including adult literacy campaigns, formation of self-help groups and Mahila Mandals, and vocational and entrepreneurship training, microcredit initiatives, and panchayat leadership development. She has also worked closely with tribal communities through sustainable agriculture and livelihood projects.
2: Shri N. Swaminathan, Kala Bhakti Sangeet.
0: Tanjavur se aate hain aur Tamil Sangeet ke kshetra ke pratishthit kalakar hain aur aapne Tamil bhasha mein Bhagwan Shiv ke bhajanon ka paramparik ek pramanik bhajan sangrah bhi nikala hai.
1: He became a master of the art and served as authorer in many temples of Tamil Nadu and later worked at Tiruthani Lord Murugan Temple for nearly 26 years. He has served as a teacher in VS Trust, a charitable trust to Lord Nataraja Temple in Chidambaram.
2: Dr. Keval Krishna Thakral, Chikitsa Ayurved.
0: Dr. Thakral, Ayurvedic Padhati ke Shali Chikitsak hain aur Bharat mein Kshar Sutra Chikitsa ke madhyam se कई रोगों के उपचार और खासकर ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार के लिए इन्होंने एक लघु शल्य प्रक्रिया कर्म वेदन की आगे बढ़ाई है।
1: डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल मूव टू सैन फ्रांसिस्को यूएसए इन 1976 एज अ रिसर्च सर्जन। ही हैज बीन इनवाइटेड टू ओवर 80 सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस टू शेयर हिज नॉलेज एंड हिज प्रोफाइल हैज बीन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आल्सो।
2: डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उनके पुत्र श्री रमन कुमार त्रिवेदी।
0: ज्यादा दिन नहीं हुए, 12 मई को ही आपका निधन हो गया था। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी एक कृषि वैज्ञानिक थे और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं। पुरस्कार प्राप्त करते हुए इनके पुत्र रमन कुमार त्रिवेदी।
1: डॉक्टर त्रिवेदी सिंस द लास्ट 5 years ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल इनिशिएटेड अ प्रोग्राम टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ नेम।
2: श्री अरविंद वैद्य कला थिएटर
0: वरिष्ठ कलाकार हैं और 6 दशकों से ज्यादा समय से आपने गुजराती रंगमंच हिंदी टेलीविजन और फिल्मों के क्षेत्र में काम किया है।
1: श्री वैद्य
0: काले रंग का जोधपुरी सूट पहना हुआ है।
1: Shri Vaidya founded the Natya Sampada, his own production company, through which he produced, directed and acted in more than 75 full-length plays. Each work carried the quiet weight of dedication, gathering recognition along the way. In 1993, Mumbai beckoned him and opened a wider horizon. He's multilingual and
2: Professor
1: very adaptable.
2: Jujal Vasi, Vigyan Evam Engineering.
0: Professor Jujal Vasi, IIT बॉम्बे में प्रोफेसर एमेरिटस हैं और आपने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर और सोलर फोटोवोल्टिक्स क्षेत्रों में बहुत कार्य किया है।
1: प्रोफेसर वासी थ्रू आउट हिज करियर इन बोथ सेमीकंडक्टर्स एंड सोलर फोटोवोल्टिक्स ही स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव एंड इंक्लूसिव रिसर्च व्हिच ही थॉट वाज नेसेसरी स्पेशली ऑन मेजर नेशनल मिशन। He has published about 200 papers in leading journals.
2: Dr. Narayan Vyas, पुरातत्व विज्ञान।
0: डॉक्टर नारायण व्यास विश्व के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविदों में से एक है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका और सांची और गुजरात के रानी दीदी वाव सीढ़ी कुआं के योगदान में आपने बहुत ही योगदान दिया है।
1: Dr. Vyas was associated with the National Archives of Indian Historical Record Committee, Domain Expert Member in National Screening and Evaluation Committee. He was awarded the prestigious Dr. Vishnu Sridhar Vakankar Award from the Government of Madhya Pradesh in
2: 2019. Gambhir Singh Yonzan, Sahitya Evam Shiksha.
0: Gambhir Singh Ji, Darjeeling पहाड़ियों के एक प्रतिष्ठित वनस्पति शास्त्री, शिक्षाविद, पर्यावरणविद और संस्थान के निर्माता हैं और खास तौर पर वनस्पति विज्ञान में आपने बहुत कार्य किया है।
1: प्रोफेसर योनजोन्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ऑफ दार्जिलिंग हिल रीजन आर पायनियरिंग एंड फार रीचिंग। अ पैशनेट एडवोकेट ऑफ साइंटिफिक टेंपर एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ही लेड अ सिक्स ईयर कंजर्वेशन मूवमेंट दैट वाज अ ह्यूज ह्यूज सक्सेस।
2: श्री हैली वार, समाज सेवा।
0: और अब बारी हैली वार जी की। आप पर्यावरणविद और खासी लोगों के स्वदेशी ज्ञान के लिए एक प्रतिष्ठित नाम हैं।
1: श्री वार हैज स्पेंट मोर देन 50 इयर्स नर्चरिंग एंड बिल्डिंग द आइकॉनिक लिविंग रूट ब्रिजेस ऑफ द ईस्ट खासी हिल्स। Since the age of 10, he has meticulously guided the aerial roots of the Ficus elastica tree to create durable living structures. His most celebrated work, the Omkar Living Root Bridge, stands as a testament to his patience and profound understanding of natural ecosystems.
0: And now, Sachi Mohdey aate hue, kyunki ye antim samman tha aaj ka, और
2: माननीय राष्ट्रपति महोदय आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। धन्यवाद।

0: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। शाम के 5:00
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। स्थानीय सूचनाएं एवं कार्यक्रम विवरण, आइए डालते हैं एक नज़र हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज की शेष तथा कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं उनके प्रसारण समयों पर। अब से थोड़ी देर बाद शाम 6:00 ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित आप हमारा दैनिक कार्यक्रम सुनेंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी। शाम 7:10 पर लोकगीतों के कार्यक्रम में आज गायक कलाकार होंगे विश्वनाथ ठाकुर। शाम 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में गायक कलाकार होंगे अनिल कुमार आनंद। 8:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीकंधा। 8:15 पर खेल गतिविधियों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम होगा खेल खिलाड़ी। प्रस्तुतकर्ता होंगे मोहम्मद सरशार अहमद। रात्रि 9:30 कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का अनुप्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से करेंगे। रात 10:00 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे अमजद अली खां का सितार वादन राग कल्याण एवं राग झिंझोटी में। और रात 10:30 हम आपके लिए लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब कुछ जानकारियां कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होगी प्रातः 5:48 पर। 5:55 पर खेत खलिहान कार्यक्रम में किसान श्रोता सुनते हैं सामयिक कृषि वार्ता। प्रातः 6:05 का समय है दैनिक चिंतन मनन के लिए। 6:10 पर होता है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। 6:35 पर कल स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर रूबी कुमारी रेड्डी से की गई भेंटवार्ता, विषय होगा दांतों में खोड़ला। आपसे बातचीत करेंगे श्रीनिवास सहाय। 6:40 पर रामचरितमानस गान की क्रमिक कड़ी सुनवाई जाएगी। प्रातः 7:00 से 7:55 तक आप सुनते हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसमें प्रातः 7:00 सुगम संगीत के कार्यक्रम रसरंग में गायक कलाकार होंगे अनिल कुमार आनंद। 7:20 पर स्मृति संवाद कार्यक्रम में अपने बीते दिनों की स्मृतियां हमसे साझा करेंगे गोपाल चंद्र सिन्हा। आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर विजय कुमार मिश्र। 7:30 पर होगा फिल्म संगीत। 9:06 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा नगमे नए पुराने। 9:30 पर आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक उर्दू कार्यक्रम बज़्मे उर्दू। प्रस्तुतकर्ता होंगे मोहम्मद सरशार अहमद। 10:30 पर लोकगीतों के कार्यक्रम में गायक कलाकार होंगे गौतम कुमार मंडल। 11:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा नई फिल्मों से। 11:30 पर कंपेयरिंग आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनते हैं गुलदस्ता। 12:00 महिला श्रोताओं का अपना कार्यक्रम होता है नारी लोक। 12:30 पर NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा उमंग। दिन के 1:00 लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग में कल गायक कलाकार होंगे जयप्रकाश शर्मा। 1:30 कल आप सुनेंगे रूपक गंग सकल मुदमंगल मूला। लेखक होंगे रणेंद्र किशोर एवं प्रस्तुतकर्ता होंगे निहार रंजन नाग। 2:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट से। 3:00 तरंग कार्यक्रम में फनकार होंगे चंदन दास। 3:20 पर आप हर रोज सुनते हैं समूह स्वर में देशभक्ति गीत। और 3:25 से विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा का अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। शाम 5:00 हम आपकी सेवा में एक बार फिर उपस्थित होंगे लेकर युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी। शाम 5:30 पर होगा फिल्म संगीत। शाम 6:00 ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित आप हमारा दैनिक कार्यक्रम सुनते हैं ग्राम जगत खेती गृहस्थी। शाम 7:10 पर कल हमारा पर्यावरण कार्यक्रम में आप सुनेंगे अजीत कुमार की वार्ता, विषय होगा स्वच्छ पर्यावरण नई पीढ़ी के लिए उपहार। शाम 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में गायिका होंगी अनुपमा कुमारी। 8:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। 9:30 आप सुनेंगे नाटक बदलता गांव। 10:00 क्षेत्रीय लोक गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम होगा गूंजे बिहार। और 10:30 हम आपके लिए लेकर आएंगे भावों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भावगीत। कार्यक्रम विवरण में अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज की शेष तथा कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं उनके प्रसारण समयों की जानकारियां प्राप्त कर रहे थे। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। शाम के 6:00 हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी।

0: ग्राम जगत खेती गृहस्थी सुने वाला सब श्रोता भाई बहनी का मनो के नमस्कार आरो अपनों के नमस्कार हो आरो बहन
1: सभी को आरो का भी नमस्कार आपको भी मनो भाई नमस्कार
0: आरो की हाल समाचार है आरो बहन
1: सब बढ़िया है मनो भाई और आज से तो नौ तपा बोलते हैं जो नौ दिन बहुत गर्म होने वाला है
0: जी जी
1: वो शुरू हो गया है तो श्रोता भाइयों से आग्रह है कि जब भी घर से बाहर निकले तो पानी पी के निकले शरीर को ढक के रख निकले जो गर्मी से बचने का या लू से बचने का जो भी उपाय होता है
0: जी जी।
1: वो सारा करें क्योंकि स्वास्थ्य है स्वास्थ्य ही धन है और
0: है
1: अगर आप स्वस्थ हैं तो ही आप जीवन का आनंद ले सकते हैं।
0: नौतपा होले मना लगे जे कि मौसम विभाग रो को मना चेतावनी छे ना
1: नहीं मन्नो भाई यह अभी जो सूर्य देव हैं वो अभी चंद्रमा के नक्षत्र में रोहिणी में प्रवेश किए हैं
0: हाँ हाँ।
1: और इस वजह से जो दिन है अभी विशेषतः मध्य भारत में और ये उत्तर भारत में
0: जी
1: वो
0: जी।
1: बहुत गर्म रहने वाला है
0: अच्छा।
1: और ये चीजें जो है ना ये मानसून से भी बहुत रिलेटेड है मानसून से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि ये नौ दिन जितना ही गर्म होगा और तो गर्म हवा बहुत गर्म हो के हल्की हो के ऊपर उठती है तो बारिश भी इसकी वजह से होता है। तो एक तरह से ये हमारे जीवन के लिए जो नौ दिन होने वाले वो अस्त व्यस्त होंगे क्योंकि बहुत गर्मी पड़ने वाली है
0: हाँ हाँ।
1: लेकिन यह कहीं ना कहीं हमारे कृषि के लिए या मानसून के लिए
0: हाँ हाँ।
1: वो अच्छा होता है
0: ना कि गर्म हवा छे भाई एकरा से मानसून है तो बढ़िया बात छे कहना कि अपनो देश के जो कृषि छे हो मानसून आधारित छे
1: बिल्कुल
0: वर्षा बढ़िया होते तो यो बात बढ़िया छे लेकिन भाई बहन देखो कि है गर्मी से भी बची के रहना छे कहना उमस छे और ओकरा में ढेर तरह से मौसम जनित जे छे गर्मी से बीमारी भी होय छे ये वास्ते सावधान से रहना चाहिए। देखो स्वास्थ्य छो त धन छो
1: बिल्कुल
0: आरो स्वास्थ्य देखो आरो बहन कि केवल खान पान से ही नहीं खेलकूद से भी हो छे कि नहीं

0: हाँ, खेलकूदसँ पहिने जे कहावत छलै कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, आ खेलकूदसँ खराब होइ जेबो, लेकिन है बात अब जे छै थोड़ा
1: गलत
0: मना,
1: लगता है
0: हाँ
1: जी।
0: थोड़ा एकरामे सुधार होलै कि खेलना कूदना भी जरूरी छै। देखो कहलो जैसे कि विवेकानंद जी ने भी कहलकै कि गीता पढ़ने से अच्छा है पहले अपने फील्ड में जाकर फुटबॉल खेलो,
1: बिल्कुल
0: कहना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क के निवास भी होइ छै।
1: जी मनु भाई,
0: आरो देखो कि फुटबॉल जे खेल छौ ये बड़ा ही एक अच्छा खेल छै, जकरा कि पूरा शरीर के व्यायाम होइ छै, आरो दर्शक वास्ता भी है बड़ा ही एक रोमांचकारी खेल छिके,
1: बिल्कुल
0: छै कि
1: मन्नू
0: नहीं?
1: भाई। और जैसे अभी आपने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना चाहिए, इसी तरह एक किसी ने कहा है कि मन को अगर ठीक करना है तो
0: जी जी
1: शांत रहिए,
0: शांत
1: और
0: रहिए।
1: तन को अगर ठीक करना है तो खेलकूद कीजिए, उसमें
0: अच्छा,
1: एक्टिविटीज़
0: हाँ
1: मतलब
0: हाँ
1: जितना
0: हाँ
1: आप काम कर सकते हैं खेलिए और बाहर जाइए कसरत कीजिए,
0: जी
1: तो
0: जी
1: कहीं ना कहीं स्वस्थ रहने के लिए, और जैसे कि शरीर और मन दोनों एक दूसरे से
0: एकदम
1: इंटर
0: जुड़लो
1: जुड़ा
0: छे।
1: हुआ है, तो खेलकूद हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और
0: हाँ
1: एक बहुत अनिवार्य हिस्सा है,
0: जी
1: और
0: जी
1: ये ना केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं मन्नू भाई, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों,
0: जी
1: देशों और समुदायों को एक सूत्र में पिरोने का काम भी करते
0: एकदम
1: हैं।
0: सही।
1: और जैसे कि आज हम लोग 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मना रहे हैं
0: अच्छा, आई 20 फुटबॉल दिवस भी छेकम।
1: जी,
0: अच्छा
1: वैसे
0: अच्छा
1: तो मन्नू भाई दुनिया में अनगिनत खेल खेले जाते हैं, लेकिन जो लोकप्रियता और दीवानगी फुटबॉल के से आई है उसकी
0: जी
1: तुलना
0: जी
1: किसी अन्य खेल से नहीं की जा सकती।
0: ज्यादातर लेकिन लोकप्रिय क्रिकेट ही देखा है और बहन।
1: बिल्कुल, हमारे देश में तो क्रिकेट बहुत महत्वपूर्ण माना, लेकिन हमारे देश में क्रिकेट के अलावा भी फुटबॉल प्रेमी का भी एक अलग, एक कह सकते हैं
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: समुदाय है।
0: नहीं, खेल विशेषज्ञ ने भी मानै छै कि फुटबॉल जे छै संपूर्ण शरीर के व्यायाम करै छै, आ क्रिकेट से हाथ के ज्यादा व्यायाम होता है तो फुटबॉल से पैर के, कने एकरा किक मारै छै बॉल के, आरो
1: जी
0: पूरा शरीर जे छै एकरा उछलै छै, पूरा शरीर रो व्यायाम होइ छै, तो स्वास्थ्य वास्ते अति उत्तम खेल छिके फुटबॉल।
1: जी
0: आरो अपने जेना कहलो कि है जे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल छै, आरो है जे आज 25 मई के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनेलो जाइ छै, एकरो शुरुआत जे होलै
1: जी
0: कहै छै कि 2024 में इतिहास में पहलो बार जे छै अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के 100वीं वर्षगांठ मनेलो गेलै, जकरामे कि सभी क्षेत्र के प्रतिनिधि ने भाग लेलकै,
1: जी
0: आरो ओकरो बाद जे छै है टूर्नामेंट जे छै 25 मई के 1924 के ही है मतलब पेरिस में आयोजित होलो छलै,
1: बिल्कुल
0: तऽ 100 वर्ष होलै 2024 के, आर ओकरो बाद जे छै संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जे छै 7 मई 2024 के है फैसला लेलो गेलै कि 25 मई का विश्व फुटबॉल दिवस मनेलो जेते।
1: बिल्कुल मनु भाई, और फुटबॉल का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव जो है वो बेहद गहरा है। यह खेल दुनिया के सबसे गरीब देशों से लेकर सबसे अमीर देशों तक समान रूप
0: हाँ
1: से खेला जाता
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल।
1: जी, जैसे लेटिन अमेरिका है, अफ्रीका की तंग गलियां बोलिए, पेले है, डियोगे,
0: हाँ
1: ये सब तो खिलाड़ी हैं,
0: जी जी
1: क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोन मेसी जैसे। इन दिग्गजों ने यह साबित कर दिया है कि इस खेल में आगे बढ़ने के लिए महंगी सुख सुविधाओं का नहीं, बल्कि केवल प्रतिभा और कड़े परिश्रम की आवश्यकता
0: बिल्कुल
1: होती है
0: बिल्कुल सही।
1: जी। और ये जो बहुत बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं जो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं, इनके जीवन को देखिएगा तो एक बहुत बहुत अमीर घर से नहीं आते हैं,
0: हाँ,
1: अपनी
0: साधारण घर से भी
1: मेहनत
0: चले,
1: के बल पे
0: मेहनत के
1: जी
0: बल पर।
1: और नाम कमाए हैं, और कहीं ना कहीं खेल जो है वो सभी राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोता है,
0: बिल्कुल सही बात।
1: कोई भेदभाव नहीं होता है वहाँ पर, सिर्फ खिलाड़ी होते हैं,
0: जी,
1: दो साइड होता है,
0: दो टीम हो
1: दो
0: छे,
1: टीम होता
0: दो
1: है,
0: दल में बटलो रही
1: और
0: छे।
1: सबकी सेम जर्सी होती है एक ही
0: हाँ
1: रंग की, और लोग खेल भावना से खेलते हैं
0: खेले छे
1: और हम
0: बिल्कुल।
1: दर्शक लोग मनोरंजन भावना से देखते हैं,
0: हाँ
1: वहाँ कोई जाति पाति देश का
0: धर्म
1: किसी भी
0: समुदाय क्षेत्र
1: नस्ल का
0: कुछ नहीं।
1: समुदाय का कोई भी नहीं होता, इसीलिए खेल को ना प्रोत्साहन दिया जाता है,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये एकता के सूत्र में सभी को पिरोता है।
0: एकता शांति भाईचारा आवे छे।
1: बिल्कुल
0: आरो हम है बात कहल छम आरो बहन कि है खेल जे छे फुटबॉल
1: जी
0: इंग्लैंड के ही आधुनिक फुटबॉल के जनक कहलो जाए छे, आरो यहीं से जे छे 9वीं शताब्दी में फुटबॉल रो ये खेल जे यूरोप में खेललो जाए छे,
1: जी
0: लेकिन आब देखो कि दुनिया के हरेक देश में खेललो जाए छे, आरो फुटबॉल के प्रत्येक टीम में जे छे 11-11 खिलाड़ी होइ छे,
1: बिल्कुल
0: आरो अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार जे छे खेल रो अवधि 90 मिनट के होइ छे, जकरा में कि 45-45 मिनट के दू मना बीच में मध्यांतर होइ छे,
1: जी
0: आरो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जे छे फुटबॉल के नियंत्रित करे वास्ते फीफा नाम के एक संस्था छे
1: संगठन
0: जे बड़ा
1: जी
0: ही प्रभावशाली छे,
1: बिल्कुल
0: तो फुटबॉल जे छे हमरा सनी खेलना चाहिए, कहना कि आजकल देखो कि बच्चा बुतरू जे छे आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना छ, सब तो
1: मोबाइल में सिर्फ बच्चे को ही नहीं खेलना चाहिए, बड़ों को भी खेलना चाहिए, क्योंकि इससे ना हड्डियों और मांसपेशियां मजबूत होती है, हृदय जो है वो सही रहता है बिल्कुल, और जो सहन शक्ति है, और जैसे एक उम्र के बाद आदमी को चर्बी चढ़ने लगता है, मतलब मोटापा होने लगता है,
0: मात्रा हो
1: गया, तो फुटबॉल खेलने से ये सारी चीजें ठीक रहती है जी। और दूसरा बात है कि जब शरीर एक्टिविटी में रहता है, मतलब जब शरीर काम करते रहता है, आप फुटबॉल खेल रहे होते हैं
0: जी,
1: तो कहीं ना कहीं आपके जो बहुत सारी जो मानसिक समस्याएं होती है, जैसे आप परेशान है, आप खेलते हुए परेशान नहीं हो सकते
0: जी, जी।
1: तो कहीं ना कहीं ये मन पे भी बहुत सकारात्मक प्रभाव
0: डालता
1: है
0: कि स्वस्थ शरीर छो तो स्वस्थ मस्तिष्क छो
1: बिल्कुल,
0: और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क रखे वास्ते सबसे अच्छा खेल जो है वो फुटबॉल छे। तो श्रोता भाई बहन जना मौका मिला फुटबॉल जरूर खेलो, और बच्चा बुतरू को भी खेले में प्रोत्साहित करो, और देखो कि अपनो देश जे छो आरो बहन एकदम धर्म ऋषि मुनि के देश छके
1: ठीक
0: है, यहाँ देखो प्रत्येक दिन कोई ना कोई धार्मिक महोत्सव धार्मिक उत्सव मनेलो जे छे। तो एको दिन जे छे है जेठ मास के शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि छको है, आरो एखना जे छे गंगा दशहरा के भी त्यौहार मनेलो जे छे, लोग जैसे गंगा नदी में स्नान करलक दान करलक और पुण्य के भागी बनल ठीक है।
1: बिल्कुल
0: धार्मिक मान्यता के अनुसार जे छे आरो बहन कि एक राजा भगीरथ छले, उन्हें अपनो पूर्वज के आत्मा के शांति वास्ते कठोर तपस्या करलक ताकि गंगा जे छे धरती पर अवतरित हुआ। और देखो कि गंगा नदी जे छो भारत के सबसे पवित्र आरो लंबी नदी
1: ठीक
0: है। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकली का देवप्रयाग में अलकनंदा से मिले छे, और गंगा नदी के रूप में देश विदेश में जानलो जाए छे। और अपनो देशों में देखो कि गंगा के प्रति लोगों का आस्था कतना छे ठीक है।
1: बिल्कुल
0: प्रत्येक त्यौहार में छे
1: मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता है माँ गंगा को जी।
0: बिल्कुल स्नान भी करे छे, और मना कि मरला के बाद जब लोग दुनिया छोड़े छे तो गंगा के किनारा ही जे छे
1: मुक्ति बोलते हैं प्राप्त होती है
0: प्राप्त होई छे। तो एको दिन जे छे हमरा सनी गंगा दशहरा पर भाई गंगा नदी का बहुत बहुत प्रणाम करे छे श्रोता भाई बहनी की तरफ से भी, और गंगा सुरक्षित रह स्वस्थ रह पवित्र रह
1: ठीक है। कहीं ना कहीं हम लोग को वो चीज करना पड़ेगा, जैसे हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं तो सारा जो पूजा पाठ का फूल होता है या सूखा हुआ या भगवान का कपड़ा होता है कुछ भी जाके गंगा जी में डाल देते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई। तो सिर्फ माँ मानने से नहीं होगा, हम लोग को कर्म में भी वो चीज उतारना चाहिए कि अगर हम गंगा को माँ मानते हैं तो फिर उनको सफाई का कैसे ठीक रहे दूषित ना हो, इन चीजों का कहीं ना कहीं ख्याल रखना पड़ेगा।
0: होबे करते लेकिन प्रदूषित होए से बचाना चाहिए, सरकार ने भी बहुत प्रयास कर रहलो छे, आरो हमरा सने के भी अपनो योगदान देना चाहिए। गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर हमरा सने सब श्रोता भाई बहनिक जी छे
1: गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामना
0: दे छे। आरो अब अपने की विचार आरो बहन कुछ गीत नाद हो जाए ठीक है। तो आबो एकटा बढ़िया ने की
1: देवी
0: गीत सुने छे, ओकरा बाद फिर हमरा सने कार्यक्रम में आगू बढ़बे और ढेर बातचीत करबे है।

0: हाँ आरो बहन
1: जी
0: है छले एक देवी गीत जय जय जगतारण मैया। आप देखो कि इतना सुंदर भक्ति गीत होले, माहौल एकदम भक्तिपूर्ण हो गए। आरो आए गंगा दशहरा छेबो भी करे,
1: जी
0: लेकिन है जे हमरा सने कार्यक्रम में आगू बढ़वे, लेकिन कुछ आवश्यक संदेश सुनी ले छे, ओकर बाद फिर जे हमरा सने कार्यक्रम में आरो खेती गृहस्थी के बात भी करवे।
1: बिल्कुल।
2: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
3: Nexa.
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
7: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
6: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और

सफलता का साक्षी है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हाँ आरो बहन है छे कुछ आवश्यक संदेश। आरो देखो कि आवश्यक संदेश के बाद जो हमरा सनी छे फिर से श्रोता भाई बहन के स्वागत करे छे अपनो कार्यक्रम में
2: जी।
1: आरो देखो अपने हमरा सनी जना के बात कर लिए अखनी कि खेलकूद से मस्तिष्क एकदम स्वस्थ रहे छे, शरीर भी स्वस्थ रहे छे
2: जी।
1: आरो एकरा में जे स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क जे छे युवा के वास्ते भी बहुत जरूरी छे।
2: बिल्कुल
1: कने के युवा पर ही जे छे समाज के मने सारा भार रहे छे, नेतृत्व करे के मने उनका जिम्मेदारी देलो जे छे। आरो जे बुजुर्ग होय छे मने आरो उनका जे छोटो पीढ़ी होय छे हुनका बहुत नाज होय छे अपना युवा पर कि हुनी जे छे एक अच्छा समाज एक अच्छा संसार बनेतै आरो सबके सुखी रखतै बिना जाति धर्म क्षेत्र संप्रदाय नस्ल के भेदभाव करला से। आरो यही वास्ते जे छे युवा में एक कौशल होना चाहिए, कुशलता कोई भी कार्य करे के छै कि नै। आजकल तो मानले कंप्यूटर के जमाना छै, एकरा में भी कुशलता चाहिए। आरो भी जीवन के जे आरो मने क्षेत्र छै जीवन के आरो जे
2: बिल्कुल मनोभाव हर चीज में कुशलता की जरूरत है। जैसे हम बोलते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं, ये
1: समाज में केना व्यवहार होना चाहिए, सबके मिली जुली के रखना छै, अपना देश राज्य के विकास करना छै, सबके कल्याण होना चाहिए। तो यही विषय पर हमरा सनी जे छै आरो बहिन एकटा वार्ता सुनै छियै युवाओं की,
2: पूर्व प्रसारित वार्ता सुनते हैं और वार्ता का विषय है युवाओं की कौशल क्षमता का सही उपयोग और वार्ताकार हैं शंभुनाथ पांडे।
1: हाँ आओ सुने छी एटा वार्ता और जाने छी विशेष कौशल के युवा के कौशल के बारे में।
3: वैश्वीकरण के युग में व्यवसाय अथवा रोजगार का क्षेत्र स्थानीय या राष्ट्रीय सीमाओं से बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक पहुँच गया है। एक ओर व्यवसाय के क्षेत्र में वृद्धि हुई है तो दूसरी ओर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश ने प्रतिस्पर्धा को बढ़ा दिया है। ऐसे समय में युवा यदि अपने कार्य क्षमता या कौशल क्षमता का उपयोग सही दिशा में करें तो निश्चय ही वह अपने सफलता को प्राप्त कर लेगा। युवा वर्ग में ऐसे आयु के लोग आते हैं जिनका यह समय बहुत ही मूल्यवान होता है। कुछ भी सीखने और समझने का यह सबसे उपयुक्त समय होता है। युवाओं में कठिन परिश्रम करने की क्षमता होती है तो किसी भी चीज़ को पाने के लिए जुनून भी होता है। इन सब के बावजूद कुछ प्रतिशत ही युवा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं, यह एक विचारणीय प्रश्न है। आज का युवा आधुनिक सोच से परिपूर्ण एवं आधुनिक तकनीक की समझ रखता है एवं उस तकनीक का उपयोग करना भी जानता है। बावजूद इसके सभी युवा सफल नहीं हो पाते हैं। यह एक कठिन समस्या है जो हमारे समाज के लोग या सरकार को परेशान करती है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है हमारे देश में। इस बेरोजगारी नामक समस्या को शिक्षा के द्वारा कुछ हद तक दूर किया जा सकता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त हो पाए ऐसा भी संभव नहीं है। तो क्या बेरोजगार युवक भूखा रहे, यह भी संभव नहीं है। इस समस्या को आज के युवा अपनी कौशल क्षमता एवं कार्यशैली से दूर कर सकते हैं। आज के युवा सरकारी रोजगार कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनियों में कार्य कर सकते हैं अथवा स्वयं का व्यापार कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें मानसिक एवं तार्किक दोनों में मजबूत होकर अपने कौशल क्षमता का सही उपयोग करना होगा। युवाओं की कौशल क्षमता का सही उपयोग उसके दृढ़ इच्छा शक्ति, सकारात्मक दृष्टिकोण, कठिन परिश्रम, सच्ची लगन, सही मार्गदर्शन, अधिक आत्मविश्वास, बेहतर समय प्रबंधन, ईश्वर में आस्था के माध्यम से किया जा सकता है। जनसंख्या में वृद्धि होने से आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। कुछ वर्ष पूर्व व्यक्तियों के बीच इतनी प्रतियोगिता नहीं होती थी, परंतु आज के समय में एक छोटी कार्य को करने के लिए भी बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे स्पर्धा के वातावरण में अगर कोई युवक अपनी क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर पाता है तो वह इस युग में पिछड़ जाता है और परिणाम स्वरूप वह युवक निराशा का जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाता है। अतः अगर आज के समय में पिछड़ना नहीं है तो समय के साथ चलना सीखना पड़ेगा और तभी सफलता प्राप्त हो सकेगी। आज का युवा बहुमुखी प्रतिभाशाली होता है, साथ साथ वह व्यावहारिक ज्ञान की भी समझ रखता है। चीज़ों को वास्तविक रूप में देखने और उससे संबंधित कार्य को सही ढंग से करने की क्षमता ही व्यवहारिक समझ है। यदि युवा में व्यवहारिक समझ ना हो तो शिक्षा और ज्ञान व्यर्थ चले जाते हैं। युवा अपनी कौशल क्षमता का प्रदर्शन करे, बेहतर तरीके से करे और साथ में शिक्षा, ज्ञान और व्यावहारिक समझ के साथ करे तो सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। युवाओं को अगर सफलता प्राप्त करनी है तो निम्न बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। युवाओं की सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। युवा किसी भी कार्य को करने से पहले योजना बनाए और योजनाबद्ध तरीके से कार्य को करे। कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें एवं किसी कार्य को असंभव ना समझें। समय का सदुपयोग करें एवं यदि खाली समय हो तो उस समय में का भी उपयोग कुछ सीखने या किसी अच्छे कार्य में करें। आज युवक जोशीला होता है, परंतु जोश के साथ साथ धैर्य एवं होश भी आवश्यक है। ना आलोचना करें और न ही किसी का अपमान। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी को सहयोग करें एवं उनसे सहयोग प्राप्त करें। आज के युवक जल्दी ही नाराज हो जाते हैं और गुस्सा दिखाने लगते हैं, परंतु इससे कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसके विपरीत यदि आपसे कोई भूल हो गई हो तो उसे तुरंत स्वीकार करें और अपनी भूल का सुधार करें। आज युवा देश के प्रति, समाज के प्रति या अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार बने और राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने। पुरानी भारतीय मान्यता है, यह हमें सिखाती है कि हमारी पहली जिम्मेदारी समाज के प्रति है, दूसरी परिवार के प्रति और तीसरी खुद के प्रति। उस समाज का पतन होने लगता है जिसमें इसका क्रम उल्टा हो जाता है। आज के युवा शिक्षित होते हैं, तकनीकी रूप से भी ज्ञानी होते हैं। अतः युवा यदि अपने ज्ञान और शिक्षा का सही दिशा में प्रयोग करे तभी वह सफल हो पाएगा। युवा आशावादी होने चाहिए। किसी कार्य के सफल ना होने पर प्रयास करना बंद नहीं करनी चाहिए, बल्कि लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर कार्य करते रहना चाहिए। आज युवा की कौशल शक्ति का प्रयोग कर एक विकासशील राष्ट्र, विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उनकी कौशल क्षमता को समझें एवं जिस तरह की जिसकी क्षमता हो उसे उसी तरह का मौका और मार्गदर्शन दें। आज का युवा वर्ग एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करता है। सिर्फ उसके इच्छा शक्ति एवं कार्य करने की लगन पर विश्वास करने की आवश्यकता है। यदि इच्छा शक्ति मजबूत हो तो किसी भी काम को अंजाम तक पहुंचाना आसान हो जाता है। विश्व में भारत सबसे बड़ा एवं उभरता हुआ युवाओं का देश है। भारत के युवा हर क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, प्रबंधन के क्षेत्र में, सूचना तकनीक के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अपना कौशल क्षमता का परिचय पूरे विश्व को करा रहे हैं। धरती से आकाश तक हमारे युवा छाए हुए हैं। तो जब भारत में युवाओं की संख्या अधिक होते हुए भी आज भारत एक विकासशील देश ही है, ऐसा इसीलिए क्योंकि युवाओं के कौशल का सही उपयोग शायद नहीं हो पा रहा है। देश की युवाओं की

0: असल क्षमता का सही उपयोग तभी होगा जब आधुनिक शिक्षा का आम जन जीवन से समन्वय स्थापित होगा। इस गंभीर समस्या का समाधान करने पर बेरोजगारी जैसी समस्या से कुछ हद तक पार पाया जा सकता है, क्योंकि आज रोजगार सुनिश्चित नहीं हो पाने के कारण देश के नौजवान पीढ़ी आपराधिक कार्यों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। आज हमारे देश में बहुत सारे युवा हिंदी भाषी हैं, परंतु अंग्रेजी के प्रभाव में ऐसे युवकों की क्षमता निश्चित रूप से प्रभावित होती है, अर्थात इन विषयों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। ग्रामीण युवकों को आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए भी सोचना पड़ेगा, जिससे कि वे युवक भी शहरी युवकों के साथ साथ चल पाएँ और सफलता प्राप्त करें। याद रखें, युवा ही देश की प्रगति एवं विकास को गति दे सकते हैं। जरूरत है उनके कौशल क्षमता को समझने की और उन्हें मौका देने की। इस तरह हमारा देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा और एक दिन विश्व के राष्ट्रों में अग्रिम पंक्ति पे खड़ा हो पाएगा।
1: हाँ अरवान, हिछले वार्ता
2: जी
1: युवाओं की कौशल क्षमता का सही उपयोग, इतना सुंदर जानकारी दिलकाऊ वार्ताकार का बहुत बहुत धन्यवाद दै छे, छे कि नहीं?
2: जी
1: आरो देखो, युवा जो एकदम कौशल छे मना काम मा
2: कुशल
1: कुशल छे तो समाज भी कुशल बने छे, छे कि नहीं?
2: बिल्कुल।
1: आरो जो कुशल कुशल समाज छौ, खुशहाल खुशहाल समाज छौ, तो वहाँ देखो कि मना गीत नाद उत्सव मने छे, छे कि नहीं? तब अपने कुछ मतलब कि गीतनाथ कुछ सुनबे श्रोता भाई बहनी का?
2: बिल्कुल मन्नो भाई, तो अभी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक झूमर।
1: अच्छा,
2: और कलाकार हैं रिद्धि मिश्रा और एवं उनकी सहेलियां।
1: अच्छा, आप उसने चढ़ा
2: जी
1: झूमर।

0: वाह आरो बहन
1: जी
0: एकदम झमकवा ना किए झूमर छले छे कि नहीं
1: जी
0: एकदम मन गदगद हो गल आरो आवाज छे श्रोता भाई बहन के की सुनवाइल जा रहा छो कुछ मना की मौसम सूचना छो तो बतेलो जाए कुछ श्रोता भाई बहन के छे
1: पहले हम लोग सुन लेते हैं एक प्रायोजित
0: अच्छा हाँ हाँ प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद
1: बिल्कुल
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से बुनियाद कार्यक्रम लेकर हंसते खेलते आपके घर आंगन में आ गया। हंसना खेलना इसलिए जरूरी है कि उससे आप खुश रहेंगे और पॉजिटिव सोच रखेंगे और इसी सोच के साथ बुनियाद कार्यक्रम को सुनेंगे, जिसमें हम नए नए कोर्सेज की आज चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से, पिछले एपिसोड में हमने बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, जी हाँ, इसके बारे में बताया था। बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में बताया था। इसके अलावा एक कोर्स और है, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, और हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे। लेकिन उससे पहले दो बातें हम कर लें। बहुत सारे फोन कॉल्स आए जब हमने बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में बातचीत की थी। हाँ, डॉक्टर नीरज से हमने बातचीत की थी और जानकारियां दिलवाई थी। पूरे बिहार से फोन आया वैसे युवा साथियों का जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया था। अच्छा लगा, सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सोमवार के दिन बने रहना होगा इसी समय इसी मीटर पर। एकदम आपके लिए खोज कर ऐसे कोर्सेस को हम लाएंगे और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में ये कोर्सेज इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं आप युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए। जी हाँ, और तीन कोर्सेज हम बार बार कह रहे हैं, हमने बातचीत कर ली है बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी पर। ढेर सारे फोन आए हैं, सारे सवाल हमने रखे हैं। इसके अलावा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी एक नया कोर्स है, और आज जिस पर चर्चा करेंगे वो है फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। जी हाँ, इस पर आज चर्चा करेंगे, विशेषज्ञ को बुलाएंगे। लेकिन फिर भी हम बार बार कहते हैं, राजेश बार बार कहता है कि भैया, छोटे छोटे भाई बड़े बड़े चाचा, बड़े बड़े दादा, अब आप समझ लीजिए कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है। हाँ, टेक्निकल पढ़ाई कर लीजिए, हाँ, बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी, ऐसा हम समझते हैं। अगर अच्छे से पढ़ाई की गई ना, तो विशेषज्ञता हासिल होगी, और वो विशेषज्ञता आपको जीवन में खड़े होने का

0: प्रेरित किया, क्या सोच थी उस समय?
1: नहीं, वो तो मैं तो जब मैं बचपन में जब क्रिकेट देख रहा होता था या कोई भी स्पोर्ट्स देख रहा होता था, तो जैसे किसी खिलाड़ी को चोट लगी तो मैं देखा कि कोई जना आया, उसने कुछ लगाया, करा एक्सरसाइज, कुछ कराई, नौ खिलाड़ी वो फिर से खेल रहा है, तो उस वक्त मुझे लगा कि ये क्या है, तो पता चला कि ये फिजियो है। तो फिर मेरा उस वक्त से थोड़ा सा इंक्लिनेशन आया कि इस कोर्स के प्रति, कि मुझे ये कोर्स करना चाहिए, और फिर जाके फिर मैंने ये कोर्स।
0: नीरज जी, जमाना बदल गया, बहुत पानी बह गया। हाँ, आज टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, और टेक्निकल पढ़ाई के विषय में क्या कहना चाहिएगा आप?
1: क्योंकि अब हर कोई चाह रहा है कि हमें इमीडिएटली पढ़ाई के बाद कुछ ना कुछ तो हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, और इसके लिए टेक्निकल पढ़ाई इज द अल्टीमेट ऑप्शन। उसी के बाद ही हमारे पास ये ऑप्शन आएंगे।
0: टेक्निकल पढ़ाई इज द अल्टीमेट ऑप्शन फॉर जॉब, फॉर ए बेटर फ्यूचर, है ना? इसीलिए कहते हैं भैया, टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, इधर उधर मत तको। इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ अगर आपने किया है तो हेल्थ सेक्टर में टेक्निकल पढ़ाई की भरमार है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, और आज चर्चा करने जा रहे हैं बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, और अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। हाँ, इस विषय में क्या, कहाँ, कैसे हो सकता है, कुछ भी बताएंगे। बहरहाल, नंबर एक बार बताएं, फिर डॉक्टर नीरज से हम पूछेंगे बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज के बारे में। नंबर नोट करें, 9431899002 और 1800121001। डॉक्टर नीरज बताइए, हाँ, हमारे सुनने वालों को, युवा साथियों को, उनके माता पिता को बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज के विषय में।
1: हाँ, ये बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज ये 4 साल का कोर्स है, और इसमें जिस 3 साल की पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। ये एक बहुत ही बढ़िया अल्टरनेटिव है MBBS का। जैसे इस कोर्स को करने के बाद जो फिजिशियन एसोसिएट होते हैं वो पेशेंट की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ये दोनों काम करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ फिजिशियन। यानी इनका काम है फिजिशियन को एसोसिएट करना, यानी फिजिशियन को असिस्ट करना। कई दफ़ा ऐसा होता है, बहुत सारे दूर दराज के सेंटर होते हैं जहां पर प्रोफेशनल या हाईली प्रोफेशनल जो फिजिशियन की पहुंच नहीं हो पाती है, तो वैसे दूर दराज के सेंटर में, कम्युनिटी सेंटर्स में, ये फिजिशियन एसोसिएट अपना रोल अदा कर सकते हैं, जहां वो छोटी मोटी बीमारियों के लिए पेशेंट को देख के उनकी डायग्नोसिस कर सकते हैं, और कंसल्ट करके जिनके अंडर वो काम कर रहे हैं, जिस फिजिशियन के अंडर वो काम कर रहे हैं, उनसे कंसल्ट करके उनको वो इलाज भी दे सकते हैं।
0: कितने सीटों के साथ आपने इसकी शुरुआत की है इस यूनिवर्सिटी के अंदर?
1: ये हमने अभी 30 सीटों के साथ स्टार्ट किया है।
0: क्या एलिजिबिलिटी है?
1: हाँ, इसकी एलिजिबिलिटी है 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 45% मार्क्स एग्रीगेट।
0: कैसे बच्चे आ सकते हैं?
1: नहीं, जो बिल्कुल जो अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए और पेशेंट वेलफेयर के लिए, जिनका मोटो है कि वो चाहते हैं कि हम समाज का कल्याण करें, हम पेशेंट का कल्याण करें, वो बच्चे इसमें एडमिशन लें, क्योंकि इसका मेन उनका रोल है पेशेंट वेलफेयर, पेशेंट ट्रीटमेंट, पेशेंट केयर।
0: अपॉर्चुनिटीज पढ़ने के बाद?
1: हाँ, इनकी अपॉर्चुनिटीज इतनी हाई डिमांड बढ़ी हुई है कि भारत में, जैसे आप सबको पता है, आप लोग न्यूज़पेपर में भी, हम लोग न्यूज़ में भी देखते हैं कि डॉक्टरों की कमी है, और अस्पतालों में इसलिए ट्रेंड फिजिशियन एसोसिएट की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक रिसेंट डेटा कहता है कि अभी तक 28% इनकी डिमांड बढ़ी है फिजिशियन एसोसिएट की हमारे अस्पतालों में। साथ ही मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों, इमरजेंसी सेवाओं और डायग्नोस्टिक सेंटरों में भी 90% तक संभावना है प्लेसमेंट की। और साथ ही साथ इनकी विदेशों में भी ऑप्शन है, जैसे इनकी यूके, यूएसए जैसे देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करियर बनाने की बहुत ही अच्छी संभावना है।
0: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूं राजेश, और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर नीरज। जानकारियां दी जा रही है, एक नया कोर्स आया है, सिर्फ 30 सीट है, ओनली 30 सीट्स है, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। जी हाँ, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज का, इसके बारे में जानकारियां दी जा रही हैं। टेक्निकल पढ़ाई, बार बार कहते हैं, जैसे पिछले एपिसोड में हमने बताया था आपको, बैचलर ऑफ

0: साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, ढेर सारे सवाल आए हैं, आने वाले सोमवार के दिन हम उसका उत्तर देंगे। इसके अलावा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के विषय में आने वाले सोमवार को एकदम बताएंगे ही बताएंगे। फिलहाल आइए जानते हैं डॉक्टर नीरज से, जहां 30 सीट ही आया है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में। सबसे पहले नंबर बता दें एक बार, 9431899002 और 1800121051। हाँ डॉक्टर नीरज, नया कोर्स आया है, हाँ सारा कुछ नया नया है, बच्चे नए होंगे, सब कुछ नया होगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या तैयारी है आपके यहाँ ओवरऑल?
1: फिजिशियन एसोसिएट के लिए हमारे पास ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सारे अवेलेबल, जो हमारे पास क्लासरूम चाहिए वो हमारे पास है, जो लैब चाहिए वो हमारे पास है। इसके अलावा क्लिनिकल पेशेंट प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास अपना हॉस्पिटल NMCH हॉस्पिटल है, नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो 1200 बेडेड हॉस्पिटल है लगभग, वहाँ हमारे बच्चों का हैंड्स ऑन एक्सपोजर होने हम कराएंगे हमारे बच्चों का। क्लासेस कराने के लिए टीचर्स के लिए हमारे पास अपने फिजिशियन एसोसिएट टीचर प्रोफेशनल्स हैं, साथ ही साथ जो मेडिकल सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास मेडिकल फैकल्टी है, मेडिकल टीचर्स हमारे पास। चूंकि आपको पता है कि हमारा गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत ही बड़ा कैंपस है, इस कैंपस के अंदर हमारे पास सारी बेसिक सुविधाएं हैं, हमारे यहाँ हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, साथ ही साथ स्टाफ टीचर और उनके लिए भी एकोमोडेशन है, फ्लैट्स हैं, क्वार्टर्स हैं, और जो भी बेसिक नीड की जरूरत होती है सब हमारे कैंपस के अंदर मौजूद।
0: डॉक्टर नीरज, बहुत बहुत पहले तो बधाई कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, और हमें पता है कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में जब तक पूरी तैयारी नहीं होती कोई कोर्स शुरू नहीं किया जाता। लेकिन एक सवाल हम बच्चों की तरफ से पूछना चाहते हैं कि बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल पढ़ाई, अंग्रेजी में बातचीत, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनालिटी जो लेकर आते हैं और यहाँ आकर, क्या उन बच्चों के झिझक को आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में तोड़ने के लिए कोई व्यवस्था, उनकी अंग्रेजी या कोर्सेज के बारे में जानकारी या उनके ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कोई सिस्टम?
1: नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है सर आपने। नहीं, हमारे यहाँ हम लोग जैसे बच्चे हमारे एडमिशन होता है तो शुरू के एक महीने हम उनका सिर्फ इंडक्शन प्रोग्राम चलाते हैं, ताकि उनको हम इस कोर्स के बारे में अवगत कराएं। हम सिलेबस स्टार्ट नहीं करते हैं शुरुआत में, पहले हम कोर्स को अवगत कराते हैं, ब्रिज कोर्स काइंड यू आप कह सकते हैं, कि अभी चूंकि जस्ट वो इंटर पास करके इस प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन के कोर्स में आए हैं, तो उसका जो गैप है उसको हम लोग फुलफिल करते हैं। रहा बात इंग्लिश का, तो हमारे यहाँ के जितने भी टीचर हैं वो डुअल मोड में पढ़ाते हैं, दोनों मोड में, इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में पढ़ाते हैं। साथ ही साथ हम लोग इंग्लिश कम्युनिकेशन इंग्लिश की क्लासेस भी लगाते हैं बच्चों के लिए, और हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं सर, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जितने भी फाइनल ईयर के बच्चे हैं, जब वो फर्स्ट ईयर में यहाँ आते हैं तब उनका उनसे आप पूछेंगे कि जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनका क्या स्टैंडर्ड या क्या लेवल रहता है, और अभी उनका आप देखेंगे लेवल और स्टैंडर्ड, तो पीरियोडिकली दे आर इम्प्रूविंग देमसेल्व्स, और इस पे हमारे टीचर हम लोग बिल्कुल मिलजुल कर काम करते हैं, और हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि हमें बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है।
0: थैंक यू प्रोफेसर नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें विश्वास है कि आप सबों के गाइडलाइन में जो बच्चे आएंगे, 30 बच्चे आएंगे, उनका सही मार्गदर्शन होगा, सही पढ़ाई होगी और करियर की नई अपॉर्चुनिटी खुलेगी। अभी हमारी बातचीत चल रही थी बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, ये एक नया कोर्स आया है, इस पर सिर्फ 30 सीट है इंटरमीडिएट बायोलॉजी के लिए। अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो नंबर डायल करें, टोल फ्री नंबर 1800121051, और दूसरा नंबर है 9431899002, ये नंबर है। और अगले एपिसोड में हम बताएंगे एक नया कोर्स आया है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, इसके विषय में तो ढेर सारी संभावनाएं हैं टेक्निकल पढ़ाई में। युवा साथियों, सोचिए, विचारिए और निर्णय लीजिए, फोन से बात कीजिए। फिलहाल थैंक यू गोपाल नारायण कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
3: हाँ आरो बहन, है छले प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद
4: जी।
3: आरो जी छे आवा
4: कार्यक्रम में कुछ संदेशों को सुन लेते हैं।
3: हाँ
4: जी,
3: ओकरो बाद फिर हमरा सनी आगू बढ़बे।
4: बिल्कुल।

0: AIR at 90.
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अरोहन, अब जैसे कुछ समसामयिक चर्चा हो जाए
5: जी,
4: और मौसम सूचना भी जल्दी से अपने श्रोता भाई बहनों को दो।
5: बिल्कुल मनु भाई, भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान की अवधि यानी कि 25 से 27 मई के दौरान
4: जी जी
5: 16-17 जिले में एक या दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी, 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है।
4: अच्छा।
5: इसके बाद मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
4: अच्छा।
5: अधिकतम तापमान जो है वो 37 डिग्री से 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान है।
4: अच्छा।
5: सापेक्ष आर्द्रता जो है मनु भाई, सुबह में 70-75% तथा दोपहर में 20-25% रहने की संभावना है। और पूर्वानुमान की अवधि में 8-12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की भी संभावना है।
4: और देखो क्रम जैसे कुछ खेती गृहस्थी भी सलाह छे
5: जी,
4: जना कि
5: सामान्य सलाह यह है कि हल्की एवं बार बार सिंचाई करें, जो अभी जो खेतों में लगा हुआ है फसल। मल्चिंग अपनाएं, दोपहर में उर्वरक एवं कीटनाशी का छिड़काव ना करें और पशुओं हेतु छाया एवं पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था करें जी। और आप कुछ बता रहे थे।
4: हाँ, और जैसे जना कि सब्जी होले ग्रीष्मकालीन सब्जी में जैसे निकाई गुड़ाई करो, फसल सुरक्षा पर ध्यान दो, बरसाती सब्जी भी लगाव और जे कि मना फल में मक्खी लत्तर या सब्जी में जना कि नेनुआ छे, करेला, लौकी, कद्दू सब जे क्षति पहुँचाए वाला कीड़ा छे, एकरा से बचाव भी करो। अगर हम जे छे 2 लीटर मेलाथियन जे छे 25 cc 2 लीटर पानी में मिलाकर प्रति 1,000 लीटर पानी के घोल में 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करो और जे छे अपना फसल का बचाओ।
5: बिल्कुल। और कुछ बागवानी विशेष सलाह जैसे आम के लिए है, तो आम के बगानों में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। और यदि रेड बैंडेज कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे, तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट 2 मिलीग्राम लीटर पानी या लैम्डा साइथे हेलोथ्रीन 2 मिलीलीटर पानी प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें।
4: और बहन है छिले समसामयिक कृषि सलाह और मौसम सूचना, और अब एक पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता सुनै छे एक किसान से, ओकरा बाद जे हमरा से फिर जे कार्यक्रम आगू बढ़बे। भेंट वार्ता कार छिके अभी का अंत झा
5: जी,
6: चाहेंगे कि अभी खेती बाड़ी में क्या हो रहा है।
7: देखिए, अभी अभी तो रबी फसल तैयार हुई है और जैसी पछियावा चल रही है, उसको भंडारण के लिए उसकी धूप में सुखाई करके उसको भूसा में डाल रहे हैं। और ये मुख्य रूप से अभी ध्यान केंद्रित है कि हरी खाद के ऊपर, जिसमें कुछ मूंग की खेती हो गई और ढैचा की खेती होगी।

0: अच्छा, बहुत से किसान भाई ढैंचा की खेती करते हैं, तो इसके लिए क्या कोई किस्म है ढैंचा की जिसे बोया जाए हरी खाद के लिए?
1: देखिए, ऐसे ढैंचा के लिए मुख्य रूप से दो ही प्रभेद है, हैं। एक हमारा देसी प्रभेद है जिसके जड़ जड़ में राइजोबियम ग्रंथि होती है, और दूसरी अमेरिकन प्रभेद है जिसके कि हर पत्ते के गांठ में होती है।
0: जी, तो अमेरिकन प्रभेद ही लगाना चाहिए।
1: वो ज़्यादा कारगर है, लेकिन वो हमारे यहाँ अभी बीज उपलब्ध नहीं है,
0: यदि बीज उपलब्ध हो जाए तो
1: तो
0: उसका।
1: ज़्यादा नेत्रजन और ज़्यादा आपको जैविक स्तर में हमारे बढ़ोतरी हो गई हमारी ज़मीन की।
0: अच्छा, अभी जो ढांचा है उसकी, उसका बीज जो है वो कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे खेत की तैयारी करके उसे लगाते हैं?
1: देखिए, जहाँ तक मेरा अनुभव है कि जो ढैंचा पिछले सालों से तो कृषि विभाग बिहार सरकार व्यवस्था कर रही है, फ्री अनुदान दे रही है, बिना पैसे की प्रति एकड़ 8 किलो दे रही है। लेकिन उसके पहले का जो वो बाजार में ईख के खेतों में वो तैयार होती थी, जो संग्रह करके हम लोग उसको ज़मीन में डालते थे। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा परेशानी क्या है कि जिस खेत में फॉस्फेट नहीं रहता है उसमें अगर डाल दिया जाए तो उसमें अंकुरण तो हो जाती है लेकिन बढ़वार अच्छी नहीं होती है।
0: जी,
1: दूसरी बात है कि अभी जो ढैंचा मिल रही है उसका एक गुण है या अवगुण समझिए कि वह 27 डिग्री पर ही अंकुरित होती है। तो मैं जो करता हूँ कि उसको गेहूं के साथ उस ढैंचा की बुआई कर देता हूँ, और 30 अप्रैल के आसपास जब एक वर्षा होती है औसतन बांका जिले के में, अक्सर 10 वर्ष में 8 वर्ष जरूर होती है, तो उसमें वो अंकुरित हो जाती है, ना जुताई करनी पड़ती है, वो 4 सालों तक लगातार वो अंकुरण हमको मिलते रहती है।
0: अच्छा, ये ढैंचा की फसल कितने दिनों के बाद उसको जुताई करते हैं, खेत में दबाते हैं?
1: हाँ, देखिए, ये दरअसल इसको 40 से 45 दिनों के बाद दबाने के बाद इसमें होता है क्या है कि इसमें नीचे जो है ठोस नहीं बनता है और पूरी की पूरी सड़ करके वो हमारे मिट्टी में मिल जाती है। क्योंकि मिट्टी की स्थिति क्या है, अगर गहरी जमीन है, क्ले सॉइल है, तो उसमें मूंग की फसल, सनई की फसल ये हरी खाद के रूप में नहीं होगी, क्योंकि वर्षा अधिक हो जाने, अद्रा नक्षत्र में हो जाने से उसको मरने की संभावना रहती है। इसलिए निश्चित रूप से उसमें ढैंचा की खेती करें। जो थोड़ी ऊंची जमीन है जहाँ सिंचाई के साधन है वहाँ मूंग की खेती करें। लेकिन मूंग और ढैंचा में एक तुलनात्मक बात क्या है कि जब हम मिट्टी में उसको दबाते हैं तो उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है मूंग में, जबकि
0: जी,
1: ढैंचा में नहीं होती है। अगर जब तक उसको हम 10 से 14 रोज तक अगर उसको नहीं हम पानी के अंदर रखेंगे तो वहाँ पर अगर धान की हम रोपाई करेंगे तो धान के पौधे मर जाते हैं, जबकि ढैंचा में ऐसा नहीं होता है।
0: अच्छा, सनई, ढैंचा, ये हरी खाद और मूंग की खाद है। इसके अलावा भी कई तरह की खेती है जिससे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जल धारण क्षमता बढ़ती है। इस संबंध में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे।
1: जैसे अभी बिहार सरकार की एक योजना हुई है, आपको लोबिया या
0: जी
1: बरबट्टी
0: जी जी
1: या अंग्रेजी में उसे कॉपी कहा जाता है, तो वो तो हम लोग सब्जी के रूप में उसका व्यवहार करते हैं। ऐसे बहुत हमारे पुराने जो खेतियर थे, हमारे पूर्वज, वो अरहर और बरबट्टी का खेती, अरहर
0: जी
1: और मक्का का खेती करते थे।
0: तो जाहिर है कि हरी खाद से जो पोषक तत्व मिलते हैं, नाइट्रोजन वाले, फास्फोरस वाले या अन्य उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि इन बातों पर ध्यान रखें, हरी खाद का उत्पादन अधिक से अधिक करें, ताकि आप भी स्वस्थ रहें, आपकी मिट्टी भी स्वस्थ रहे और उत्पादन भी अच्छा मिले। अभयकांत झा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ तारो बहन, इतना सुंदर वार्ता छले,
3: जी
2: भेंट वार्ता, बहुत बहुत धन्यवाद दै छी भेंट वार्ताकार का। और देखो कि हमरा सनिका वजह से घड़ी इशारा करी रहलो छौं कि कार्यक्रम से विदा लिए,
3: बिल्कुल,
2: तो सबका मनो के नमस्कार।
3: और सभी को आरू का भी नमस्कार।

ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पर...

0: श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी की रांची केंद्र से। शाम के 7 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा। अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की वित्त और जल संसाधन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए तकनीक के उपयोग पर दिया जोर। देवघर एम्स का 8वां स्थापना दिवस सम्पन्न। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और सांसद निशिकांत दुबे ने स्वास्थ्य सुविधाओं को सराहा। मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों में अगले 2 दिन आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। कई हिस्सों में लू का भी प्रकोप। और रांची में चल रही राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का ऐतिहासिक प्रदर्शन। अब तक 12 एथलीटों ने पक्का किया कॉमनवेल्थ गेम्स का टिकट। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें 2 को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री दिए गए। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला, जिसे उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने लिया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण मिला। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण और महिला क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री से नवाजा गया। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय में 2 उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें संपन्न हुई। पहली बैठक में वित्त और वाणिज्य कर विभाग के साथ राज्य की वित्तीय स्थिति और राजस्व संग्रह बढ़ाने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बजट को सही तरीके से लागू करने और कमाई बढ़ाने के लिए नई तकनीक का उपयोग करने के सुझाव दिए। वहीं दूसरी बैठक में जल संसाधन विभाग की संचालित योजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं और पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने जैसे कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी काम समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। देवघर एम्स ने आज अपना 8वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया। समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और सांसद निशिकांत दुबे शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने एम्स की विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की सराहना की। इस अवसर पर चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टरों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। इससे पहले भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने आज देवघर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल बांग्लादेशियों को भारत का वोटर बनाना चाहते हैं, लेकिन भाजपा ऐसा कभी नहीं होने देगी।
2: कांग्रेस और जेएमएम बांग्लादेशी को वोटर नीति बनाने का प्रयास करते मनसूबे को हम कामयाब नहीं। ममता बनर्जी जी इसी तरह से जो है दौड़ती रही। कल डायमंड हार्बर मॉडल किस तरह से फ्लॉप हुआ, आपने देखा कि 1 लाख से ज्यादा जो है पाल्टा का विधानसभा में। और इस बार जो कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ बसाने का प्रयास और जेएमएम दोनों ने सुना।
1: गिरिडीह नगर निगम के बोर्ड की दूसरी बैठक आज नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में पूरी हुई। इस बैठक में राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, मेयर प्रमिला मेहरा, डिप्टी मेयर सुमित कुमार और सभी वार्ड पार्षद शामिल हुए। मौके पर नगर विकास मंत्री ने कहा कि शहर के विकास के लिए अधिकारियों और जनता के प्रतिनिधियों के बीच तालमेल होना बहुत जरूरी है।
3: निगम की आज दूसरी बैठक निगम के सभागार में हुई। तमाम सम्मानित वार्ड पार्षद उपस्थित हुए। शहर की विभिन्न समस्याओं के बारे में समग्र चर्चा हुई और इस चर्चा के फलाफल में गिरिडीह को और बेहतर और सुंदर और विकसित बनाने की दिशा में निगम और निगम के तमाम साथी प्रयास रहे।
1: ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने रांची के राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल की राज्य स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी अधिकारियों और कर्मियों के कौशल विकास को बढ़ावा देना और सुशासन को मजबूत करना है। मौके पर मंत्री ने कहा कि इस डिजिटल लर्निंग और लगातार ट्रेनिंग के माध्यम से सरकारी योजनाओं को जमीन पर बेहतर

0: तरीके से लागू किया जा सकेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लोहरदगा के सलगी चूल्हापानी में आज दामोदर महोत्सव 2026 का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दामोदर नदी के उद्गम स्थल पर पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि प्रकृति की गोद में आकर उन्हें बहुत खुशी मिल रही है। राज्यपाल ने इलाके की पुरानी संस्कृति और धार्मिक पहचान को बचाने पर जोर दिया।
1: बल्कि जीवन दायिनी शक्ति है। दामोदर स्वयं भगवान विष्णु का नाम है, इसलिए इस नदी के प्रति हमारी श्रद्धा केवल परंपरा नहीं बल्कि इससे हमारा एक गहरा आध्यात्मिक संबंध भी है।
0: केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत राज्य के 50 छात्रों का एक दल मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गया है। इन छात्रों को धनबाद स्थित IIT ISM से IIT इंदौर भेजा गया है। IIT ISM के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को वहां की संस्कृति, शिक्षा और परंपराओं को करीब से समझने का अवसर मिलेगा।
2: इसका मेन एम ये है कि डिफरेंट स्टेट को जाके उसका कल्चर के बारे में, उसका एक्टिविटी के बारे में झारखंड बच्चों को पता हो, एंड वो एक्वेंटेंस बहुत इम्पोर्टेंट है इंटरमिक्सिंग इन द सोसाइटी। 50 बच्चे यहीं से जा रहे हैं।
0: प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रमा खलखो ने आज धनबाद के सर्किट हाउस में जिला महिला कांग्रेस कमेटी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में संगठन को मजबूत करने और आने वाले चुनावों को लेकर चर्चा हुई। रमा खलखो ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद भी सरकार परिसीमन का बहाना बनाकर इसे टाल रही है। राज्य सरकार ने ईद उल जुहा यानी बकरीद के अवसर पर घोषित सरकारी छुट्टी की तारीख में बदलाव की अधिसूचना जारी की है। अब राज्य सरकार के सभी कार्यालयों और संस्थानों में 28 मई को बकरीद की आधिकारिक छुट्टी रहेगी। इससे पहले यह अवकाश 27 मई को तय किया गया था। गिरिडीह पुलिस ने खंडोली मोड़ से अपहृत तस्लीम अंसारी को 24 घंटे में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जंगल से सुरक्षित छुड़ा लिया है। SP डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि अपराधियों ने 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने SIT गठित कर 5 अपहरणकर्ताओं को गाड़ी और मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। और अब मौसम का हाल। राज्य में मौसम का दोहरा रूप देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां राज्य में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, वहीं मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गुड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। दूसरी ओर राज्य के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का असर बना हुआ है। डाल्टनगंज 44 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में चल रही राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने नया इतिहास रच दिया है। शानदार प्रदर्शन के दम पर गुरिंदर सिंह, अनिमेश कुजूर, रवीना और सीमा सहित कुल 12 एथलीटों ने अब तक आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस बीच आज महिलाओं के 500 मीटर दौड़ में रिलायंस की सीमा ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। पुरुष वर्ग की दौड़ में कर्नाटक के शिवाजी परशुरामम्मा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। लखनऊ में आयोजित दूसरी अखिल भारतीय बैडमिंटन और टेबल टेनिस क्लस्टर प्रतियोगिता में झारखंड पुलिस के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल दिखाते हुए राज्य के लिए कई कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा। अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की वित्त और जल संसाधन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक।

0: राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए तकनीक के उपयोग पर दिया जोर। देवघर एम्स का 8वां स्थापना दिवस संपन्न। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और सांसद निशिकांत दुबे ने स्वास्थ्य सुविधाओं को सराहा। मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों में अगले दो दिन आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। कई हिस्सों में लू का भी प्रकोप। और रांची में चल रही राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का ऐतिहासिक प्रदर्शन। अब तक 12 एथलीटों ने पक्का किया कॉमनवेल्थ गेम्स का टिकट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 7:11 हुए हैं। लोकगीतों के कार्यक्रम में आज गायक कलाकार हैं विश्वनाथ ठाकुर। आरंभ में इनके स्वर में आपको सुनवाते हैं एक मनौन।

लोक गीतों का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज गायक कलाकार थे विश्वनाथ ठाकुर। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। एक अंतराल के बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
1: आकाशवाणी और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभवाणी,
4: आकाशवाणी।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी।
8: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
7: और लाइट बिल के।
8: अब 0 रुपए कैसे दूं?
7: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का।
9: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया

0: नमस्कार जी, आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 विभूतियों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया। बिहार की 3 विभूतियों को मिला पद्मश्री। सीबीएसई पाठ्यक्रम में शामिल होगी मैथिली भाषा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार की पहल को बताया ऐतिहासिक। राज्य सरकार ने कहा मध्य एशिया में जारी संकट के कारण बढ़ रही है पेट्रोल डीजल की कीमत। और मौसम विभाग ने सुपौल, अररिया, किशनगंज समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में अधिकांश स्थानों पर आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया। बिहार की 3 विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके पुत्र रमन कुमार त्रिवेदी ने पुरस्कार ग्रहण किया।
1: डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उनके पुत्र श्री रमन कुमार त्रिवेदी।
0: वहीं डोमकच्छ लोक नृत्य परंपरा को मुख्य धारा में लाने वाले पुरोधा विश्व बंधु को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी इंदु देवी ने पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्मश्री श्री विश्व बंधु मरणोपरांत कला लोक नृत्य, उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी।
0: भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती को कला और लोक गायन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: श्री भरत सिंह भारती कला लोक गायन।
0: समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्य और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के पाठ्यक्रम में कक्षा 1 से लेकर माध्यमिक स्तर तक मैथिली भाषा को मातृभाषा विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पाठ्यक्रम में मैथिली को सम्मिलित कर लिया गया है। दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने उन्हें इस संबंध में पत्र भेजा है। श्री ठाकुर ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है।
2: सीबीएसई पाठ्यक्रम में मैथिली भाषा को शामिल किया जाना एवं सीटेट सीटीईटी में भी मैथिली भाषा को स्थान मिलना संपूर्ण मिथिला वासियों के लिए यह ऐतिहासिक उपलब्धि है और मिथिला की अस्मिता, संस्कृति और मातृभाषा का जो सम्मान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो यह काम किया है ऐतिहासिक, इस

0: भाषा मैथिली को शिक्षा व्यवस्था में सशक्त स्थान मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के इस फैसले से मिथिला की सांस्कृतिक अस्मिता को और भाषाई गौरव बढ़ेगा। इधर विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने भी मैथिली भाषा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद और बधाई दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कामों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था बेहतर बनाने के मुद्दे पर विचार किया गया। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की है। पेट्रोल 2.61 रुपए और डीजल 2.71 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। पिछले 2 सप्ताह में तेल के मूल्य में चौथी बार वृद्धि हुई है। पटना में पेट्रोल 113.35 रुपए और डीजल 99.36 रुपए प्रति लीटर हो गया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी से किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि सभी को पता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट प्रभावित होने से कच्चे तेल की आपूर्ति पर असर पड़ा है। इसका प्रभाव ईंधन की कीमतों पर पड़ा है।
1: जितना बड़ा संकट है, जितना बढ़ना चाहिए उसको भी सरकार की सफलता ही है कि उसको नियंत्रित करके बहुत कम कम बढ़ा रही है। बहुत कम कम रुपयों का इजाफा दाम में हो रहा है और पूरी दुनिया झेल रही है। अकेले भारत में पेट्रोलियम पदार्थों का दाम थोड़े बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। खाड़ी का संकट, हॉर्मुज संकट सब लोग जान रहे हैं।
0: विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का परिणाम बताया है। डॉक्टर कुमार ने कहा कि सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जल्द ही इस पर नियंत्रण कर लिया जाएगा।
2: वर्तमान वैश्विक ऊर्जा संकट को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर पेट्रोल डीजल के खपत को घटाने तथा सार्वजनिक वाहनों को उपयोग बढ़ावा देने के आह्वान के मद्देनजर बिहार विधानसभा सचिवालय में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों में आवासीय स्थानों से कार्यालय आगमन हेतु एम्स पटना से बिहार विधानमंडल सचिवालय रूट के लिए एक इलेक्ट्रिकल, एक CNG एवं एक पिंक बस, समुना मोड़ से बिहार विधानमंडल सचिवालय रूट के लिए एक इलेक्ट्रिक बस, धनकी मोड़ से बिहार विधानसभा मंडल निर्वाचन आयोग एवं विकास भवन रूट के लिए एक इलेक्ट्रिक एवं एक CNG एवं एक पिंक बस का परिचालन आज शुरू किया गया है।
0: बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ की ओर से पटना में एक दिवसीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान 3 कंपनियों के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव मौजूद रहे। श्री यादव ने कहा कि विकसित बिहार बनाने के लिए किसानों का सशक्त होना जरूरी है।
3: तिरहुत यूनियन के साथ 3 कंपनियां हैं जिसके साथ MU हुआ है। इसमें HUU है, नेचर फास्ट है, हरिलाल है, मंडी मित्र और सेजा फूड है। तो ये सब के साथ हमारा MU हुआ है। मैं समझता हूँ कि इससे काफी फायदा होने वाला है। हम लोग प्रयास करेंगे किसानों को प्रोत्साहित करके, जो इसमें जुड़े हुए लोग हैं, कि सरकार हर तरह का सपोर्ट देने की प्रतिबद्धता रखती है।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा है कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय परीक्षा जांच एजेंसी NTA ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। एक रिपोर्ट।
5: न्यायाधीश PS नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल

0: प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मिना में इकट्ठा हो रहे हैं। पवित्र शहर मक्का से अपनी यात्रा शुरू कर रहे जायरीन मिना के टेंट सिटी में आज रात बिताएंगे और कल तड़के अराफात के मैदान की ओर बढ़ेंगे, जहां वे हज के मुख्य अनुष्ठान में भाग लेंगे। इस वर्ष हज यात्रा में बिहार के 2,552 हज यात्री समेत देश भर के लगभग 1,75,000 यात्री भाग ले रहे हैं। राज्य के दक्षिणी भागों में भीषण गर्मी और उत्तरी भागों में आंधी बारिश की स्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में आंधी के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात हो सकता है।
2: दिनांक 26 मई राज्य के अररिया, किशनगंज एवं सुपौल जिलों में मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य भाग के जिलों कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया एवं सहरसा जिलों में कुछ स्थानों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: इधर बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। पिछले 24 घंटों के दौरान गया और रोहतास जिले में हॉट डे की स्थिति बनी रही। रोहतास के डेहरी में अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि राज्य के दक्षिणी भागों में गर्मी से राहत के आसार अभी नहीं हैं। भीषण गर्मी के कारण मुंगेर जिले के संग्रामपुर में प्लस टू बालिका विद्यालय की 7 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। बीमार छात्राओं का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एसएस राय ने बताया कि लू लगने के कारण छात्राएं बेहोश हो गई, अब उनकी हालत में सुधार है। पटना के ज्ञान भवन में आज 3 दिवसीय स्वास्थ्य एवं संबद्ध क्षेत्र रोजगार मेला 2026 का शुभारंभ हुआ। युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत आयोजित इस मेले का उद्घाटन विभागीय मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने किया। 27 मई तक चलने वाले इस मेले के पहले दिन 13,000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया, जिनमें 1876 अभ्यर्थियों का विभिन्न कंपनियों के द्वारा चयन किया गया है। गोपालगंज की एमपी एमएलए कोर्ट ने अश्लील नृत्य और हथियार लहराने से जुड़े मामले में मोकामा के विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में अग्रिम जमानत का फैसला सुरक्षित रखा है। मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी। गौरतलब है कि गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सेमराव गांव में 2 और 3 मई को एक कार्यक्रम के दौरान अनंत सिंह की मौजूदगी में समर्थकों के अश्लील गीतों पर हथियारों के साथ डांस करने का वीडियो वायरल हुआ था। निगरानी विभाग की टीम ने बेगूसराय के सहायक नियंत्रण नापतौल कार्यालय में कार्यरत लिपिक पुष्कर कुमार द्विवेदी को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। निगरानी विभाग के डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि आरोपी नापतौल लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। उन्होंने बताया कि आगे की पूछताछ की जा रही है। अररिया जिले में बकरीद पर्व को लेकर अनुमंडल और थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही समाजसेवी और बुद्धिजीवी शामिल हुए। वहीं जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आधा दर्जन फरार वारंटी अपराधियों के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई है। शेखपुरा जिले में डिजिटल इंडिया मूवमेंट के तहत पुलिस कर्मियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। पश्चिम चंपारण के इनरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा के करीब एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नशीली दवाओं की बड़ी खेप बरामद की गई है। इस संबंध में 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हसनपुर गांव में नदी में डूबने से एक युवती की मौत हो गई। नवादा के पुलिस केंद्र के पास गया नवादा रोड पर एक तेज रफ्तार ई रिक्शा की टक्कर से सड़क पार कर रहे पुलिस के 112

0: वाहन के चालक की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 विभूतियों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया। बिहार की 3 विभूतियों को मिला पद्मश्री। सीबीएसई पाठ्यक्रम में शामिल होगी मैथिली भाषा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार की पहल को बताया ऐतिहासिक। राज्य सरकार ने कहा मध्य एशिया में जारी संकट के कारण बढ़ रही है पेट्रोल डीजल की कीमत। और मौसम विभाग ने सुपौल, अररिया, किशनगंज समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में अधिकांश स्थानों पर आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
4: आकाशवाणी।
5: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है नालंदा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
6: नालंदा जिले में धर्म आस्था और अध्यात्म के अद्भुत संगम के बीच ऐतिहासिक राजकीय मालमास मेला का भव्य शुभारंभ हो गया है। 17 मई की सुबह धार्मिक अनुष्ठान, वैदिक मंत्रोच्चारण, शंखनाद, मंगल आरती और ध्वजारोहण के साथ मेले की शुरुआत हुई। यह मेला 17 मई से 15 जून तक चलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फीता काटकर इस राजकीय मेले का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ ही संपूर्ण राजगीर क्षेत्र हर हर महादेव, ब्रह्म बाबा की जय, जय श्री राम और राजगिरी धाम की जय के जय घोष से गुंजायमान हो उठा। मेले के पहले ही दिन ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड और तपोवन क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूरे मेला क्षेत्र को आकर्षक रोशनी, धार्मिक झांकियों और रंग बिरंगी सजावट से विशेष रूप से सवारा गया है। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए आवासन, सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा, पेयजल और स्वच्छता की व्यापक व्यवस्था की गई है। राजगीर की पावन वदियों में शुरू हुआ यह ऐतिहासिक मेला एक माह तक श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक चेतना का मुख्य केंद्र बना रहेगा। जीविका दीदियों के आर्थिक उत्थान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने राजगीर मलमास मेला क्षेत्र में 25 चिन्हित स्थानों पर जीविका दीदी की रसोई स्थापित की है। इस पहल से बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। इस रसोई में श्रद्धालुओं को मात्र 35 रुपये प्रति प्लेट की दर से शुद्ध, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन की ओर से भव्य टेंट सिटी का निर्माण किया गया है, जहां रहने, पेयजल, शौचालय, बिजली और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। वहीं रेलवे ने मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए राजगीर से हावड़ा के बीच एक विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। नालंदा विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह के अवसर पर 19 मई को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा द्वारा परिसर में कौटिल्य सेंटर फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग का उद्घाटन

0: किया गया। विश्वामित्रालय सभागार में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने नालंदा को एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि सभ्यतागत प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती ज्ञान को विवेक और करुणा से जोड़ना है। इस समारोह में वियतनाम, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार सहित 14 देशों के 219 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। जिले में जनगणना 2027 के दूसरे चरण का कार्य अब अंतिम चरण में है। प्रशासन ने 31 मई तक मकानों की सूचीबद्धता का लक्ष्य रखा है। जिले में कुल 5,493 परगणक तैनात हैं, जिनमें से 5,287 ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। जिले में अपेक्षित 8,08,100 मकानों में से अब तक 8,01,952 मकानों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। ऑनलाइन पोर्टल पर अब तक 38,38,755 आबादी और 6,58,874 परिवारों का डेटा दर्ज किया जा चुका है। जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले करीब 10 दिनों से जारी प्रचंड लू और गर्मी से आम जीवन व्यस्त हो गया है। जिले का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण जिले की बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। बिजली खपत 300 मेगावाट से बढ़कर 385 मेगावाट तक पहुँच गई है। लगातार बिजली की कटौती से पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। इस संकट से निपटने के लिए 352 बिजली मिस्त्री 3 शिफ्टों में 24 घंटे मरम्मत कार्य में जुटे हैं। विभाग ने कई संवेदनशील जगहों पर बड़े क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाने का भी काम शुरू कर दिया है। ग्रामीण विकास सह सूचना और जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने विगत 23 मई को आपदा पीड़ितों परिवार से मुलाकात की और उनके बीच 4,75,000 रुपए की राहत राशि के चेक वितरित किए। बिहार ग्रामीण बैंक ने अपने ग्राहकों से प्रधानमंत्री बीमा योजनाओं को जारी रखने के लिए अपील की है। बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक विपुल सौरभ ने बताया कि जिन खाता धारकों ने वर्ष 2025-26 में इन योजनाओं के तहत पॉलिसी ली थी, वे 31 मई 2026 तक अपने खाते में पर्याप्त राशि जरूर रखें। राशि न होने पर पॉलिसी स्वतः समाप्त हो जाएगी। बैंक द्वारा 18 मई से 31 मई 2026 के बीच प्रीमियम राशि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 436 रुपए और सुरक्षा बीमा योजना के लिए 20 रुपए ऑटो डेबिट की जाएगी। नई वैधता अवधि 1 जून 26 से 31 मई 2027 तक प्रभावी रहेगी।
1: अभी आप सुन रहे थे नालंदा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
2: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर शाम के 7:52 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। आज इस कार्यक्रम में गायक कलाकार हैं अनिल कुमार आनंद। आरंभ में इनके स्वर में आपको सुनवाते हैं तुलसीदास की ये भक्ति रचना।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

रसरंग कार्यक्रम क्षमा करेंगे, सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी अब यहीं संपन्न होता है। आज गायक कलाकार थे अनिल कुमार आनंद। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 8 बजे हैं, पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। पहला गाना हमने फिल्म चितचोर से लिया है, यशुदास ने इसे गाया है। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

0: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
1: Nexa.
2: और कास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़

Akashvani at 90. बड़ी बहन फिल्म का एक गीत सुनते हैं। इसे गाया है सुरैया ने। गीत के बोल कमर जलालाबादी के हैं और संगीत तैयार किया है हुस्नलाल भगतराम ने।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है खेल गतिविधियों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, प्रस्तुत करता है मोहम्मद सरशार अहमद।

श्रोताओं नमस्कार। खेल जगत के तमाम छोटे बड़े और रोचक खबरों को समेटे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में आप सभी का स्वागत है। और खेल खिलाड़ी के नए अंक के साथ उपस्थित हूँ मैं आपका दोस्त सुप्रभात राय। स्वीकार कीजिए हमारा अभिवादन। श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के कार्यक्रम की रूपरेखा पर कि क्या कुछ सहेजा है हमने आज के इस कार्यक्रम में खास आपके लिए। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे समसामयिक खेल गतिविधियाँ, खेल जगत की रोचक खबरें, स्पोर्ट्स कॉर्नर में भेंट वार्ता सुनेंगे वाटर स्पोर्ट्स कैनोइंग और क्याकिंग में भविष्य कैसे बनाएं। साथ ही हमारे सवाल आपके जवाब में होगी आप सबों के खेल ज्ञान की परीक्षा। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खेल जगत के ताज़ातरीन हलचलों से हमारे नियमित स्तंभ खेल गतिविधियों में।

और खेल गतिविधियों की शुरुआत करते हैं एथलेटिक्स की खबरों से। पंजाब के गुरिंदर वीर सिंह भारत के सबसे तेज और एशिया के इस सीजन के दूसरे सबसे तेज धावक बन गए हैं। रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कप के दूसरे दिन गुरिंदर वीर ने 100 मीटर दौड़ में फाइनल में भारतीय एथलीटों के लिहाज से 10.09 सेकंड का अविश्वसनीय समय निकालकर न सिर्फ अनिमेश कुजूर का 10.15 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया, बल्कि जापान के फुकुतो कोमुरो के इस सीजन के एशियाई रिकॉर्ड 10.08 सेकंड को तोड़ने से मामूली अंतर से चूक गए। फेडरेशन कप में एक और बड़ी उपलब्धि सामने आई।

विशाल टीके ने 44.98 सेकंड में 400 मीटर की दौड़ पूरी की। वह 45 सेकंड के कम समय में ऐसा करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। हालांकि इससे पहले भी 400 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 45.12 सेकंड के साथ तमिलनाडु के विशाल टीके के ही नाम था। विशाल ने भी इस प्रदर्शन के साथ ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अपना टिकट पक्का कर लिया। दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो आखिरकार सऊदी अरब में बड़ी ट्रॉफी जीतने में सफल हो गए। पुर्तगाल के इस 41 वर्षीय स्टार खिलाड़ी के दो गोल की मदद से अल नसर ने दमाग के विरुद्ध 4-1 से जीत हासिल कर सऊदी प्रो लीग का खिताब अपने नाम किया। रोनाल्डो के अल नसर क्लब में शामिल होने के 3 साल से अधिक समय बाद ये टीम की पहली बड़ी ट्रॉफी है। पुर्तगाल की विश्व कप टीम में शामिल होने के जाने के ठीक 2 दिन बाद रोनाल्डो ने ये ट्रॉफी उठाई। रोनाल्डो रिकॉर्ड 6ठी बार विश्व कप में भाग लेंगे। भारतीय फुटबॉल के इतिहास में ईस्ट बंगाल ने नया अध्याय जोड़ दिया। लाल पीली ब्रिगेड ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीतकर 22 साल का खिताबी सूखा खत्म कर दिया। अपने अंतिम मुकाबले में ईस्ट बंगाल इंटर काशी को 2-1 गोल से हराकर चैंपियन बना। शुरुआत ईस्ट बंगाल के लिए अच्छी नहीं रही और इंटर काशी ने पहले बढ़त बना ली। इसके बाद ईस्ट बंगाल ने शानदार वापसी करते हुए 2 गोल दागे और मैच अपने नाम कर लिया। यूसुफ एजारी और मोहम्मद राशिद ने टीम के लिए गोल किए। अगले महीने अफगानिस्तान के विरुद्ध होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच और 3 वनडे मैचों के लिए मंगलवार को भारतीय टीम की घोषणा की गई। आईपीएल 2026 में कुछ खास नहीं करने वाले ऋषभ पंत की वनडे टीम से छुट्टी कर दी गई। इसके साथ ही टेस्ट में पंत से उप कप्तानी भी छीन ली गई। टेस्ट और वनडे टीम की कप्तानी शुभम गिल करेंगे। तो श्रोताओं, खेल खिलाड़ी को आगे बढ़ाने से पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

AIR at 90. अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है। खेल खिलाड़ी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आइए सुनते हैं खेल की रोचक खबरें।

अनुभवी गोलकीपर मैनुअल नुएर ने कोच यूलियन नेगल्समैन के कहने पर फुटबॉल से संन्यास का फैसला बदलकर 11 जून से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में शुरू होने जा रहे फुटबॉल विश्व कप के लिए जर्मनी की टीम में वापसी की है। 40 वर्ष के नुएर ने 2024 यूरो चैंपियनशिप के बाद फुटबॉल से विदा ली थी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रतिबंधित पदार्थों की आपूर्ति और वितरण को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी कानून में बदलाव किया जाएगा और ऐसे पदार्थों की खिलाड़ियों को आपूर्ति करने वालों को 5 साल तक जेल का सुझाव रखा गया है। बिली जेन ने 82 वर्ष की उम्र में ली डिग्री। महान टेनिस खिलाड़ी बिली जीन किंग ने जश्न मनाते हुए खुशी में अपना दाहिना हाथ उठाया, लेकिन ये टेनिस कोर्ट पर एक और जीत की खुशी नहीं थी। इस बार वह अपनी पढ़ाई शुरू करने के 65 साल बाद कॉलेज की डिग्री हासिल करने का जश्न मना रही थी। इस 82 वर्षीय दिग्गज ने सोमवार को एक समारोह में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से इतिहास में कला स्नातक की उपाधि हासिल की। बिली जीन ने बाद में कहा कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए देर कभी नहीं होती, फिर चाहे आपकी उम्र जो भी हो, चाहे आपकी क्षमता जो भी हो। हॉकी कोच बलदेव पद्मश्री से होंगे सम्मानित। हॉकी कोच बलदेव सिंह आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा जाएगा। अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी। बलदेव ने NH-44 पर बसे छोटे से शहर शाहबाद मारकंडा को बेहतरीन हॉकी प्रतिभा पैदा करने का एक बड़ा केंद्र बना दिया। खेल खिलाड़ी में अब आइए सुनते हैं एक भेंट पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता। वाटर स्पोर्ट्स कैनोइंग और क्याकिंग में भविष्य कैसे बनाएं? भेंट वार्ताकार हैं शाहबाज अंसारी, भेंट करता हैं मिलिंद गुंजन।

0: श्रोताओं नमस्कार। खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं वाटर स्पोर्ट्स कैनोइंग और कायकिंग के खिलाड़ी और कई मेडल जीतने वाले मोहम्मद शाहबाज अंसारी। बहुत बहुत स्वागत है आपका शाहबाज हमारे कार्यक्रम में।
1: जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी इस प्लेटफॉर्म आकाशवाणी बुलाने के लिए।
0: शाहबाज जी शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में जो टॉपिक है कि वाटर स्पोर्ट्स कैनोइंग और काइकिंग में भविष्य कैसे बनाएं, क्या है ये खेल और कैसे खेला जाता है, इस पर हम चाहेंगे हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताएं।
1: जी जी ये एक वाटर स्पोर्ट जो कि पानी में खेला जाता है, एक कश्ती नौ में हम लोग रेस करते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग कहा जाए तो कि बस एक हम लोग को रेस करना होता है इस गेम में।
0: जी जी
1: कैकिंग एंड कैनोइंग ये दो तरह की बोट होती है हमारी, जो कैक होती है जिसमें कि एक सीट होती है, हाँ, और एक पैडल होता है चप्पू जो दोनों तरफ मार के आगे बढ़ाया जाता है, और एक कैनोइंग जो होता है ना उसमें जो है ना नी पे घुटने पे बैठ के जिस तरह से हनुमान जी बैठते हैं ना नी पे उस तरह बैठ के एक तरफ चप्पू मार के चलाया जाता है। हाँ, तो इस तरह से कैकिंग एंड कैनोइंग ये दो तरह के बोट होते हैं। और मेरा जो गेम था वो था कैकिंग, उसमें मैंने
0: कई मेडल जीते।
1: जी जी जी
0: इससे पहले कि हम और बातचीत को आगे बढ़ाएं, कैसे रुझान हुआ आपका इन खेलों की तरफ? आप बहुत युवा हैं और इन खेलों में रुझान होना, तो कैसे आखिर आपके जहन में आया कि इस खेल की तरफ जाएं?
1: देखिए दो रीज़न था यहाँ पे, एक तो मेरा पानी के साथ लगाव था, अच्छा
0: जी जी,
1: एक तो मेरे को स्विमिंग नहीं आते थे फिर भी मुझे लगाव था पानी के साथ, और दूसरी रीज़न है कि मुझे एक अपना लेवल अप करना था गेम में, हमको कुछ अच्छा नया अचीव करना था, जैसे होता मेडल हमको लेने का था, तो दो रीज़न था बस, मुझे इस गेम में आने का यही रुझान मिला हमको, सबसे अच्छा लगा मुझे इस गेम में, और मैंने बहुत जल्दी इसमें ग्रो भी किया, मेडल भी लिया।
0: शुरुआत कहाँ से की आपने शाहबाजी इस गेम में? जैसे आपने इस गेम में आपका इंटरेस्ट जो था पानी की तरफ, आपका रुझान था पानी से, रुझान होते होते आपका इस गेम की तरफ रुझान हो गया।

0: मैं
1: तो
0: बताना
1: शुरुआत कहाँ से की
0: जी,
1: आपने?
0: मैं बताना चाहूँगा, मैं 2013 में जो मैंने पढ़ाई 12 किया, उसके बाद मैं जो है ना AI EEE का एग्ज़ाम दिया, लेकिन उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाया। फिर उसके बाद मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। जब ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन किया तो मुझे लगा कि मेरे पास बहुत टाइम है। और उस टाइम मैंने देखा एक लड़के को कि बॉक्सिंग में बहुत अच्छा
1: कर
0: परफॉर्मेंस
1: रहा
0: अप हो
1: था।
0: रहा था,
1: जी
0: तो
1: जी
0: मुझे भी एक्साइटमेंट आई कि मैं भी कर सकता हूँ, है ना। तो फिर मैं भी ना बॉक्सिंग में आया। मैं
1: जी
0: पहले क्रैकिंग खेलने में नहीं आया था। मैं इस आपको पहले बताना चाहूँगा
1: ठीक
0: कि
1: है, ये हमारे श्रोताओं के लिए एक नई जानकारी है
0: जी जी
1: कि
0: जी
1: आपने शुरुआत बॉक्सिंग
0: शुरुआत
1: से की
0: बॉक्सिंग
1: थी।
0: से की मैंने।
1: अच्छा
0: जी, मैंने बॉक्सिंग से शुरुआत की। और बॉक्सिंग में मैंने पहले डिस्ट्रिक्ट खेला,
1: जी
0: ठीक है, फिर उसके बाद स्टेट खेला, फिर उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में भी खेला। यूनिवर्सिटी में मैंने इंटर कॉलेज मैंने गोल्ड मेडल लिया। ये पहला बार मैं
1: बॉक्सिंग
0: तो
1: में।
0: जी बॉक्सिंग में मैंने पहला फर्स्ट ईयर में मैं सिल्वर मेडल में रह गया, गोल्ड मेडल नहीं ले पाया, जिससे कि मेरा ऑल इंडिया के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाया था। फिर मैंने सेकेंड ईयर दूसरी साल मैंने
1: जी
0: और इंटर कॉलेज में मैंने गोल्ड मेडल लिया, जो कि BN कॉलेज में हुई थी अपने भागलपुर में। तो फिर वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल लेने के बाद मुझे मेरा ऑल इंडिया में सिलेक्शन हुआ, जो कि मेरा ऑल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि फगवाड़ा पंजाब में है, वहाँ पे मेरा बॉक्सिंग का गेम हुआ था। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ मेरा वहाँ पे। फिर भी मैंने आके प्रैक्टिस किया दोबारा से,
1: जी
0: वहाँ पे मेरा मेडल नहीं लगा था, बट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था मेरा। बाकी मेरे बहुत लोग तारीफ़ कर रहे थे। फिर उसके बाद मुझे जो है ना मुझे एक अपने सर मिले, मनोज सर, जो कि हमारे थोड़ा सा पापा के दोस्त रह चुके थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम ये मेरे गेम में आ जाओ, ये बहुत अच्छा गेम है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ, वाटर स्पोर्ट, मेरा तो बन का चाहत था कि पानी में मेरा गेम होना चाहिए, थोड़ा पानी से लगाव भी था। तो उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ बेटा यहाँ पे मेरे गेम में। और एक्चुअली वो भागलपुर में सेक्रेटरी भी थे और अपने बिहार के सेक्रेटरी, और वो भागलपुर के ही थे एक्चुअली में।
1: अच्छा, रहने वाले
0: हाँ,
1: भागलपुर
0: वो
1: के थे और पूरे
0: भागलपुर,
1: बिहार के सचिव भी थे
0: जी
1: वो इस गेम के।
0: भागलपुर के सचिव भी थे और वो भागलपुर के रहने वाले थे। तो ये दो चीज़ अपॉर्चुनिटी मिला कि, और वो खुद उनके देख रेख में हमारा गेम हो रहा था, तो भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुमको स्विमिंग नहीं आती ना, तो कोई बात नहीं, तुम लाइफ जैकेट के साथ करो। फिर मैंने लाइफ जैकेट पहन के बिना स्विमिंग, नॉन स्विमर हो के भी मैंने गेम सीखा, और साथ में डेली का मैं स्विमिंग भी सीखता था, फिर कैकिंग भी सीखता था। दोनों चीज़ मैंने सीखते सीखते बहुत ही जल्दी मैंने गेम को अपना ग्रो किया।
1: कैकिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं चाचा,
0: जी
1: जिसकी शुरुआत आपने की, आपके एक पारिवारिक मित्र थे उनके कहने पे, तो
0: जी
1: जब आपने स्टार्ट किया, क्या उपलब्धि रही है अब तक आपकी इस खेल में, जिस खेल के विधा में आप आए?
0: जी मैंने जो ना 2016 में पहला नेशनल खेला, जो कि हमारी भोपाल में हुई थी। भोपाल में एक बड़ी तालाब है जिसको कहते हैं हम लोग बड़ी तालाब, वहाँ पे हमारी 2016 में पहली नेशनल हुई थी, जो कि मैंने बिहार को रिप्रेजेंट किया था। फिर उसमें बस मेरी स्टार्टिंग था कैकिंग कैनोइंग का। फिर सेकेंड ईयर 2017 में बिलावली तालाब, जो कि आपका इंदौर में है। फिर दूसरा साल मैंने वहाँ पर किया। धीरे धीरे मेरा इंक्रीजिंग होते गया, परफॉर्मेंस अप होते गया। फिर मैंने 2018 में छोटी तालाब पर मैंने गेम किया। उसके बाद फिर मेरा जो है ना यहाँ पर PG पॉलिटिकल साइंस में मेरा एडमिशन हुआ था उस टाइम। तो मेरा उसी साल 2018 में
1: जी
0: मेरा एडमिशन हुआ था PG डिप्लोमा PG में पॉलिटिकल साइंस में डिपार्टमेंट में। उस टाइम मेरा सिलेक्शन भी हो गया यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। तो फिर मैं यूनिवर्सिटी से भी खेलने गया था, बट आपका ऑल इंडिया जो बिहार को जो रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तगड़ा खेल होता है वहाँ पे, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: उसमें सर्विसेज आते हैं सर, बहुत
1: जी
0: तगड़े प्लेयर सब आते हैं वहाँ पे। मैं कितना भी परफॉर्मेंस अपना अप कर रहा था ना सर, फिर भी मेडल का बहुत ही मुश्किल था लेना मेडल वहाँ पे। और बट मैं यूनिवर्सिटी में खेला, तो यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि हमारे जो जितने पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं ना सर, वो लोग ही आते खेलते हैं। उसमें हमारा भीड़ कम था ज़्यादा,
1: जी
0: इसलिए अभी वहाँ पे मैंने अपना पहला गेम यूनिवर्सिटी की तरफ से जो खेला था मैंने पोंग डैम, जो कि हिमाचल में है सर। तो मैंने वहाँ पे पहला गेम खेला और पहला बार में ही मेरा ब्रॉन्ज मेडल, जो कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी को मैंने रिप्रेजेंट किया था।
1: तो फर्स्ट टाइम वो मेडल आपने दिलाया,
0: जी
1: ब्रॉन्ज
0: जी
1: मेडल।
0: जी सर, अपने भागलपुर यूनिवर्सिटी को।
1: ये एक बड़ी उपलब्धि थी, जबकि
0: हाँ
1: आपने
0: सर,
1: कहा कि वह
0: हाँ
1: बहुत जो
0: सर,
1: कंपटीशन था वो
0: ये
1: बहुत टफ था।
0: हाँ ये उपलब्धि के पीछे सर एक और छोटा सा स्टोरी है सर।
1: जी बिल्कुल, हमारे श्रोताओं के साथ साझा
0: जी
1: करें
0: सर,
1: शाबाश जी।
0: उस टाइम मेरे साथ बहुत ही बुरा स्थिति था मेरा, फिर भी मैंने उस टाइम एक मेडल को लेना सर बहुत बड़ी बात होती है सर। उस टाइम मैंने 2018 में 27 मार्च 2018 से लेकर 29 मार्च 2018 तक हुआ था,

0: मेरा गेम,
1: जी
0: उस बीच में मेरे पापा को कैंसर हो चुका था सर, और जो मेरे पापा का जो देहांत हुआ था 26 अप्रैल को हुआ था, यानी कि एक महीना पहले।

0: करते जा रहा था और मुझे एक डर था सर, पता नहीं, मेरी मम्मी को सबसे ज़्यादा डर था। मुझे तो डर था कि क्या पता, मैं हिमाचल जा रहा हूँ सर, हमारे भागलपुर से काफ़ी दूर है हिमाचल सर, वहाँ पे जाने के बाद ना सर क्या हो जाए, नहीं हो गया, फिर भी मेरे कॉन्फिडेंस था, घर वाले ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया
1: दिया।
0: कि हाँ तुम जाओ, खेल सकते हो, तुम इतना मेहनत कर रहे हो।
1: तो एक बार फिर अपने श्रोताओं को बता दें कि देखिए श्रोताओं, एक खिलाड़ी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है
0: जी सर,
1: और उनका जो समर्पण होता है उस गेम के प्रति,
0: उसके घर,
1: और
0: हाँ
1: इतनी विषम परिस्थितियों में, क्योंकि
0: जी सर,
1: आपके घर में आपके पिताजी उस तरह से बीमार पड़ गए अचानक,
0: जी
1: और
0: सर,
1: आप वो दुख और दर्द लेकर भी आप
0: लेके,
1: गए
0: जी
1: इस
0: सर,
1: गेम
0: जी
1: को
0: सर, जी
1: खेलने के
0: सर,
1: लिए।
0: और उस वक्त मैंने फिर एक ब्रॉन्ज मेडल लिया, एक ब्रॉन्ज मेडल भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास लेने, मेरी यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि ये सर हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत ही कम मेडल है ऑल इंडिया में,
1: ऑल इंडिया लेवल बिल्कुल।
0: बहुत कम है सर। हमने सर ना किसी को बिलीव नहीं था सर, जब मैं अपना भागलपुर से टीम लेके जा रहा था ना सर, किसी को बिलीव नहीं था, ये लोग तो सर ऐसा सबको लगता था क्या कि ये लोग तो जा रहा है खेल, कैसे आ जाएगा
1: एक
0: किसी
1: टूरिस्ट
0: को,
1: की
0: हाँ
1: तरह,
0: हाँ
1: टूरिस्टों की
0: टूरिस्ट
1: तरह
0: घूम
1: जा रहा है,
0: घाम के
1: घूम
0: आ
1: के आ
0: जाएगा,
1: रहा है।
0: ऐसा सबको लगता है सर। लेकिन मैंने बोला उस चीज़ में, सर हम मेहनत करते हैं सर, दिल से मेहनत करते हैं सर, घूमने नहीं जा रहा हूँ मैं सर,
1: मैं कुछ करने जा
0: कुछ
1: रहा
0: करने
1: हूं,
0: जा रहा हूँ
1: मेडल
0: सर,
1: आए नहीं है लेकिन कुछ
0: हाँ,
1: कर,
0: लेकिन
1: अपनी
0: हाँ मैं,
1: जो
0: मुझे कॉन्फिडेंस
1: उपस्थिति
0: था
1: है
0: सर,
1: वो
0: मुझे
1: बिल्कुल।
0: कॉन्फिडेंस था, मैं इतने घर में मेरी परिस्थिति ख़राब होने के बावजूद भी मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता था सर अपने भैरवा तालाब में, आप भैरवा तालाब को जानते ही होंगे
1: जी
0: जो
1: बिल्कुल
0: कि मारवाड़ी कॉलेज की यूनिवर्सिटी के सामने है सर,
1: जी।
0: वहाँ पे मैं रेगुलर प्रैक्टिस 2 टाइम, पहला टाइम मैं भैरवा तालाब में और दूसरा जमुना जो कि यूनिवर्सिटी के जस्ट पीछे है सर, वहाँ पर ही पानी सर जमावड़ा पानी का रहता है, और तीसरा जगह आपका भागलपुर में गंगा में, ये तीनों जगह मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ सर, और आपका सारंगी तालाब पे भी कर चुका हूँ सर, वहाँ पे मेरा गेम भी हो चुका है, ये जगह मेरा प्रैक्टिस का टाइम जगह था सर।
1: अभी आप कैसे इस गेम को लेकर के, अभी आप क्या कुछ कर रहे हैं शाहबाजी?
0: फिलहाल सर मैं इस गेम में अभी एक्चुअली क्या हुआ है सर, भैरवा तालाब जो है ना
1: जी
0: सौंदर्यीकरण हो रहा
1: हो रहा है
0: है,
1: उसका,
0: इस वजह से हमारा गेम वहाँ पे स्टॉप थोड़ा सा हो गया है सर, जैसे
1: अभी प्रैक्टिस
0: भैरवा
1: भी आप नहीं कर पा रहे हैं उसमें।
0: प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा प्लेस वही था सर एक्चुअल में।
1: अच्छा, गंगा नदी के किनारे ये शहर भी बसा भागलपुर,
0: मैं
1: तो क्या
0: एक,
1: गंगा नदी में इसकी प्रैक्टिस हो सकती है शाहबाजी?
0: हाँ मैं कहना चाहूँगा सर,
1: जी
0: क्योंकि ये गेम ना सर स्टील वाटर, वहाँ जहाँ पे पानी रुकी होती है ना
1: अच्छा,
0: सर,
1: बिल्कुल रुकी हुई जहाँ पे
0: हाँ
1: पानी
0: वहाँ
1: होता,
0: पे
1: स्थिर
0: गेम हो सकता,
1: पानी।
0: स्टील वाटर पे हो
1: हाँ
0: सकती है सर, जिस तरह से पानी में गंगा में वेव चलता है सर,
1: हाँ
0: हाँ
1: हाँ हाँ
0: हम वेव पे सर हम बोट को है ना
1: लेने जा सकते उसी गति से,
0: लेके जा सकते हैं सर, लेकिन
1: लेकिन
0: रेस
1: वो
0: नहीं करा
1: स्पीड नहीं,
0: सकते,
1: हाँ स्पीड नहीं कर
0: हाँ
1: सकते।
0: हम
1: हाँ
0: अपने बॉडी का जो स्पीड होगा ना वो नहीं कर पाएंगे, अगर पानी के वेव में चलेंगे तो मेरे बॉडी मेरे स्पीड से भी मेरे बॉडी के जो स्पीड होगा बोट के ऊपर उससे ज़्यादा गति में भागेगी, अगर उसके अपोजिट जाएंगे तो मेरे को सर जितना मारना था वो तो मार नहीं पाएंगे और स्लो चलेगी
1: तो
0: मेरी
1: ये भी एक
0: बोट।
1: जानकारी है हमारे श्रोताओं के लिए
0: जी सर, तो
1: कि
0: डरने की एक बात नहीं है, पानी का गेम है, आपको सेफ्टी बना के रखेंगे और सेफ्टी सेफ भी रहोगे और गेम भी खेलोगे, और नाम
1: 18
0: में मेडल दिया था मुझे विथ प्राइज मनी के साथ और शील्ड के साथ, मुझे वहाँ पटना में बुलाया गया था वहाँ समाज के, लेकिन उस टाइम क्या सर इस गेम को सचिवालय में जॉब में इसका नहीं था नाम, लेकिन इस साल इस गेम का भी नाम ऐड कर दिया गया है, अब इस गेम में कोई आते हैं मेडल लेके आते हैं तो उसको
1: उनकी
0: बिना,
1: नौकरी भी पक्की
0: हाँ
1: हो सकती
0: पक्की है
1: है। शहबाज जी,
0: जी
1: क्या
0: सर,
1: कहना चाहेंगे हमारे युवाओं से, अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जुड़े हैं, आप युवा भी हैं, आप बॉक्सिंग में भी आपने कई मेडल्स लाए अपने
0: जी सर,
1: भागलपुर के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए आपने
0: जी
1: रिप्रेजेंट
0: सर,
1: किया यूनिवर्सिटी को, और उसके बाद आपका इंटरेस्ट होता है वाटर स्पोर्ट्स में, कैनोइंग में, कायाकिंग में, और यहाँ भी आप मेडल लेकर के आते हैं, तो
0: जी सर,
1: चलते चलते आपकी ये दोनों उपलब्धियाँ,
0: जी,
1: तो क्या कहेंगे आप युवाओं से?
0: देखिए मैं तो यही कहूँगा कि देखिए पढ़ाई भी साथ में चलनी चाहिए, देखिए जब मैंने अभी पढ़ाई भी साथ में किया है, और पढ़ाई में सर पता है हमने आगे जो बीपीएड किया और एमपीएड किया वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया है सर, मुझे कोई पैसे नहीं लगे हैं सर, अभी ना बीपीएड करने में सर 1.5 से 2 लाख लग जाते हैं सर एमपीएड करने में, अभी मैंने सर सारे फ्री में किया है और मेडल भी लिया है अपना, और मेडल से पैसे ही मिलते हैं सर, ऐसा नहीं है, ऑफिस के बाद जॉब तो मिलते ही है सर, इसलिए मैं कहूँगा ना गेम में आने में सर बहुत फ़ायदे हैं
1: तो युवाओं के लिए क्या संदेश होगा शाहबाज
0: बहुत,
1: आपका?
0: और मेरे गेम में आप आओ और फिर इसमें बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है सर, इसमें अभी बहुत लोग डरते हैं वाटर स्पोर्ट्स से, तो डरने की एक बात नहीं है, पानी का गेम है, आपको सेफ्टी बना के रखेंगे और सेफ्टी सेफ भी रहोगे और गेम भी खेलोगे और नाम रोशन भी करोगे और जॉब भी पाओगे।
1: चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे श्रोताओं तक इतनी अच्छी बात को साझा करने के लिए शाहबाज जी आपका।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मुझे इस प्लेटफॉर्म तक बुलाने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ये थे हमारे साथ वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कायकिंग के मोहम्मद शाहबाज अंसारी, जिन्होंने कि यूनिवर्सिटी लेवल पर और स्टेट लेवल पर कई मेडल जीते हैं, और इन्होंने कहा है युवाओं से कि आप वाटर गेम है तो डरना बिल्कुल नहीं है, आप डर को त्याग दें और इससे दोस्ती करें और इस गेम में आएं, और भविष्य आपका इंतजार कर रही है और बहुत सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रही है।

0: ये बातचीत आपको कैसी लगी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता वाटर स्पोर्ट्स कैनोइंग और क्याकिंग में भविष्य कैसे बनाएं। भेंटवार्ताकार थे शाहबाज अंसारी, भेंटकर्ता थे मिलिंद गुंजन। खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में अब आइए, अब आगे सुनेंगे हमारे सवाल आपके जवाब।

श्रोताओं, पिछले सप्ताह का प्रश्न था, ओलंपिक खेलों में भारत ने अब तक कितनी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही जवाब है 8 बार। हमारा दूसरा प्रश्न था, उबेर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? इसका सही उत्तर है महिला बैडमिंटन। इन दोनों ही प्रश्नों का सही जवाब आप श्रोताओं ने लिख भेजा है। सैनिक रेडियो श्रोता संघ बबूरा वार्ड नंबर 10 धनकुंड से मोहम्मद परवेज आलम, मोहम्मद रियाज, एच ए स्वीट, अनाया परवेज, आतिफ परवेज, एजल परवेज। आकाशवाणी रेडियो श्रोता संघ बहादुरपुर बरियारपुर मुंगेर से कुमार रामदेव पटेल, झिकुलिया बेलहर बांका से रमेश शाह, ग्राम बेलोरा जिला गोपालगंज से देवेंद्र कुमार सिंह और उनके परिवार के सभी सदस्य, अली बक्स लेन मोहल्ला नाथनगर से हिबा फौजेल, दानियाल उमर, मायरा उमर, मोहम्मद फौजेल, जुबेर अंसारी, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से मीका विरक, बलविंदर मीरक, जयतेग विरक, हरदेव मीका, भानपुर भोपाल मध्य प्रदेश से रामगोपाल विश्वकर्मा, उमेश विश्वकर्मा, हिमांशु विश्वकर्मा, योगिस्ता विश्वकर्मा, लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर, कान्हा सफलता, कपिल मीनाक्षी, सत्यनारायण मनोहर बाई, प्रभुलाल बागड़ी, नीलकोटी मोहल्ला साहेबगंज भागलपुर से छोटू सृष्टि मोहित राज सोनम डॉक्टर सुभट्टू कुमार मंडल, मोहल्ला तातारपुर भागलपुर से नबा कौसर अरशान जडिस हजीक अहमद, ग्राम पोस्ट गोराडी से डॉक्टर हेमंत कुमार जीवेश नंदन नीलेश नंदन। आप सभी श्रोताओं को सही जवाब भेजने के लिए खेल खिलाड़ी की ओर से ढेर सारी बधाई। तो अब आइए सुनते हैं इस सप्ताह का प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, एशिया के दूसरे तेज धावक बनने का अवसर किस भारतीय के नाम दर्ज हुआ? प्रश्न फिर से सुन लें, एशिया के दूसरे तेज धावक बनने का अवसर किस भारतीय के नाम दर्ज हुआ? हमारा दूसरा प्रश्न है, किस जर्मन फुटबॉलर ने कोच के कहने पे संन्यास से वापस आने का फैसला लिया? इन दोनों ही प्रश्नों को उत्तर हमें आप एक सप्ताह के अंदर इस पते पर लिख भेजें। हमारा पता है, हमारे सवाल आपके जवाब, कार्यक्रम खेल खिलाड़ी द्वारा केन निदेशक, आकाशवाणी भागलपुर। हमारा पिन कोड है 812001। हमारी ईमेल आईडी है phairbhagalpur@gmail.com। सही जवाब भेजने वाले सभी श्रोताओं को खेल खिलाड़ी की ओर से बहुत बहुत बधाई। तो कार्यक्रम में इतना ही, अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खेल खिलाड़ी की पूरी टीम के साथ हमें यानी सुप्रभात राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे खेल गतिविधियों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। प्रस्तुतकर्ता थे मोहम्मद सरशार अहमद। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, इवनिंग न्यूज़ और फिर उर्दू खबरें। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। आइए शामिल होते हैं दिल्ली केंद्र के प्रसारण में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ. एन. राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2-3 के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई U23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
2: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
1: वायलिन वादक डॉ. एन. राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
2: पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती एन. राजम कला वायलिन।
1: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शिल्पधानी डॉक्टर आर. गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल, भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
4: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस एंड
5: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में

0: करना पड़ता है। इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फॉरेन एक्सचेंज।
2: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
3: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
4: Several key agreements were signed.
5: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
2: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
6: अगेंस्ट दी असेसमेंट ऑफ
0: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
6: लाइक मेट्रिक टन्स ऑफ इंपोर्ट्स हैव रीच्ड आवर शोर्स।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गई और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल

संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमानगेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरम मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. President Draupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Rashtrapati Bhavan. Noted film actor late Dharmendra and legendary violin maestro Dr. N. Rajam honored with Padma Vibhushan. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches initiatives aimed at strengthening MSMEs and accelerate modernization of rural industries. Joint operation underway to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in cable car system. 286 tourists rescued so far. Foreign ministers of India, Australia, Japan and US to participate in Quad meeting in New Delhi tomorrow. IMD forecasts severe heatwave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 to 3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Dhere clinch gold in men's freestyle category at Asian Under 23 Championships in Vietnam. And now the news in detail. President Draupadi Murmu today conferred the Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award.
5: Padma Vibhushan, Shri Dharmendra Singh Deol, Marnoprant, Kala Film Abhinay, Unki Patni, Shrimati Hema Malini.
4: The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam was also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were present on the occasion. More from our correspondent.
2: In the category of Padma Bhushan, former Uttarakhand Chief Minister and Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari was conferred with this award for his services in the field of public affairs, while BJP leader Vijay Kumar Malhotra was awarded posthumously in public service category. Besides, Satavadhani, Dr. R. Ganesh received the award in the field of art, while advertising legend Piyush Pandey was honored posthumously. Industrialist Uday Suresh Kumar Kotak received Padma Bhushan for his contribution in trade and industry, and Dr. Kallipatti Ramaswamy Palaniswamy received the award for his contribution in the field of medicine. Among those honored with Padma Shri include Indian women's cricket team captain Harmanpreet Kaur Bhullar, Taga Rambhil, Ratilal Mohanlal Borisagar, Swami Brahmadev and Kumar Bose. For the year 2026, the President has approved conferment of 131 Padma Awards including 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri. The remaining Padma Awardees will be conferred in the second round of the ceremony to be held later. Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
4: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched a set of strategic portals and initiatives aimed at strengthening the MSME ecosystem, enhancing last-mile credit delivery and accelerating the modernization of rural industries. Speaking at an event in Mumbai to mark the 37th anniversary of the Small Industries Development Bank of India or SIDBI today, Ms. Sitharaman called for increased focus on the three Fs, that is, fuel, fertilizer and forex, amid the ongoing West Asia crisis, while asserting that the Indian economy remains resilient.
6: The West Asia crisis not only is a diplomatic or a geopolitical issue. For businesses and common people, it can mean higher fuel cost, delayed cargo, costlier shipping, shortage of inputs, pressure on working capital and uncertainty in export orders. All of them coming together, it's a big challenge, not just for India, for many other countries. We must also recognize that India's domestic economic situation remains positive and resilient even today.
4: The initiatives launched include the SIDBI MacFin Mart, a digital platform to help MSMEs access machinery through a structured marketplace supporting price discovery, standardization and technology adoption. The Finance Minister also launched the RRB co-lending portal to operationalize partnerships between SIDBI and regional rural banks for improving credit flow in rural and underserved regions. Another major initiative launched was MORE, or Modernization of Rural Enterprises, a program aimed at providing transformational support to 10,000 rural micro and artisanal units over the next 3 years through cluster-based interventions. SIDBI Chairman and Managing Director Manoj Mittal said, The initiatives would improve credit access, promote technology adoption, and support modernization of rural enterprises, making them more competitive and future-ready. The Indian Army, NDRF, and the State Disaster Response Force, SDRF, are leading a rescue operation at the Gulmarg Gondola in Jammu and Kashmir following a technical malfunction in the Gondola cable car system. The fault caused a sudden suspension of services between the base station and Phase 1, leaving several tourists stranded today. In a statement, the Indian Army said that following a distress call from local authorities, rescue teams were swiftly mobilized to the site. According to the Indian Army, a total of 65 cable cars were affected due to the technical malfunction. Over 286 stranded tourists have been rescued by the personnel of Army, NDRF, SDRF, Gulmarg Police, Special Operations Group, GNK Armed Police and other units in the security agencies. Lieutenant Governor Manoj Sinha is personally monitoring the situation. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at TI News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on Air app. Welcome back. You're listening to News at 9. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi tomorrow. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi, and Secretary of State of the United States Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives, and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. In keeping with the Quad vision for a free and open Indo-Pacific, the ministers will build on discussions held in Washington, D.C. on 1st of July last year. Our correspondent has filed this report. The foreign ministers' meeting this year comes at a time of global uncertainty and West Asia crisis. India is hosting the meeting in its capacity as the current chair of the coalition. The Quad, comprising India, the US, Australia and Japan, has emerged as a key grouping largely focusing on peace, security and stability in the Indo-Pacific region. The Quad nations have come together with a commitment to work as a force for global good and to support an open, free and inclusive Indo-Pacific that is prosperous and resilient. Quad has adopted a positive and practical agenda focusing on contemporary issues and challenges such as health security, climate change, critical and emerging technologies, and strengthening the maritime domain awareness of regional countries. Suparna Saikia, Akashvani News, Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today held talks with his Japanese counterpart Motegi Toshimitsu in New Delhi. In his remarks during the meeting, Dr. Jayashankar said India and Japan have a special strategic and global partnership.
7: Between India and Japan, of course, we have a special strategic and global partnership, and that signals that our ties have a larger implication, importance, impact. Today, I look forward to discussing our bilateral cooperation, to discussing global and regional issues, particularly in this current situation, and West Asia is important.
4: Foreign Secretary Vikram Misri today received a call from Deputy Foreign Minister for Political Affairs of Iran, Majid Takht Ravanchi. The External Affairs Ministry said in a social media post that the discussions focused on recent developments in the region and a review of bilateral cooperation. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has written to all the states and union territories calling for safe, secure and successful conduct of NEET UG 2026 re-examination scheduled for the 21st of next month. Mr. Pradhan wrote to all chief ministers, lieutenant governors and administrators across the country seeking their cooperation in this regard. A Delhi court today convicted Congress leader Alka Lamba in a case related to an assault on police

0: in New Delhi tomorrow. IMD forecasts severe heat wave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 to 3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Dhere clinch gold in men's freestyle category at Asian Under 23 Championships in Vietnam. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमी मैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आज पद्म अवार्ड 226 पेश किए। मारूफ फिल्म अदाकार आजहानी धर्मेंद्र और शोहरा आफाक वायरन की माहिर उस्ताद डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से नवाजा गया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने MSMEs को मुस्तहकम करने और देही सनतों की जदीद कारी में तेज रफ्तारी लाने की गरज से कई स्कीमों का इफ्तिताह किया है। गुलमर्ग केबल कार सिस्टम में तकनीकी खराबी के बाइस वहां फंसे सयाहों को बहिफाजत निकालने के लिए मुश्तरका कार्रवाई जारी है। सभी 300 सयाहों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के वज़राए खारजा नई दिल्ली में कल क्वाड मीटिंग में हिस्सा लेंगे। महकमा मौसमियात ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इंतहाई शदीद गर्मी की पेशगोई की है। और कुश्ती में भारत के पहलवान विकी और अक्षय धीरे ने वियतनाम में 23 साल से कम उम्र की एशियन चैंपियनशिप में मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा सिविल इन्वेस्टर तकरीब में साल 2026 के लिए 66 अहम शख्सियात को आज पद्म अवार्ड से नवाजा। इनमें से 2 को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 शख्सियात को पद्मश्री से नवाजा गया। तकरीब के दौरान नायब सदर CP राधा कृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़रा अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और HD कुमारास्वामी इस मौके पर मौजूद थे। मारूफ फिल्म अदाकार धर्मेंद्र सिंह देओल को फन के शोबे में उनकी खिदमात के लिए बाद अजमर पद्म विभूषण से नवाजा गया। अदाकार की अहलिया और लोकसभा की मेंबर पार्लियामेंट हेमा मालिनी ने ये अवार्ड हासिल किया।
2: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
1: भारत की शोहरा आफाक वायलिन की माहिर उस्ताद डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से नवाजा गया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: पद्म भूषण के जुमरे में उत्तराखंड के साबिक वजीर आला और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को अवामी उमूर के शोबे में उनकी खिदमात के लिए ये अवार्ड दिया गया, जबकि विजय कुमार मल्होत्रा को बाद अजमर्ग अवामी खिदमात के जुमरे में इस अवार्ड से नवाजा गया। शतावधानी डॉक्टर आर गणेश को फनून लतीफा के शोबे में, जबकि एडवर्टाइजिंग से वाबस्ता पीयूष पांडे को बाद अजमर्ग ये अवार्ड दिया गया। सनतकार उदय सुरेश कुमार कोटक को तिजारत और सनत के शोबे में खिदमात के लिए और डॉक्टर कल्लीपट्टी रामास्वामी पलानी स्वामी को अद्वियात के शोबे में खिदमात के लिए अवार्ड दिया गया। पद्मश्री का एजाज हासिल करने वालों में भारत की ख्वातीन क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर भी शामिल हैं। 2026 के लिए सदर जमहूरिया ने 131 पद्म अवार्ड मंजूर किए थे, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। बाकी पद्म अवार्ड तकरीब के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे, जो बाद में मुनक्किद होगी। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीरुल फरीद।
1: मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज अंग्रेजी हर्फ F से शुरू होने वाली 3 चीज़ों के नामों पर मजीद तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत को उजागर किया है। ये 3 चीज़ें हैं ईंधन, कीमियावी खाद और ज़र मुबादला। इन दिनों जारी मगरबी बहरान की सूरत हाल के दौरान उन्होंने ये बात कही है। वजीर खजाना ने वाजह लफ्ज़ों में अलबत्ता ये भी कहा कि भारतीय मीशत ने मज़ाहमती सूरत हाल बरकरार रखी है। भारत के छोटी सनतों की तरक्यात से मुतालिक बैंक सिडबी के क्याम के 37वें साल के मौके पर मुंबई में एक तकरीब से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कलीदी नौयत के कई पोर्टल और

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा आपके साथ। आज का ये दौर जहां हर इंसान अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना व्यस्त हो चुका है कि अपनों खासकर अपने माता पिता के साथ बैठकर दो पल बात करने का समय भी मुश्किल से निकल पाता है। नौकरी की मजबूरियां, घर की जिम्मेदारियां और बेहतर भविष्य की तलाश में पलायन, इन सबके बीच सबसे ज्यादा अकेलेपन का सामना करते हैं हमारे बुजुर्ग। वो बुजुर्ग जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी, लेकिन बदलते समय के साथ उनकी जरूरतों को समझना और उन्हें सही सहारा देना आज समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनता जा रहा है। 2011 में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 10 करोड़ थी, जो 2036 तक दोगुना होकर 23 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। तो श्रोताओं, ऐसे में बुजुर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और मानसिक सहारे को लेकर नई सोच और नई पहल की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी सोच के साथ सरकार ने शुरू किए हैं जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड। आज पब्लिक स्पीक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू हुए इन प्रयासों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे। आपका स्वागत है मोनाली जी।
1: धन्यवाद मैम।
0: और श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। आप हमारे नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है वो डायल करें और उसके बाद ये नंबर डायल कर सकते हैं 2331-0481 या 2371-1111-7 2371-7106 और 2331-4444 हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और श्रोताओं, आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। मोनाली जी, सबसे पहले ये बताएं कि जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड क्या है और क्या उद्देश्य है इनका?
1: जीवन ऐप जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क है उसका फुल फॉर्म, और शतायु सीनियर्स होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी। जीवन ऐप, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि 2025 मई में माननीय राष्ट्रपति जी ने सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल को लोकार्पित किया था, उसी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमने यह मोबाइल ऐप बनाया जिसका नाम है जीवन जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क। अभी आपने कहा कि जैसे हमारे वरिष्ठ जनों की पॉपुलेशन 2011 में टोटल जो 8.4% थी, अभी 2036 तक 15% की ओर बढ़ेगी। तो अगर देखा जाए तो इसके अलावा हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 1947 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी सीनियर इंडियन की, वो 30 से 32 सालों के बीच से आज बढ़ के हो गई है 70.3। इसको सबको नजर रखते हुए, जैसे शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव, आपातकालीन सहायता, इन सब चीजों पे विचार करते हुए हमारे मंत्रालय जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, इन्होंने जब सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल लॉन्च किया, इसी के सीरीज में यह ऐप एक वन टाइम स्टॉप सॉल्यूशन जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए फायदेमंद होगा, इसी को लॉन्च किया गया है। दूसरा है शतायु। शतायु एक डैशबोर्ड है जहाँ पे ट्रेंड प्रोफेशनली ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर, अभी तक हमारे मंत्रालय ने जितने ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर्स किए हैं उन सब के बारे में वहाँ पे जानकारी है कि हमारे वरिष्ठ नागरिक अगर किसी को उनकी सेवा चाहिए तो वो वहाँ पे अपना ढूंढ सकते हैं।
0: जी, जेरियाट्रिक केयर गिवर्स की बात की, यानी जो बुजुर्ग देखभाल कर

कर्मियों की जानकारी जो उपलब्ध है। तो इसी से जुड़ा एक हमारे व्हाट्सएप पे सवाल आया और सीनियर सिटीजन के बहुत सवाल आए आज मोनाली जी हमारे पास व्हाट्सएप पे। और पहला सवाल ये है कि हाउ कैन आई गेट इन्फॉर्मेशन।

0: नंबर होगा जहाँ पे आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, जस्ट टू वेरीफाई कि आप एक जेन्युइन पर्सन है। एक ओटीपी आते ही आपका जेन्युइन चेक करके वहाँ के जितने प्रोफेशनल केयर गिवर्स है वहाँ पे एक मैसेज चला जाएगा उनको कि आप ये सेवा चाहती हैं। उसके हिसाब से जो भी फ्री होंगे या अभी कहीं काम नहीं कर रहे होंगे वो आपको कॉल बैक करेंगे आपके नंबर पे, और फिर आप उनकी सुविधाएं यूज कर
1: तो ये
0: पाएंगे।
1: नंबर्स रजिस्टर्ड होंगे, जैसे अगर हमने हमें ओटीपी आएगा और अगर कोई बुजुर्ग है वो चाहता है कि ये है, तो ये इसको अगर हम वेरीफाई करने के लिए तो उनके पास कुछ रिकॉर्ड होगा या मेडिकल हिस्ट्री भी ऐसी कुछ भी देनी होगी उस समय?
0: नहीं, एक सीनियर सिटीजन या उसके घर के परिवार वाले अगर फोन करते हैं तो उनको वेरिफिकेशन के लिए उन्हीं के मोबाइल पे ओटीपी आएगा
1: जी।
0: कि हमारे जेरेटिक केयर गिवर का वहां पे सिर्फ नाम होगा, वो किस जेंडर का है वो होगा, और
1: जी
0: प्रोफेशनली क्वालिफाइड है ये होगा,
1: जी
0: इसके अलावा वहां पे कोई जानकारी नहीं
1: जी
0: होगी।
1: और एक और सवाल आया है
0: नहीं,
1: हमारा,
0: इसका पार्ट टू
1: और
0: भी
1: ये
0: है।
1: हाँ, डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस के लिए, क्या पेड है, भुगतान देना पड़ेगा?
0: जी नहीं, किसी भी नागरिक को इस सेवा के लिए कोई भी भुगतान नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ एक ओटीपी से अपना जेन्युइनिटी वेरीफाई करना होगा। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी, जब आप इनकी सर्विसेज लोगे, आपने किसी की सर्विसेज हायर की है उस पे, तो इस हिसाब से आपका जो भी पेमेंट होगा वो आपके वहाँ के अवेलेबल चार्जेस पे आपको देना पड़ेगा, पर इसका पुलिस वेरिफिकेशन हो, कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो, वो आप ही को करना पड़ेगा। हम सिर्फ प्रोफेशनली ट्रेंड केयर गिवर्स दे रहे हैं।
1: जी, हम सब जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं और बाकी की जो प्रोसेस होगा वो अकॉर्डिंगली होगा।
0: जी
1: सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़े हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। हेलो।
2: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको आपको भी मालूम है कि सीनियर सिटीजन जब अपनी एज पे आ जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी कान सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है,
0: जी
2: वो फोन चलाने लायक नहीं रह जाते और कोई स्मार्टफोन नहीं चलाना जानता
1: जी
2: हो। कई लोग ऐसे हैं जो मोबाइल ही चलाना नहीं जानते, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है, तो ऐसे लोगों की क्या एक अलग ही प्रॉब्लम होती है? कोई बर्थ दिव्यांग है, किसी के दोनों पैर खराब हैं, वो अपने घर से तो निकल भी नहीं सकते,
1: जी
2: उनको तो
1: जी
2: लेटरिन बाथरूम बिठाने के लिए भी
1: जी जी जी
2: एक
1: मतलब
2: मिनट।
1: आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो स्मार्टफोन से या तकनीक से बहुत परिचित ना हो और जो ये एक्सेस ना कर सके तो उन्हें किस तरह से सहायता मिलेगी? जी धर्मवीर जी। और संजय सूरी जी का भी हमारे पास इसी से जुड़ा सवाल है व्हाट्सएप पे, कि जैसे जो कई बार सीनियर सिटीजन्स हैं जो वो बहुत सेवी नहीं है, जो मतलब टेक्निक्स और जो आजकल की जो नई सेवाएं आ रही हैं वो मोबाइल पे वो नहीं चाहते, तो उनके लिए ये कैसे हेल्प करेगी और कौन हेल्प कर सकता है इसको लेकर?
0: जी, इसमें एक हमारा एल्डर लाइन है 14567, ये नंबर हमारा एल्डर लाइन का है जो हमेशा इस ऐप से जुड़ा हुआ है। कोई भी वरिष्ठ नागरिक 14567 पे डायल करके जो भी सेवाएं हैं वो उसके बारे में तहत जानकारी ले सकते हैं।
1: जी
0: उसके लिए उस मोबाइल जानकारी होना या मोबाइल पे टेक सेवी होना जरूरत नहीं है।
1: जी थैंक यू मोनाली जी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न था जो हमारे एल्डरी के लिए। और एक और हमारा व्हाट्सएप पे प्रश्न है, ये है कमल कांत जी का हैदराबाद से, कि हाउ कैन सीनियर सिटीजन्स गेट हेल्प इन केस ऑफ इमरजेंसीज, अगर आपातकालीन कई बार होता है और बहुत इमरजेंसी कोई होता नहीं क्योंकि अकेलेपन में रहते अकेले रहते हैं, तो उस समय बुजुर्ग को, जो बुजुर्ग है वरिष्ठ नागरिकों को, किस तरह से सहायता सुलभ हो सकती है?
0: जी, थैंक यू कमलकांत सर आपके क्वेश्चन के लिए। जैसे मैंने कहा कि हमारे जो जीवन ऐप में भी और सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल पे भी आपको पता होगा राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 14567, तो यही सुविधा इमरजेंसी में हमारे वरिष्ठ नागरिक यूज कर सकते हैं। जब आप जीवन ऐप करते हैं तो इसका हमने 112 और 108 के साथ भी उसी पे एक सुविधा प्रदान की हुई है, जिसके माध्यम से आप तीनों नंबर्स पे कहीं भी अपना हेल्प या इमरजेंसी पे आप कॉल कर सकते हैं।
1: और एक बहुत ही विशेष अनुरोध आया है हमारे पास व्हाट्सएप से, कि आप प्लीज जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो मराठी में चाहते हैं, और उनका प्रश्न ये है, अरुण पवार जी हैं, उनका प्रश्न ये है कि हाउ कैन आई फाइंड नियर बाय वॉक इन सेंटर फॉर सपोर्टिंग एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस फ्रॉम जीवन मोबाइल ऐप? अनुरोध किया है उन्होंने बहुत ही।
0: थैंक यू अरुण पवार जी, मी तुम्हाला मराठीमध्येच उत्तर देईल। आमच्या याच्यात राष्ट्रीय वयोश्री योजनाच्या तहत पुष्कळसे सेंटर्स ऑनलाईन अवेलेबल आहेत, तुम्ही तिथे नाव टाका आणि तुमच्या जागेत तुम्हाला मिळेल।

0: अभी मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बोलना चाहूंगी कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत हम लोग जैसे कैंप्स लगाते हैं वो ऑनलाइन सेंटर्स के पूरी जानकारी 100 के करीब हमारे दिव्य वयोश्री केंद्र है वहां पे बुजुर्ग जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस की जरूरतें जो होंगी वो आधार कार्ड का देख के परिचय पत्र दे के ले सकते हैं. तो ये जानकारी ऑलरेडी हमारे जीवन ऐप पे भी अवेलेबल है
1: जी. और सवाल है गोपाल सोनी जी का राजस्थान के सीकर से और संजय सूरी जी का जो कई उनके जो प्रश्न हैं दोनों के वो समान है. उनका कहना है कि ये जानना चाहते हैं कि जो ऐप लॉन्च किए गए हैं उसमें जो वरिष्ठ नागरिकों को किस प्रकार से लाभ मिलेगा.
0: जी संजय सूरी जी और गोपाल सोनी जी
1: जी
0: आपके सवालों के लिए तो पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि जीवन ऐप के बारे में मैं अभी थोड़ा सा विस्तार से आपको जानकारी देना चाहूंगी. जीवन ऐप में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आसपास के सीनियर सिटीजन होम जिसको हम वयो आश्रम बोलते हैं उसकी पूरी जानकारी जो हमारे मंत्रालय से ग्रांट्स पाते हैं उनकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी विद ज्योग्राफिकल लोकेशन नाम पता. दूसरा है एल्डर लाइन जैसे मैंने कहा 14567 उसका 112 और 108 के साथ. तीसरी है हमारे राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत जितने कैंप्स लगने वाले हैं और जितने वॉक इन सेंटर्स हैं उसके बारे में. चौथी जानकारी आपको मिल सकती है जहाँ पे हमारे बहुत से सीनियर सिटीजन जो है अपने पेंशन योजना के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या स्कीम है कहाँ से लिया जाए या फिर आयुष्मान भारत कार्ड जो है जहाँ कहाँ से मिल सकता है क्या क्या सुविधाएं हैं कहाँ अप्लाई करना हो इन सब के बारे में इस प्रोग्राम पे हम लोगों ने एक इंटीग्रेशन शुरू किया हुआ है. इसके अलावा हमारे जितने भी समझौता ज्ञापन हुए हैं MOU हुए हैं वो आयुष डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हो ब्रह्म कुमारीज हो वेव विकास हो या जिस भी संस्थाओं के साथ हमारा काम चल रहा है हमारे जितने भी स्कीम्स के बारे में जो हमारा ब्यौरा है हम लोग इंटरजनरेशनल बॉन्डिंग के प्रोग्राम कर रहे हैं हमारे जो भी नए पहल हैं इसकी गैलरी है मैसेजेस है अनुभव बोलता है जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स आके भी बोलते हैं तो ये सब जानकारी आपको उस जीवन ऐप में भी उपलब्ध होगी.
1: और संजय सूरी जी का एक और दूसरा प्रश्न ये है क्योंकि जैसे आपने अभी मराठी में जवाब दिया तो ऐसे कई श्रोता जानना चाहते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी जो सुविधा दी जा रही है तो उपलब्ध होगी.
0: जी इसका इसका प्रयास चल रहा है और तुरंत ही उपलब्ध हो जाएगी
1: ताकि लोगों को आसानी हो.
0: जी, जो संजीवनी
1: संजय सूरी जी और सासाराम बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी.
2: जी नमस्कार मैं सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ. इसमें मैडम ने अभी बताया बहुत अच्छा कि दूर दराज तक कैसे हम लोग इसको पहुंच बना सकते हैं. मेरा इसमें एक इसमें और ऐड करना था कि क्या जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो दूर दराज तक जो उसमें कुछ ऐसा रेशियो भी है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सुरक्षित नहीं सकते हैं तो उन तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं. तो इसमें ये हो सकता है कि जैसे सेवा केंद्र के माध्यम से या कुछ ऐसा अपॉइंटमेंट हो जैसे अभी ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बैंक की जो सेवाएं हैं वो लगातार पहुंच पर नहीं उसके हिसाब से कुछ ऐसा प्रोग्राम करके ताकि वहां तक दूर बैठे लोगों तक भी वो पहुंच सके. जो मैडम ने बताया था बहुत अच्छा अच्छा है. ये भी हो सकता है कि कुछ 10% 20% जो भी थोड़ा वो छूट भी जाए तो वहां तक हम लोग पहुंच बना सकते हैं. जी
1: सुझाव दे रहे हैं अमित जी की दूर दराज क्षेत्रों तक अगर पहुंच बढ़ानी हो तो.
0: जी अमित उपाध्याय जी सासाराम से थैंक यू आपके प्रश्न के लिए. हमारे बिहाफ पे हमारे स्टेट गवर्नमेंट जितने भी है वो भी हमारे तहत हमारा बहुत सा कार्यक्रम इस पे सुचारू रूप से चलाते हैं. तो यही नहीं है कि केंद्र में ही हम चला रहे हैं पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर या सामाजिक न्याय मंत्रालय जो आपके स्टेट के हैं बिहार के जैसे तो आप वहां भी जाके उनसे ये मांग सकते हैं. वहां भी वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक वेलफेयर ऑफिसर होता है. तो हमारी पहल ऑलरेडी स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ पहल शुरू हो चुकी है कि आप तक हम पहुंचे.
1: जी हाँ तो सिर्फ ये शहरों तक सीमित नहीं है तो पूरे देश में हर कोने तक इस सुविधा को पहुंचाने का लक्ष्य है सरकार का. मोनाली जी अगर देखूं जैसे हमने शुरुआत में अकेलेपन की भी बात की तो जो वरिष्ठ नागरिकों के जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अगर हम बात करें तो ये कितनी उपयोगी हो सकती है.
0: मैं इसमें एक आपको उदाहरण पेश करना चाहूंगी. हमारा जो 14567 है इस पे बहुत से हमारे सीनियर सिटीजन हैं 40-45 मिनट सिर्फ बोलते हैं क्योंकि अकेले रहते हैं.

0: तो उन्हें कोई बोलने वाला चाहिए। तो ऐसे हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं जहाँ पे बुजुर्ग हमसे बातें करते रहते हैं। तो इसके साथ साथ हम भी, हमारे मंत्रालय ने, माननीय मंत्री जी ने भी इंटर जनरेशन बॉन्डिंग पे काफी जोर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के साथ भी हमने ऐसे बहुत से प्रोग्राम साझा करने चाहे हैं, वॉकथॉन्स करते हैं इंटर जनरेशन बॉन्डिंग के नाम पे, बहुत से हमने सीरीज भी शुरू की है। तो हर तरह से प्रयास स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है कि हम ये जो सामाजिक इंक्लूसिव सोसाइटी हमारे बुजुर्गों के साथ एकजुट होके चले का प्रयास करते हैं कि वो अकेलापन महसूस ना करें।
1: जी हाँ, तो मतलब इसमें जो है कई समाजसेवी संस्थाएं भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकती हैं।
0: जी
1: ठीक है, मतलब ताकि जो ज्यादा लोगों तक अगर हम हो तो पहुंच बना सके। तो अगर मैं एक संक्षेप में जाना चाहूं, आपने जैसे कुछ कुछ योजनाएं बताई और जैसे आयुष्मान योजना है, तो क्या ये भी हमें उपलब्ध होगी? और जो बेसिक योजनाएं हैं वयोवृद्ध जो हमारे जन हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, तो एक बेसिक जानना चाहती हूँ कि मुख्य तौर पर क्या क्या योजनाएं हैं, आप संक्षेप में बताएं।
0: अभी तो हमने जो जीवन पोर्टल जो लॉन्च किया है उसमें हमने आयुष्मान भारत जो हमारे सीनियर सिटीजन या सीनियर नागरिकों के लिए हैं, आभा कार्ड, उसकी उसके लिए हमने प्रयास किया है। ओल्ड एज पेंशन जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देता है उसके लिए प्रयास किया है। जीवन प्रमाण जो पोस्टल और बाकी मिनिस्ट्रीज देती है उसका भी इंटीग्रेशन चल रहा है। तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स है जो हमने अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाते हैं भारत सरकार, उसका बैक एंड से इंटीग्रेशन हमने अभी धीरे धीरे शुरू किया हुआ है इस पोर्टल के माध्यम से, कि हमारे बुजुर्ग वन स्टॉप सॉल्यूशन या वन प्लेटफॉर्म पे ही उन सबको ये मिल जाए।
1: अच्छा, मतलब एक ही जगह पे, क्योंकि कई योजनाएं हैं, कई जो उसके एप्स भी उपलब्ध हैं, लेकिन एक ही जगह पे सारी योजनाएं उपलब्ध है, तो उससे बहुत सहूलियत होगी जो हमारे वृद्ध जन है। पुणे से जुड़े हैं श्रीपद झाकड़े जी।
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो,
1: नमस्कार श्रीपद जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: जी धन्यवाद, मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ पुणे से। तो मेरा सवाल ये है कि मैं दृष्टिहीन हूँ और वृद्धाश्रम में रहते हैं, मतलब हम तो मतलब हम लोगों को किस प्रकार इन सेवाओं का लाभ मिल सकता है? कारण हमारे पास कोई स्मार्टफोन भी नहीं है और कोई हम ऑपरेट नहीं कर सकते, तो हमको कैसे मतलब इसका उपयोग हो सकता है मतलब हम लोगों को?
1: जी हाँ, दृष्टिहीन है और वृद्धाश्रम में रहते हैं, स्मार्टफोन नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए क्या उपाय है?
0: श्रीपाद जी, आप पुणे से बोल रहे हैं, सीनियर सिटीजन होम से?
1: जी अब डिस्कनेक्ट हो गया है, पर हाँ जी हाँ, उन्होंने बताया वृद्धाश्रम,
0: वृद्धाश्रम से रहे। तो हमने जो जीवन ऐप लॉन्च किया है इसमें तो हर जानकारी है। इसके अलावा जितने एनजीओ जो सीनियर सिटीजन होम्स को कार्यान्वित कर रहे हैं, जो मेंटेन कर रहे हैं, वो भी इस ऐप को देख के जो जो कार्यक्रम आसपास हो रहे हैं उसकी पूरी जानकारी उस पे है। आप अपने मैनेजमेंट स्टाफ को भी पूछ के ये जानकारी वहां से ले सकते हैं।
1: जी हाँ, तो बहुत इजी करने की कोशिश की गई है और आप तक पहुंच बढ़ाने की सरकार की कोशिश की गई है। अगर मैं विशेषता जानना चाहूँ इस ऐप की और इस डैशबोर्ड की, तो क्या है जो बुजुर्गों के लिए हो, क्योंकि जो टेक्निकल जो इतने सेवी नहीं है और स्मार्टफोन जिनको चलाने इतने खास नहीं आते, तो ऐसे में उनके लिए क्या विशेषता है?
0: पहले बात करते हैं शतायु की। शतायु नाम ही इसलिए हमने दिया है कि आप 100 साल जिए, तो हम आपके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य या भावनात्मक सामाजिक जुड़ाव के लिए हमने शतायु ऐप नाम उसका किया है, जहाँ पे आपकी सुविधा के लिए जेरियाट्रिक केयर गिवर्स की मदद मिले कि आपको डेली कंपेनियनशिप हो, आपके वेलबीन के लिए हो, योगा हो, इन सब के लिए आपको मदद मिले। आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, ऐप पे जाके आप सीधा आपके आसपास के जितने प्रोफेशनली ट्रेंड है उसके बारे में जानकारी करके उनकी सर्विसेस ले सकते हैं। अब आते हैं हम जीवन ऐप पे, जो दूसरा हमने पोर्टल लॉन्च किया है जीवन, उसके तहत ना ही जैसे मैंने कहा कि सीनियर सिटीजन होम्स, राष्ट्रीय वयोश्री कैंप और बाकी भी है, इसके अलावा बहुत से ऐसे भी हमारे पास कार्यक्रम होते हैं जिसपे आप डायरेक्टली लॉग करके आप इसके ऑनलाइन जुड़ के भी आप ले सकते हैं जानकारियां।
1: जी जी, तो मतलब आप जानकारी लेना भी आपके लिए आसान, और सबसे आसान तो ये है कि जो आपने एल्डरली जो हेल्पलाइन नंबर बताया हुआ है, तो 1-4-5-6-7-1-4-5-6-7, इस पर अगर आपको कोई भी शंका, कोई भी दुविधा है, तो आप इस नंबर पर डायल करके अपने सवाल के जवाब पा सकते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से जुड़े हैं रशीद अहमद खान जी।
3: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार
3: आप सभी लोगों को।

0: आगामी पर्व जो है की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।
1: जी धन्यवाद
0: जी। और हाँ जी, तो मतलब सवाल मेरा ये है कि क्या जितने वरिष्ठ नागरिक लोग रहते हैं या अकेले रहते हैं या किसी परिवार में भी है मान लें, क्या उनको कोई वैधानिक समस्या आ रही है, उनके परिवार के लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं या मतलब टॉर्चर कर रहे हैं, कुछ कानूनी हेल्प मिलती है उनको?
2: जी रशीद जी, आपके सवाल के लिए धन्यवाद। और जैसे मैंने कहा कि 14567 ये जो हेल्पलाइन है, इसके तहत आपको ये सब जानकारी और मदद तो मिलेगी मिलेगी। इसके अलावा 112 जो आपका ERSS नंबर है, इस पे भी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जिस पे आपको बाकी मदद भी वहां के वहां पहुंचाई जाएगी।
1: जी हाँ, तो दो नंबर्स मैम ने बताए हैं, 14567 और जो कनेक्टेड है 112 के साथ भी। तो कोई भी आपात स्थिति हो, इमरजेंसी हो, तो आप इन नंबर्स पे डायल करके आप सेवा ले सकते हैं। अगर जैसे वरिष्ठ लोगों को जो इतने अगर नहीं सुन रहे हैं कार्यक्रम या उन तक ये पहुंच नहीं हो पा रही है कि ये जो सुविधा सरकार ने शुरू की है, तो उन तक इस बारे में जागरूकता लाने के लिए, इन सेवाओं के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?
2: एक तो मुझे आकाशवाणी का थैंक यू बोलना चाहिए, अभी पब्लिक लाइव हुए हैं तो सब पब्लिक जहां भी है वो सुन रहे हैं, तो एक तो ये पब्लिक डिसेमिनेशन है ही
1: जी
2: प्रेस के तहत, और स्टेट गवर्नमेंट जैसे मैंने कहा कि हमारे बिहाफ पे वो भी बहुत से प्रोग्राम चलाते हैं, तो उनके तहत भी हम ये जीवन ऐप जो है वो भी इसके बारे में वहां पे इंफॉर्मेशन देंगे, तो हर वरिष्ठ नागरिक तक पहुंचने की हम लोग जरूर प्रयास कर रहे हैं।
1: जी हाँ, जैसे हमने जेरेट्रिक केयर गिवर्स की बात की और जैसे हमें तो खैर उस बारे में जानकारी उपलब्ध होगी, पर अगर हम हर क्षेत्र की बात करें तो वहाँ जब भुगतान करना है तो अगर हम जाएं दूर दराज के क्षेत्रों में और जो भुगतान सेवा है तो उधर भी उपलब्ध होगी, जो ये प्रोवाइडर्स होंगे, केयर गिवर्स जो होंगे, जो स्वास्थ्य देखभाल जो कर्मी होंगे, कि वहाँ पर भी उपलब्ध होंगे ये इतनी दूर दराज के क्षेत्रों में भी?
2: जी, अगर वहाँ पे जैसे दूर से कोई ट्रेंड है उस जगह से, जैसे बिहार से सासाराम से, अगर वहां पे कोई प्रोफेशनली ट्रेंड जेरेट्रिक केयर गिवर है तो उसके आसपास के लोकेलिटी में जितने लोग हैं उस डिस्ट्रिक्ट में वो उसकी पूरी जानकारी वहां मिल जाएगी।
1: जी दिल्ली से जुड़े हैं राजकुमारी जी।
3: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
3: मैं राजकुमारी रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ
1: जी
3: और दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी आयु 82 वर्ष है मैडम
1: जी।
3: आपके मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया जीवन ऐप क्या है और सीनियर सिटीजन्स को इससे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी मैडम?
1: जी राजकुमारी जी, एक बार आपसे गुजारिश है, फिर से बता दें ऐप के बारे में और क्या इससे लोगों को फायदा होगा।
2: नमस्कार मैम, जीवन जॉइंट एंडली एम्पावर एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क ऐप है, जो एक मोबाइल सॉल्यूशन है। जीवन ऐप में आपको आपके आसपास होने वाले सीनियर सिटीजन होम्स हो, राष्ट्रीय वयोशी कैंप्स हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन या वॉक इन सेंटर जहाँ पे आप जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस ले सकते हैं, इसके अलावा एल्डर लाइन जो हेल्पलाइन है और 112, इसके बारे में आप जानकारी, आपको किसी भी चीज़ की अगर कोई ज़रूरत हो तो इस वाले में 112 और 14567 पे डायल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी जो जैसे आभा कार्ड है या वयोश्री पेंशन योजना है या जितने भी सीनियर सिटीजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐप्स है, उसका इंटीग्रेशन के बारे में जो प्रयास चल रहा है, तो इसकी सब जानकारी जो हमारे वयोश्रेष्ठ नागरिक है उनको मिलने के लिए हमारा मंत्रालय का एक छोटा सा प्रयास है।
1: जी, तो इसमें जैसे आपने स्टेट गवर्नमेंट की भी बात की, तो राज्य सरकारों की क्या भूमिका रहेगी?
2: राज्य सरकार की भूमिका ये होती है, जैसे हम बड़े मेजर इस पे काम करते हैं, वो माइक्रो लेवल पे काम करते हैं, जहाँ पे वो हर व्यक्ति के आसपास के या उस स्टेट्स के रिलेटेड की ज्यादा जानकारी उन्हें होती है। एक माइक्रो लेवल पॉलिसी हम बना लेते हैं, पर वो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम मोस्टली राज्य सरकारों का होता है, क्योंकि वो एक आम नागरिक से जुड़ते हैं, हम लोग डायरेक्टली नहीं जुड़ पाते, तो हमारा माध्यम होता है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। तो वहां पे जितने मेडिकल कैंप्स लगने हैं, ऑपरेशंस कैटरैक्ट के होने हैं, या जो ट्रेनिंग करवानी है, या डिमेंशिया स्क्रीनिंग हो रही है, तो वो सब जानकारी जो भी कैंप्स करवाने या जो भी आईसी मटेरियल की जानकारी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है।
1: जी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जुड़े हैं रमा शंकर जी।
4: नमस्कार।
1: नमस्कार,
4: हाँ जी।

0: सकते हैं। मैं ये पूछना चाहता था कि जैसा बहुत लोगों ने प्रश्न किया है कि जो वयोवृद्ध हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, जो स्मार्टफोन नहीं चलाते हैं, दूर दराज गांवों में रहते हैं, उनके लिए ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था हो सकती है, यह व्यवस्था क्या की गई है, कृपया बताएं।
1: ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था है कि उन तक ये जो फायदे हैं और ये जो योजनाएं हैं, ये प्रयास है पहुंचे।
2: रामाशंकर जी, आपको मोबाइल टेक सेवी होने की जरूरत नहीं है। आप 14567 डायल करते ही आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि इस ऐप में क्या है, या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए मंत्रालय का क्या दायित्व है और मंत्रालय के क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं।
1: अगर उन्हें का स्मार्टफोन भी नहीं है तो क्या करें?
2: 14567 में आपको स्मार्टफोन की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल इससे भी आपका वो टोल फ्री नंबर है, आप डायल कर सकते हैं।
1: जी हाँ, तो अब आपकी जो समस्या था उसका निजात कर दिया मोनाली जी ने, मध्य प्रदेश
2: मंत्रालय ने।
1: जी राजेश नेमा जी।
3: जी
1: जी राजेश जी, आपका सवाल क्या है?
3: जी मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ।
1: जी
3: तो मेरा सवाल ये है कि वर्तमान की जो आपाधापी है उसमें घर में जो बुजुर्ग रहते हैं वो परिवार से तालमेल नहीं बिठा पाते, तो इस स्थिति में वह ऐप क्या मदद कर सकता है?
1: जी राजेश जी, अब अक्सर आप देखिए कि सवाल ये है कि आपस में अगर घर में थोड़ा सा मनमुटाव रहता है तो स्थिति में ऐप का, हालांकि मैम ने बताया कि नंबर ही है 14567, और इसके अलावा क्या उन तक सहायता हो सकती है? मोनाली जी,
2: राजेश जी, जैसे हमने कहा कि परिवार के अंदर तो हम नहीं जाएंगे, परिवार का आपसी मनमुटाव तो अपना पारिवारिक जीवन ही होता है, पर इसके अलावा अगर एब्यूज हो रहा है, मारपीट हो रही है, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आप 112 और 14567 पे जरूर आप इस पे रेस करिएगा, हम आपके लिए जस्ट वन कॉल अवे हैं।
1: जी तो अगर हम युवा पीढ़ी की बात करूं इसमें, तो युवा पीढ़ी किस तरह से सहायता दे सकती है?
2: जी थैंक यू इस सवाल के लिए। हमारे आदरणीय मंत्री जी भी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी इसके लिए काफी प्रयास करते रहते हैं कि हम इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग और युवाओं को कैसे शामिल किया जाए कि हम बुजुर्गों के प्रति सम्मान बढ़ाए जाए, तो इसके साथ हमने बहुत से ऐसे कुछ कार्यक्रम चलाने की कोशिश की है, जैसे ग्रैंड पेरेंट टीचर मीट स्कूलों में हो जाए, वॉकथॉन्स हो जाए, प्लेज ऑनलाइन प्लेजेस लेने चाहिए, तो इवन जेरेट्रिक केयर गिवर जो है वो युवाओं के लिए ही है कि आज का युवा कल जाके जो बुजुर्ग हो तो उसके लिए वो अपने घर वालों की कैसे सेवा कर सकता है, तो इससे हम युवाओं को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
1: तो अगर मैं भविष्य में देखूं, अगर आपने जैसे योजनाएं बताई, जो स्कीम्स बताई इसमें है, तो और आगे भविष्य में किस तरह की चीजें इसमें एड ऑन करने की आपकी वो है योजना है?
2: जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी वरिष्ठ नागरिकों के प्रति हमारा जो दायित्व है और दो पिलर्स है, एजिंग विद डिग्निटी और एजिंग एट प्लेस, हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा बुजुर्ग जो है अपने घर में ही रहे और पूरे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यापन करे। तो इसके, जैसे मैंने कहा कि पहले भी हमने बहुत से ऐप्स को जोड़ने की कोशिश की है, हमसे यही रहेगी उम्मीद कि हम और इस पे जोड़ते जाएं।
1: जी धन्यवाद मोनाली जी इस बारे में जानकारी देने के लिए। अगर देखें तो ये जो दोनों चीजें हैं, जीवन ऐप और डैशबोर्ड, ये शतायु डैशबोर्ड है, तो तकनीक और संवेदनशीलता का ये बहुत ही अनोखा संगम है जो बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं, सहायता, देखभाल और सरकारी सुविधाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है। तो ये पहल हमारे बुजुर्गों के जीवन में उम्मीद, सुरक्षा और सम्मान को नई रोशनी देगी, यही उम्मीद करते हैं। आप स्टूडियो में आई और विस्तार से चर्चा की इस बारे में धन्यवाद, और अपने श्रोताओं का भी धन्यवाद करते हैं जिनके व्हाट्सएप पे हमें प्रश्न मिले और जिनके हमें कॉल्स आए, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले सप्ताह सोमवार को फिर मुलाकात होगी। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मैहर बैंड पर बजाया राग झिंझोटी।

राग झिंझोटी के बाद आप सुन रहे थे मेहर बैंड पर बजाया राग बिहारी। शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। हाजिर हैं हम लेकर आपके फरमाइशी पत्रों और ईमेल्स पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी।

सुनने वाले की खिदमत में विशाल आनंद का प्यार भरा नमस्कार। ये पहला गाना हमने लिया है फिल्म धूल का फूल से। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार एन दत्ता, युगल आवाजें महेंद्र कपूर एवं लता मंगेशकर की। और इस गीत को सुनवाने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है आप श्रोताओं ने। जिला छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्रजाक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के और यज्ञेश घोड़के। शुभानपुर कटोरिया खजांची टोला से इस गीत को सुनवाने की फरमाइश लिख भेजी है शहादत अली, शाकिल शहादत सिदरा और शाहिना परवीन ने। ग्राम पोस्ट गोराडी डिस्ट्रिक्ट भागलपुर से ये पत्र है। लिखने वाले हैं डॉक्टर हेमंत कुमार, आनंद प्रियदर्शनी एंड और नीलेश प्रियदर्शनी। मधेपुरा से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं संगम कुमारी और ऋषभ राज। जिला पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा झारखंड से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं शिवा गोप, प्रेम गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। छत्तीसगढ़ रिंगनी से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं दिनेश वर्मा, करुणा शर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। लालूचक भागलपुर से ये पत्र है। लिखने वाले हैं सागर बादल, चेतना, गायत्री देवी, विष्णु कुमार चौधरी, रामदेव प्रसाद चौधरी और इनके सभी मित्रगण। चांदपुर गोगरी जिला खगड़िया से ये पत्र है। लिखने वाले हैं जानकी प्रसाद मंडल, रीता देवर देवी, रेखा, पूनम, नंदू मंडल और घर के सभी सदस्य। और ये पत्र आया है उत्तम नगर नई दिल्ली से। लिखने वाले हैं गौरव मदल, मदन, अनिल, मानसी, कविता अरोड़ा और इनके परिवार के सभी लोग। आप सबों की मिलीजुली फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

अनवर एवं सुलक्षणा पंडित के युगल आवाज़ में अब आपको सुनवाते हैं फिल्म थोड़ी सी बेवफाई का ये गीत। गीत के बोल गुलजार के हैं और संगीत तैयार किया है खय्याम ने। और इस गीत को सुनवाने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है आप श्रोताओं ने। मधेपुरा अनिरुद्ध चौक से ये पत्र है। लिखने वाले हैं प्रेमचंद ठाकुर, मीना ठाकुर, राज ठाकुर, मुरारी ठाकुर, ऋषि ठाकुर, संजू मिश्र, सुभाष मिश्र, भवानी, लव कुश और अरुण झा। किशनगढ़ अजमेर से ये पत्र है। लिखने वाले हैं शैलेश झा और इनके परिवार के सभी लोग। नवगछिया मुमताज महल्ला से ये पत्र है। लिखने वाले हैं जफर अंसारी, अथर अंसारी, शौकत अंसारी और इनके सभी मित्रगण। कहलगांव पूरब टोला वार्ड नंबर 15

पांडे गली से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं सुजीत रॉय, दीपांकर राय और तमाम रॉय परिवार। सदरुद्दीन चक से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं मोहम्मद शहजाद हाशिम, मोहम्मद हाशिम उद्दीन और परिवार के सभी सदस्य। सैलबाग भागलपुर से ये पत्र आया। लिखने वाले हैं अभिजीत, अभिषेक, सोनी, सोनू, भाव्या, पारस, आदित्य, प्रीति और मोनी। दिल्ली शहर से ये पत्र है। लिखने वाले हैं हीना नाज, आदिबा और फातिमा नाज। सुल्तानगंज सीतारामपुर से ये पत्र है। लिखने वाले हैं प्रमोद पासवान, सुस्मिता, सागर, दीपा, करीना और सूरज। और ये पत्र आया है मोहम्मद मोहल्ला सदरुद्दीन चक से। लिखने वाले हैं मोहम्मद शहजाद हासिम और इनके परिवार के सभी लोग। आप सबों की मिलीजुली फरमाइश पर अब आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। युववाणी के मासिक स्तंभ फोन इन कुछ बातें कुछ गाने कार्यक्रम के लिए फोन कॉल रिकॉर्डिंग 27 मई 2026 को दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच होगी। इस कार्यक्रम में श्रोतागण अपने पसंदीदा गाना सुनने के लिए हमें 24000981 पर कॉल कर सकते हैं एवं भागलपुर से बाहर के श्रोता भागलपुर का एसटीडी कोड 0641 लगाकर हमें कॉल करें। इस कार्यक्रम का प्रसारण 31 मई 2026 को यानी आने वाले रविवार को संध्या के ठीक 5 बजे उसी कार्यक्रम में होगी जिसका नाम है युववाणी। सूचना संपन्न हुई। और अब मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म पालकी का एक गीत आपको सुनवाते हैं। गीत के बोल शकील बदायनी के हैं और संगीतकार हैं नौशाद। और इस गीत को सुनवाने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है आप श्रोताओं ने। भट्टा बाजार पूर्णिया से आप हैं लीनू निशु और इनके मम्मी पापा। कुनौनी बांका से ये पत्र आया। लिखने वाले हैं बबलू डब्लू नीपू चंदा और ललन। ग्राम कुड़रो से ये पत्र आया। लिखने वाले हैं पप्पू लीली आपरा वैष्णो और कौशिक। बड़ी खंजलपुर भागलपुर से ये पत्र आया। लिखने वाले हैं गुलफराज आलम बेगम समारा दोस्त जमालुद्दीन नेपाली। मोहल्ला ततारपुर भागलपुर से ये पत्र है। लिखने वाले हैं अरसान अहमद जरीश वारिस अहमद शाजली शादाब अहमद। लुत्फ अली लेन मोहल्ला काजबली चक से ये पत्र है। लिखने वाले हैं फौजैल नसीम रोज सोमेरा शहरीन फौजैल नसीम शादान सिमरा सिदरा जोया और अनम। नज़ीर मोमिन लेन इस्लामपुर चंपा नगर से ये पत्र है। लिखने वाले हैं शब्बीर अहमद खालिद अंसारी जाहिद अंसारी और तारिक अनवर। सुभानपुर

विक्टोरिया बाका से ये पत्र आया। लिखने वाले हैं खजांची शहादत अली, सीदरा शाहिना परवीन। और ये पत्र आया है अली बख्श लेन मोहल्ला नाथ नगर से। लिखने वाले हैं उमर फारूक, फोजैल, जुबैर, उमर और मायरा। आप सबों की मिलीजुली फरमाइश पर आई सुनते हैं ये गीत।

0: ये था फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में, फिर 11:05 पर अंग्रेजी में। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचो सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक

0: आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फॉरेन एक्सचेंज।
2: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देशभर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Ramendra Singh Deol has been honored with the Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam were also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were also present on the occasion. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in cabins of the Gulmarg Gondola ropeway were rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials today said more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among tourists, including women and children. Emergency evacuation protocols were activated immediately. A massive 7-hour rescue operation was led by teams of NDRF, SDRF, Jammu and Kashmir Police, Army's Chinar Corps and local administration. All passengers were brought to safety without any injuries. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha said he monitored the rescue operation continuously and directed senior officials, including the DGP, to oversee rescue efforts on the ground. Chief Minister Umar Abdullah announced a probe into the malfunction and said actions would be taken if any lapses were found. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched a set of strategic portals and initiatives aimed at strengthening the MSME ecosystem, enhancing last-mile credit delivery and accelerating the modernization.

कल प्रातः 5:48 पर अपने कल के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। जय हिंद।